भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला भक्ति संगीत।

आराधना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। श्रोताओं, भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत।

श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला भक्ति संगीत।

आराधना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। श्रोताओं, भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत।

श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत।

0: भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुन रहे थे 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और अब अपनी रेडियो दोस्त पिंकी को दीजिए अनुमति
1: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तुम सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कहने श्रोताओं, मैं या तुम भी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हुई हूँ कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक। श्रोताओ कर दे अज दे कार्यक्रम दी शुरुआत इस प्यारे दे गीत दे कन्ने। वहां सारे इये बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंडी।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहां सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

चिन धर्मशाला कने श्रोताओं तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो हाँ सारे इंगे बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

हम बोला करते हैं ना रेडियो गुंजन धर्मशाला ते गणेश होता हो तो हाँ सारे ही इस वक्त कार्यक्रम सुना देना माटी थी महक जी श्रोता होता बढ़ देना कार्यक्रम च अगे कने सुन देना कार्यक्रम दा प्यारा दिया अगला गीत तो हाँ सारे इये बनी दिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने बंदी।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया, बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्पदंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्पदंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्पदंश जानलेवा हो सकता है, कही सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: देख पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
4: पता नहीं तुझे उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले।
6: पता है ना मुझे टीबी है।
5: चल तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: क्या है?
1: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टर, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं। लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। नाउ से यू आर अ जीनियस।
5: यू आर अ जीनियस।
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ। स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
7: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना ये, भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। ये होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्री राम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं, अपनी मर्यादा में लड़े। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझ में और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे।
8: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं। ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
7: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
9: दिला तो दूंगा, पर मेरे एक काम करना पड़ेगा।
7: हाँ बोलो।
9: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
7: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
9: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
10: गजब बेइज्जती है।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों, जब भी मन चाहे आपका सुकून, तो जुड़ जाइए नए पुराने गीतों के इस सफर के साथ। नए गीतों की ताजगी और पुराने गीतों की मिठास एक साथ। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों, गीत सुहाने नए पुराने, अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

जैन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों जब भी मन चाहे आपका सुकून तो जुड़ जाइए नए पुराने गीतों के इस सफर के साथ। नए गीतों की ताजगी और पुराने गीतों की मिठास एक साथ। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों, गीत सुहाने नए पुराने, अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों, ये नए पुराने गीत हर शाम, हर दिन, हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को, जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। मैं हूं पिंकी। आइए सुनते हैं आज का समाचार बुलेटिन। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आएंगी। बिलासपुर, मनाली और प्रसिद्ध शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। हिमाचल हाईकोर्ट की कार्यवाही अब घर बैठे भी देख सकेंगे। मुख्य न्यायाधीश ने लाइव स्ट्रीमिंग सुविधा का उद्घाटन किया। प्रदेश के स्कूलों में नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 बार अतिरिक्त पौष्टिक आहार देने की योजना। क्लास 3 पेंशनरों को बकाया एरियर की पूरी राशि जारी करने के आदेश। परीक्षा में लापरवाही पर शिक्षा बोर्ड सख्त, कई केंद्र अधीक्षकों को नोटिस। घेपन झील की स्थिति खतरनाक, भारी तबाही की आशंका के बीच प्रशासन ने अलर्ट सिस्टम लगाने की तैयारी की। प्रदेश में अब घर से ही 4 हिस्सों में कचरा अलग करना होगा। नए ठोस कचरा प्रबंधन नियम लागू। 16वें वित्त आयोग के तहत प्रदेश की पंचायतों को 3,774 करोड़ रुपए की राशि मंजूर। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आएंगी। समाचार के अनुसार उनके प्रस्तावित कार्यक्रम में बिलासपुर, मनाली और प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर की यात्रा शामिल है। राष्ट्रपति बिलासपुर में आयोजित एक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी और विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। इसके बाद उनके मनाली जाने और अटल टनल का दौरा करने की संभावना है। 7 अक्टूबर को राष्ट्रपति कुल्लू के प्रसिद्ध हिडिम्बा माता मंदिर में भी दर्शन कर सकती हैं। इसके बाद उनके नई दिल्ली लौटने का कार्यक्रम बताया गया है। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। संबंधित जिलों के प्रशासन और अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की कार्यवाही अब लोग घर बैठे ऑनलाइन देख सकेंगे। मुख्य न्यायाधीश ने लाइव स्ट्रीमिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। इस सुविधा का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और लोगों को अदालत की कार्यवाही तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना है। हाईकोर्ट की ओर से पहले से ही कई डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनमें केस स्टेटस, ई फाइलिंग, ऑनलाइन कॉज लिस्ट और वेबकास्ट जैसी सेवाएँ शामिल है। हाईकोर्ट की वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग और अन्य डिजिटल न्यायिक सेवाओं के विकल्प उपलब्ध हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि न्याय होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। इसी दिशा में लाइव स्ट्रीमिंग को महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। अब नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 बार अतिरिक्त पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस योजना के तहत नियमित मिड डे मील के अलावा सप्ताह में 2 बार अतिरिक्त पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। समाचार के अनुसार इसमें बच्चों की पसंद के अनुसार उबला अंडा या ताज़ा फल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था शामिल है। सरकारी व्यवस्था के तहत योजना की निगरानी प्रधानाचार्यों, मुख्य अध्यापकों, स्कूल प्रबंधन समितियों और संबंधित अधिकारियों के माध्यम से की जाएगी। प्रदेश सरकार ने 31 जनवरी 2022 तक सेवानिवृत्त हुए क्लास 3 कर्मचारियों की पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के बकाया एरियर को लेकर आदेश जारी किए हैं। अक्टूबर में मिलने वाली सितंबर की पेंशन के साथ एरियर का भुगतान किया जाएगा। आदेश के मुताबिक 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए क्लास 3 कर्मचारियों को पहले से लंबित पेंशन और पारिवारिक पेंशन एरियर की 30% राशि जारी की जाएगी। इसके बाद यदि पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन एरियर में कोई राशि शेष रहती है तो उसका भुगतान किया जाएगा। संबंधित विभागों को आदेश के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाओं में लापरवाही बरतने वाले परीक्षा केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। सीसीटीवी लाइव निगरानी के दौरान कुछ परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड के दिशा निर्देशों का पालन नहीं होने की बात सामने आई। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाओं की पवित्रता और पारदर्शिता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। जिन केंद्रों पर लापरवाही पाई गई है,
वहां केंद्र अधीक्षकों, उपकेंद्र अधीक्षकों और समन्वयकों से जवाब मांगा गया है। प्राप्त जवाब और सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लाहौल स्पीति की घेपन झील को लेकर प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। समाचार के अनुसार झील की स्थिति खतरनाक बताई गई है और कुछ ही मिनटों में भारी तबाही की आशंका जताई गई है। प्रशासनिक टीम ने मौके का निरीक्षण किया और झील तथा आसपास के क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया। विशेषज्ञों के अनुसार झील के आसपास लगातार निगरानी जरूरी है। समाचार में बताया गया है कि झील के पानी के अचानक बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों में खतरा पैदा हो सकता है। इसी को देखते हुए प्रशासन की ओर से अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। इसका उद्देश्य संभावित खतरे की जानकारी समय रहते लोगों तक पहुंचाना है। हिमाचल प्रदेश में ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। इसके तहत घरों, दुकानों, संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में कचरे को स्रोत पर ही अलग अलग करना अनिवार्य होगा। कचरे को खुले में फेंकने, जलाने और जमीन में दबाने के साथ साथ नालियों, जल स्रोतों और सार्वजनिक स्थानों पर डालने पर भी रोक होगी। कचरे को चार श्रेणियों में अलग करने की व्यवस्था बताई गई है। इनमें रसोई से निकलने वाला गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनिटरी कचरा और विशेष देखभाल वाले कचरे को अलग रखना शामिल है। प्लास्टिक, कांच, धातु जैसी पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को अलग रखने पर भी जोर दिया गया है। इसके साथ ही स्कूलों में विद्यार्थियों को कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक करने की योजना है। इसका उद्देश्य बच्चों में कचरा अलग करने और स्वच्छता की आदत विकसित करना है। हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण पंचायतों के विकास के लिए 16वें वित्त आयोग के तहत 3,744 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। यह राशि वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्षों की अवधि में उपलब्ध होगी। इस राशि से पंचायतों में पेयजल, स्वच्छता, सड़क, नालियों, सामुदायिक भवनों और पंचायत भवनों से जुड़े विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। कुल राशि का एक हिस्सा अनटाइड ग्रांट के रूप में और दूसरा हिस्सा टाइड ग्रांट के रूप में बताया गया है। टाइड ग्रांट का उपयोग निर्धारित क्षेत्रों जैसे पेयजल और स्वच्छता से संबंधित कार्यों के लिए किया जाएगा। पंचायतों को राशि के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। डिजिटल निगरानी और ऑडिट की व्यवस्था के माध्यम से खर्च का हिसाब किताब रखने पर भी जोर दिया गया है। आज बुलेटिन में BS इतना ही। धन्यवाद।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया, बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्पदंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्पदंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्पदंश जानलेवा हो सकता है, कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: देख पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों
4: बैठा है? पता नहीं, उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
6: पता है ना, मुझे टीबी है।
5: चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: मम्मी मम्मी मम्मी
1: क्या है?
0: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू, पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टर, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं, लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना सही, यूर अ जीनियस।
5: यूर अ जीनियस?
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ, स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
7: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना, ये भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्रीराम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं अपनी मर्यादा में। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझमें और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा पर, जवाब देंगे।
8: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
7: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
9: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
7: हाँ बोलो।
9: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
7: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
9: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
10: गजब बेइज्जती है।

दोस्तों, किसी ने सही कहा है, उम्र और समय किसी का इंतजार नहीं करते। मेहनत करने की उम्र में अगर आराम चुनोगे तो मजबूरी में आराम की उम्र में पसीना बढ़ाना पड़ेगा। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि आज का किया हुआ परिश्रम ही कल की सफलता की नींव बनता है। सपने देखिए, योजनाएं बनाइए, मेहनत करिए और सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पसीना बहाना तो बनता है, लेकिन समय के हिसाब से। नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, हाजिर हो गई हूँ आप सभी का बेहद प्यारा सा खूबसूरत सा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर, जिसके साथ आपकी सुबह और भी प्यारी बन जाती है, और भी खूबसूरत बन जाती है, और साथ ही दिन की शुरुआत भी मनोरंजन से शुरू हो जाती है। तो पूरा दिन सोचिए कितना प्यारा जाता होगा, उम्मीद कर सकते हैं। और आइए दोस्तों, कार्यक्रम में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ढेर सारी बातें, ढेर सारा मनोरंजन, ढेर सारी जानकारियां आप सभी तक पहुंचती हैं। आज के दिन

तो सुदित नारायण चित्र की आवाजों में आप सभी सुन रहे थे इस प्यारे से गीत को, रंगेला मूवी से लिया था। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए इस प्यारी से बातचीत के साथ रुख करते हैं मौसम की ओर। तो दोस्तों, इस समय धर्मशाला का तापमान लगभग 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप सभी महसूस कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार किस तरह से अपडेट रहने वाली है उस पर भी नजर दौड़ाते हैं। तो दोस्तों, प्रदेश में बीते एक सप्ताह से बारिश से मिली राहत के बीच मौसम का मिजाज फिर से बदलने वाला है। राज्य में 26 सितंबर से मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है जी। दोस्तों, 24 और 25 सितंबर को किसी भी जिले के लिए मौसम संबंधी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई थी, लेकिन 26 सितंबर से कुछ जिलों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। तो ऐसे में हमें सतर्क रहना बेहद जरूरी है जी। दोस्तों, मौसम है और मौसम का कुछ भी आइडिया नहीं लगता कि कब किस तरफ जो है करवट बदल दे। तो ऐसे में हमें यही है कि पहले से ही सावधानी बरतें ताकि कोई भी अनहोनी या कोई भी मुश्किल में हम खुद को ना डालें जी। दोस्तों, तो ये है मौसम की अपडेट और फिलहाल कार्यक्रम की अपडेट तो आप सभी सुन ही रहे हैं, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो अपडेट की शुरुआत हुई ही नहीं है, बहुत कुछ बाकी है आप सभी तक पहुँचाने के लिए। फिलहाल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। दोस्तों, आज के दिन की हम बात करें यानी कि 25 सितंबर 2026 की, तो हर दिन की अपनी एक कहानी, अपना एक इतिहास रहता है हमें जानने के लिए, हम तक हर एक बात पहुंचाने के लिए, जागरूक करने के लिए। तो आज के दिन की क्या खास बात है दोस्तों? आज के दिन आप सभी मना रहे हैं राष्ट्रीय मनोचिकित्सा दिवस, जो हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, ये मानसिक स्वास्थ्य में चिकित्सीय हस्तक्षेपों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। ये दिन खुलकर बातचीत को प्रोत्साहित करता है, कलंक को कम करता है और पेशेवर मनोवैज्ञानिक सहायता तक पहुंच को बढ़ावा देता है। विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जानने के लिए समय निकालें और मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों से जुड़ें और देखभाल तक अधिक पहुंच के लिए वकालत करें। जी दोस्तों, जहां भी मनोचिकित्सक की बात आ जाती है तो कई बार हमारी मानसिक कंडीशन इस तरह से होती है, मानसिक जो हमारी स्वास्थ्य होता है वो इस तरह से होता है कि हमें कहीं ना कहीं परामर्श की ज़रूरत जो है वो पड़ ही जाती है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज़्यादा जो है हमारे दिमाग में बातें चल रही होती हैं और डिसीजन हम किसी भी बात पे नहीं ले पा रहे होते हैं, या ज़िंदगी ना बहुत उथल पुथल सी चल रही होती है। तो ऐसे में कई बार हमें मनोचिकित्सक के हेल्प लेने में झिझक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारी जो ये सोच है, जहाँ हम मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो मानसिक स्वास्थ्य हमारा सोच पर ही निर्भर करता है, लेकिन ये सोच ही हमें इसे बेहतर बनाने के लिए रोकती है कि लोग क्या कहेंगे अगर हम मनोचिकित्सक के पास जाएंगे, तो क्या हम पागल हैं। तो ये सब बातें जो होती हैं दोस्तों, ये सिर्फ हमारे सोचने तक सीमित रह जाती हैं, क्योंकि जब हम अपने बारे में वाकई में सोचना शुरू कर देते हैं तो ये बातें छोटी सी लगती हैं, लेकिन जब हम लोगों के बारे में सोचेंगे तो फिर हम अपने आप को नज़रअंदाज करते करते एक दिन उस मोड़ पे पहुंच जाएंगे कि जिस बात का आपको डर है कहीं वाकई में वो सच ना हो जाए। जो लोग कहेंगे, जो लोग चार बातें कहते हैं, वो बातें फिर सच होने लग जाती, क्योंकि आपके दिमाग में वो प्रेशर बनता जाता है, स्ट्रेस बनता जाता है, बातें घर करती जाती हैं। और सोचिए, जब सारी बातों का, सारी परेशानियों का एकदम से ब्लास्ट होगा तो क्या होगा? फिर हम एक तरह से पागलपन की तरह ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो जो नहीं हुआ वो सोच सोच के हमने उसे बना दिया। हो सकता है जब शुरुआत में हम उसके छोटी सी बात से हेल्प लेकर उसे सही कर सकते हैं, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें इसे पागलपन का ही नाम देना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके लिए हमें जानकारी होना बेहद ज़रूरी है और चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है। तो फिलहाल दोस्तों, ये तो है आज के दिन से जुड़ी कुछ खास बातें, और आज के दिन की अहमियत क्यों है इस दिन से जुड़ी, ये भी हम ज़रूर जानेंगे। और भी बहुत खास बातें आप सभी तक पहुंचाने के लिए बहुत एक तरह से दोस्तों स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा पेशेंस जो है मुझे भी बनाने होंगे, आपको भी बनाने होंगे, लेकिन साथ ही साथ मनोरंजन भी हमें साथ साथ लेकर चलना है। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, बातचीत और मनोरंजन का सिलसिला ये इसी तरह से जारी रहेगा। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। लेकिन कुछ खास बातों की ओर आप सभी की नजर जो है वो जरूर दौड़ाना चाहूंगी। जी दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बातचीत के साथ साथ कुछ जागरूकता की बात भी आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं बरसात का मौसम जो अभी धीरे धीरे एंडिंग की ओर जा रहा है, मॉनसून को विदाई की ओर लेकर जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए बताया भी गया है कि मौसम अभी हो सकता है करबट बदल भी सकता है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों बरसात के मौसम की, तो बरसात के मौसम में अक्सर जो है जैसे ही शुरुआत होती है तो सांपों का डर जो है वो हमारे दिल में, हमारे मन में इस तरह से बैठ जाता है कि अंदर, अब तो घरों में, पहले घरों में एंटर नहीं होते थे ये माना जाता था, क्योंकि घरों में जो दहलीज बनाई जाती थी हर जगह से जो है वो प्रॉपर वो मतलब किया जाता था। बहुत कम चांसेस ऐसे होते थे कि घर को, घर के अंदर जो है बेड तक, अब तो बेड तक पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, हमें जो न्यूज़ है वो सामने आ रही हैं।

अभी रिसेंटली दो बच्चियों की बात जो है आप सभी ने सुनी ही होगी कि रात को सोने गई और सुबह उठकर ही नहीं आई, तो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि उन्हें सांप ने काटा। तो आज के समय में इतना अवेयर होने की ज़रूरत है, हमें हर एक बात को जानना ज़रूरी है। और अक्सर हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमें सांप दिखाई देता है हम फटाफट से उसे मारने लग जाते हैं। तो हम मारने की बात करते हैं तो हम कितनों को मारेंगे, एक को मारेंगे, दो को मारेंगे, तीन को मारेंगे, कितनों को मारेंगे? क्योंकि ये ज़मीन, ये जो धरती है, ये है ही उनके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमने जंगलों को काट दिया है, हमने उनके जो स्थान है रहने के उन्हें नुकसान पहुंचाया है। तो वो यहां वहां भटकते भटकते फिर घरों तक पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में हमें किस तरह से जागरूकता, किस तरह से हमें अवेयर होने की ज़रूरत है, इस पर हम ज़रूर आज के कार्यक्रम में बात करेंगे। और बहुत ही खास जो है मेहमानों से बातचीत भी आप सभी की रहेगी, आप सुनेंगे जो रेस्क्यूअर हैं उनके साथ, और कोशिश रहेगी कि जो डॉक्टर हैं उनके साथ भी आपकी बातचीत जो है वो आप सभी तक पहुँचाई जाए कि आखिर क्या रीज़न्स हैं या किस तरह से हमें इस पर रिएक्शन या रिस्पॉन्स करना चाहिए, उन्हें मारना चाहिए या अगर सांप काट जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो जरूर कोशिश रहेगी दोस्तों इस पे बातचीत आप सभी तक पहुंचाने की। और इसके लिए आप सभी को जुड़े रहना है अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, और खास करके अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की इन बहुत ही खास बातों के साथ। फिलहाल आइए लेकर चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम के एक और गीत की ओर। तो एंजॉय कीजिए अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

तो आप सभी ने ट्यून किया है 91.9 दो मेगा हर्ट्ज पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सभी इंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों इन्हीं कुछ खास बातों के साथ और मनोरंजन के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और आज 25 सितंबर 2026 का दिन है और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जैसे ही समय समय के हिसाब से जो है त्योहारों का जो चलन या फिर किसी भी तरह से मूड को चेंज करना हो तो ये छोटी छोटी बातें हमें बहुत हेल्पफुल रहती हैं, क्योंकि जो रूटीन में हम एक चले रहते हैं। और सबसे खास बात स्वास्थ्य की हम बात करें दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, तो जब हम बहुत सारी बातें ऐसे फिजूल में सोचते रहते हैं जिसका कोई कहते हैं ना कि तुक नहीं होता, कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न भी नहीं होता, हम खुद नहीं जानते कई बार कि इस बात के बारे में हम क्यों सोचे जा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी सोच रहे होते हैं और कहीं ना कहीं उसी वजह से अपनी मेंटल हेल्थ को जो है प्रभावित करते हैं। लोगों की बातें, लोगों ने क्या कहा नहीं कहा, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम अक्सर खुद के बारे में सोचना भूल जाते हैं, खुद की जो चॉइसेस होती हैं वो भूल जाते हैं, खुद के जो इंटरेस्ट होते हैं वो सब भूल जाते हैं, उन्हें हम साइड में रख देते हैं, लेकिन लोगों के अकॉर्डिंग हम खुद को ढालना शुरू कर देते हैं और वहीं से कहीं ना कहीं जिंदगी फिर एक अलग मोड़ जो है वो ले लेती है। तो दोस्तों खैर ये तो जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें हैं। और इसी के साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि कल यानी कि 26 सितंबर से जो है श्राद्ध की शुरुआत हो रही है। जी, हर एक त्यौहार को हर एक अवसर को हम खास बनाते हैं, उन दिनों को खास बनाते हैं। तो दोस्तों पितरों के उद्देश्य से स्विधि श्रद्धा पूर्वक किए गए कर्म विशेष को ही श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध एक वैदिक पौराणिक हिंदू अनुष्ठान है और इसका मुख्य उद्देश्य पितरों को संतुष्ट कर उन्हें शांति व मोक्ष प्राप्त करवाना है तथा पूर्वजों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना है। इसका नाम श्राद्ध इसलिए है क्योंकि पितृ कर्म की इस प्रक्रिया को श्राद्ध के साथ किया जाता है। जी दोस्तों, इस वर्ष पितृपक्ष जो है वो 26 सितंबर 2026 शनिवार से शुरू होंगे और 10 अक्टूबर 2026 शनिवार को ही समाप्त होंगे। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक के दिन पितरों के निमित्त कहे जाते हैं और इन दिनों में पूर्वजों को स्मरण किया जाता है और उनके निमित्त तर्पण किया जाता है। तो जी दोस्तों, श्राद्ध की शुरुआत और उसके बाद नवरात्रि का आगमन, तो कहीं ना कहीं हमारी ये रूटीन जो है जिंदगी की इसी तरह से चलती रहती है, खुशनुमा भी होती है, प्यारी भी होती है, हर किसी की अपनी एक अहमियत, अपनी एक खासियत, और उसी खासियत के साथ हम जिंदगी में आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। फिलहाल हम भी कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं एक और खूबसूरत से गीत की ओर। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से।

दोस्तों कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी एंजॉय कर रहे हैं इस समय अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से और अपने दिन के रूटीन को भी एंजॉय कर रहे हैं साथ ही साथ। तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही खास बात, मैंने आप सभी को पहले ही कहा था कि आज जो है कार्यक्रम में हम बहुत खास बातचीत करने वाले हैं जो कि सांपों का डर, जो स्नेक वाइट अवेयरनेस, एक तरह से हम ये सप्ताह भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे तो इस पे जितनी ज्यादा अवेयरनेस की जाए उतनी कम है, तो हमें इसमें हर किसी को एफर्ट्स करना बेहद जरूरी है जितना हो सके। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी, अगर आपको इस बारे में नॉलेज है तो अपने आसपास इस बात को पहुंचाएं कि एकदम से जो है हमें एक तरह से हॉस्पिटल के लिए क्यों जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। तो ये सब बातें आपको हमारे जो कांगड़ा के CMO सर उमेश भारती जी हैं वो खुद बताएंगे आपको। मैंने आपको कहा था कि डॉक्टर से भी हम आपकी जो है बातचीत आप सभी तक पहुंचाएंगे और साथ ही एक रेस्क्यूअर की भी बातचीत आप सभी तक पहुंचाएंगे। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दूं कि आप सभी जानते हैं अब थोड़ा सा न्यूज़ का टाइम जो है वो चेंज हो गया है, तो 9:50 पे जो है वो न्यूज़ आप सभी तक पहुंचाई जाएगी। उसके बाद 10 बजे के आसपास जो है CMO सर से आप सभी बातचीत जो है वो सुनेंगे कि आखिर स्नेक वाइट पे हमें किस तरह से रिस्पॉन्स करना चाहिए, कैसे हमें खुद को अवेयर करना है, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे हम खुद की केयर कर सकते हैं। क्योंकि बरसात का मौसम है, अभी तो जा रहा है लेकिन अगले साल फिर से आएगा, लेकिन ये स्नेक वाइट्स के केस जो हैं वो अभी भी सामने आ रहे हैं। तो कैसे हम इस पे खुद को अवेयर कर सकते हैं, कैसे खुद को बचा सकते हैं, तो यही कोशिश है कि आप सभी तक ये बातचीत पहुँचाई जाए। और ज़रूर दोस्तों हो सके तो लाइव फेसबुक पे भी आप सभी के साथ जुड़ेंगे इस बातचीत के दौरान, और रेडियो के माध्यम से तो आप सभी सुनेंगे ही। तो फिलहाल आइए इसी बातचीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आप सभी को एक और बहुत ही खास प्यारे से गीत की ओर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी
1: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और आप सभी इस समय दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला से इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं और समय है प्रादेशिक समाचारों का। तो आइए लेकर चलते हैं आप सभी को समाचारों की ओर, उसके बाद फिर से वापिस आएंगे हम बहुत

खास बातचीत के साथ। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी जान ही चुके हैं कि हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कांगड़ा के CMO सर डॉक्टर उमेश भारती जी। तो ये बातचीत बहुत खास रहने वाली है, तो थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा इंतजार, उसके बाद खास जानकारी आप सभी तक।

0: प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के तहत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और उसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 में संशोधन के तहत रखा है। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा की धाविका सीमा ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक हासिल कर देश का रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि ने पूरे भारत देश को गौरवान्वित किया है। सीमा ने जापान के आईएची नागोया में चल रही 20वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में 10,000 मीटर दौड़ में ये उपलब्धि हासिल की। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस उपलब्धि के लिए सीमा को शुभकामनाएं दी हैं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सीमा की इस उपलब्धि पर करियां वार्ड के पूर्व जिला परिषद सदस्य मनोज कुमार ने बधाई देते हुए कहा कि ये देश के लिए गौरवमयी पल है।
1: एशियन गेम 2026 जो कि जापान के नगोया में हो रही है, उस प्रतियोगिता में आज 10,000 मीटर की दौड़ में सीमा ने कांस्य पदक जीतकर पूरे भारत का नाम जो है वो दुनिया भर में रोशन किया है। इसके लिए मैं सीमा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये जो प्रतियोगिता हुई है सीनियर लेवल की वुमेन चैंपियनशिप 2026 में जो ये हुई 10,000 मीटर की दौड़, इसमें ये मेडल भारत के लिए 16 सालों के बाद आया है। जो वो इस तरह कोई मेडल भारत को आया 16 साल तक कोई भी मेडल 10,000 मीटर दौड़ में वुमेन में एशिया लेवल पे नहीं आया है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भारत के लिए। मैं इसके लिए सीमा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ पूरे चंबा की तरफ से। और
0: आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य पूरी दुनिया में पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन द्वारा घोषित आधिकारिक थीम डिजिटल एजेंडा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से पर्यटन का पुनर्निर्माण है। इस बीच विश्व पर्यटन दिवस पर कांगड़ा जिले में पर्यटन विभाग और विभिन्न स्टेक होल्डर्स के सहयोग से विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। एयरपोर्ट से मैक्लोडगंज तक पर्यटकों का स्वागत किया जाएगा। जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान ने बताया कि एयरपोर्ट पहुंचने वाले देशी और विदेशी दोनों पर्यटकों का स्वागत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मैक्लोडगंज के मुख्य चौक पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें पर्यटकों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। विनय धीमान ने बताया कि हाल ही में आयोजित गुलेर कॉन्क्लेव में हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई है।
2: वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाएगा। उसके साथ साथ जो है वो एक टूरिज्म वीक का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और हमारा जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है इसमें भी जो है वो इनके जो रिस्पेक्टिव टूरिज्म डिपार्टमेंट्स हैं वो प्रोग्राम कर रहे हैं। 21 तारीख को गुलेर कॉन्क्लेव हुई है, उसमें हेरिटेज जो टूरिज्म है उसको डेवलप करने की बात हुई जिसमें कि प्रागपुर, गुलेर और मसूर एरिया को इंटीग्रेट करने की है प्लानिंग रहेगी। उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स हमारी मदद करेंगे और एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट लेकर के आएंगी और आने वाले समय में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ हम जो है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में भी कोलैबोरेट करने वाले हैं।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। एक समाचार इस अंतराल के बाद।

0: किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कल NH-205 पर कल्लर बाला गांव से नौणी चौक तक चल रहे फोरलेन के कार्य का निरीक्षण किया। NHAI के अधिकारियों ने राज्यपाल को फोरलेन परियोजना की समग्र प्रगति के बारे में अवगत करवाया। राज्यपाल ने संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए एम्स बिलासपुर के आसपास आवागमन और कनेक्टिविटी से संबंधित सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उत्थान ही राष्ट्र निर्माण का आधार मानते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका अंत्योदय का दर्शन आज भी जनकल्याण और राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरणा देता है। शिमला मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर घंडल के समीप कल HRTC की इलेक्ट्रिक बस और कार की टक्कर में कार में सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान सोलन जिले की अर्की तहसील के फांजी गांव के दयानंद, उनकी पत्नी हेमलता और माता विद्या देवी के रूप में हुई है, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने तथा किसानों को उनके उत्पाद का उचित व लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। इसी कड़ी में जिला चंबा के जनजातीय उपमंडल पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित किया गया है। इसके तहत घाटी में प्राकृतिक खेती से उत्पादित जौ का समर्थन मूल्य 80 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप घाटी में इस वर्ष बड़ी मात्रा में किसानों ने अन्य नकदी फसलों को छोड़कर जौ को नकदी फसल के रूप में उगाया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
1: वर्ष 2025 में पांगी घाटी के 34 किसानों ने सरकार के निर्धारित समर्थन मूल्य 6,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 99.74 क्विंटल जौ की उपज बेची, जिसके लिए सरकार द्वारा उन्हें करीब 6,00,000 रुपये का भुगतान किया गया। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती से उत्पादित जौ को 8,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदने का निर्णय लिया गया है। घाटी में वर्ष 2026 के दौरान अब तक लगभग 152 किसानों ने 362 क्विंटल जौ को सरकारी समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए कृषि विभाग के पास अपना पंजीकरण करवा दिया है और इसकी मात्रा लगभग 400 क्विंटल तक पहुंचने की संभावना है। सरकार के निर्णय से पांगी घाटी में किसानों को न केवल अपनी कृषि उपज का सही दाम मिल रहा है, बल्कि उनकी आर्थिकी भी लगातार मजबूत हो रही है। यही कारण है कि पांगी घाटी में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 4 गुना जो की सरकारी खरीद होने की संभावना है। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 27 सितंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में गर्ज व चमक के साथ बारिश अंधड़ की चेतावनी जारी की गई है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। दिव्य हिमाचल का शीर्षक है, मेरिट से आए आरक्षित कैंडिडेट को मिलेगी जनरल सीट, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2014 के आदेशों में किया संशोधन। एशियाई खेलों में चंबा की सीमा द्वारा हासिल की गई उपलब्धि भी सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल की बेटी सीमा ने 10,000 मीटर दौड़ में देश को 16 वर्ष बाद दिलाया पदक। दैनिक जागरण के शब्द हैं, दौड़ रही थी बेटी, माँ की आंख से छलके आंसू। दैनिक भास्कर की खबर है, मुख्यमंत्री सुक्खू पर आरोप लगाने पर भाजपा विधायक आशीष शर्मा पर केस। मौसम पर पंजाब केसरी के शब्द हैं, 26 से 28 सितंबर तक होगी भारी बारिश, 27 को रहेगा ऑरेंज अलर्ट, मॉनसून से अब तक 360 मौतें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण व बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का दिया प्रस्ताव। चंबा की धाविका सीमा ने एशियाई खेलों में जीता कांस्य पदक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। आज विश्व पर्यटन दिवस, धर्मशाला में एयरपोर्ट से मैक्लोडगंज तक किया जाएगा पर्यटकों का स्वागत और पांगी को पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित करने के बाद स्थानीय किसानों का जौ की खेती की तरफ बढ़ा रुझान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं प्रातः 11 बजे। नमस्कार।

0: दोस्तों, समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, इस समय आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं और आप सभी से मैंने बात की थी कि आज के इस बहुत ही खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से जो है हम खुद को अवेयर कर सकते हैं, किस तरह से हम खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कैसे खतरे की जो हर साल मानसून के साथ हमारे गांव, बागों और जंगलों में चुपके से आ जाता है, सांप का काटना। दोस्तों, 2000 से 2019 तक पूरे भारत में लगभग 12 लाख लोग जो हैं वो सांप के काटने से मारे गए, यानी हर साल औसतन 58,000 मौतें। हिमाचल में आधिकारिक आंकड़े कम दिखते हैं, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा होती है। दोस्तों, हाल ही के वर्षों के आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 5 साल में हिमाचल में 1500 से ज्यादा सांप काटने के मामले दर्ज हुए। सरकारी आंकड़ों में मौतें बहुत कम दिखती हैं, लेकिन सर्वे और अध्ययन बताते हैं कि असल में हर साल 40 से 100 के आसपास मौतें हो सकती हैं। जी दोस्तों, कहते हैं ना, अब तो सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया के जरिए जो है हम हर बात तक पहुंचते हैं, हर बात हम तक पहुंचती है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि कितना और कैसे कहां। लेकिन जब सोशल मीडिया के माध्यम से ये बातें नहीं पहुंचाई जाती थी, तब तो किसी को पता भी नहीं चलता था, क्योंकि लोग हॉस्पिटल तक नहीं जाते थे। हम वही अपनी सोच के चलते अपने गाँव में ही सबसे पहले घरेलू नुस्खे जो हैं वो अपनाना शुरू कर देते हैं। कोई क्या कहता है तो कोई क्या कहता है, और उन्हीं बातों के चलते हम डिले करते जाते हैं, यानी कि समय हाथों से निकलता जाता है, और उसी के चलते किसी को जान भी गंवानी पड़ती है, जिंदगी से हाथ धोने पड़ते हैं। तो हमें इस बात को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए दोस्तों, इस पे हमें बिल्कुल एक कहते हैं ना कि सतर्कता के साथ आगे बढ़ना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। तो आज के इस कार्यक्रम में मैंने आप सभी से साझा किया था कि हम बात करेंगे जो कि कांगड़ा के CMO डॉक्टर उमेश भारती जी हैं, जिन्होंने इस पे बहुत लंबे समय से काम किया है, और अभी जो है हम ये सप्ताह जो है अवेयरनेस के दौर पे मना रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर हम खुद को कैसे अवेयर कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, हमें घरेलू नुस्खों को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए या फिर हमें हॉस्पिटल सबसे पहले जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो है फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, एम्बुलेंस में भी इसका जो है प्रावधान किया गया है। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर उमेश भारती जी से। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्कार सर, रेडियो गुंजन धर्मशाला में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद, धन्यवाद
0: जी सर। तो आज हम बहुत ही खास बातचीत कर रहे हैं, और जिस पे आपने बहुत मेहनत भी की है कि सांप का काटना कितना खतरनाक होता है, और जो हम अपनी सोच के चलते कई बार डिले कर देते हैं और समय हाथों से निकल जाता है घरेलू नुस्खों के चलते, तो आप इस पे हमारे दोस्तों तक ये जो है बहुत महत्वपूर्ण बातचीत पहुंचाएं और हमारे दोस्तों को बताएं कि किस तरह से हम इस पे आगे बढ़ सकते हैं।
1: देखो, सांप का काटना बड़ा खतरनाक हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमें जांच पता होना चाहिए
0: जी
1: कि किस तरह का सांप, मतलब कि जब भी सांप काटे तो हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए
0: जी।
1: और दूसरा, सांपों का भी हमें नॉलेज होना चाहिए कि जहरीले हैं नहीं जहरीले हैं, क्योंकि 70% सांप जो है

0: जाए तो उस अंग को बिल्कुल छेड़ना नहीं है, ना उसको काटना है, ना चूसना है, ना उसको हिलाना है, ना उसको कसके बांधना है
1: जी।
0: उसको उसमें बल्कि स्वेलिंग आ जाती है, चोटी आ जाती है, तो जो कोई अंगूठी पहनी है, कंगना पहनना है, कोई चीज पहनी है तो उसको निकाल देना है, और बिना देर किए, बिना कुछ घाव को हिलाए जुलाए, और पेशेंट को चलाना भी नहीं है
1: जी।
0: पेशेंट को उठा कुर्सी पे, तो कुर्सी पे उठा के उसको एम्बुलेंस में बिठा के उसको हॉस्पिटल ले जाना है। तो हॉस्पिटल में जो एंटी स्नेक बीन है, बीनम है जिसको बोलते हैं ना, जहर से जहर को जहर मारता है, वो सांप के जहर से ही बनता है दवाई। तो एंटी स्नेक बीनम जो होता है वो उसको लगाया जाता है, और वही एक इलाज है इसका। बाकी झाड़ फूंक में जो हम स्नेक होते हैं उससे जान भी जाती है
1: जी। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि हमें जो है एकदम से जो है जो भी जिसको भी सांप ने काटा हो एकदम से उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। जी बिल्कुल सर, और जो है आप इसके बारे में जो है हमारे दोस्तों को बताना चाहेंगे?
0: मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे हार्ट अटैक में गोल्डन आवर होता है, वैसे ही सांप काटने में भी गोल्डन आवर होता है। एक घंटे के अंदर अंदर सांप काटने के बाद जो है एक घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितना लेट करेंगे, जितना हम एक बार हम खुद ही सोचने लगता है कि जहरीला है नहीं है, दांत लगे हैं नहीं लगे हैं, उसमें हम इतना स्नेह गवा देते हैं कि जब जहर चढ़ने लग जाता है तो फिर उसका बहुत जल्दी से असर होने लग जाता है। और जितनी लेट वो हॉस्पिटल पहुंचेगा बंदा, उतनी ही उसके जो है वो बचने के चांस कम हो जाते।
1: जी बिल्कुल, तो इस हमें बिना देर किए, चाहे हमें थोड़ा सा डाउट भी हो रहा है, तो हमें फटाफट से जो है वो हॉस्पिटल
0: बिल्कुल बिल्कुल अपना खुद डॉक्टर ना बने और हॉस्पिटल जाए।
1: जी बिल्कुल, अक्सर हम अपने आप को ज्यादा अहमियत देना शुरू कर देते हैं। जी जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दोस्तों तक पहुँचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: थैंक यू
1: सर। तो दोस्तों, आप सभी ने सुना कि किस तरह से हमें इस पे जो है सतर्कता बरतनी चाहिए, किस तरह से हमें जो है रिस्पोंड करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, जब भी हमें ऐसा लगता है कि कहीं हमें सांप ने काट दिया है, कहीं हम घास लेने गए होते हैं, वहाँ भी अक्सर कई बार काट दे, तो हम फटाफट से वहाँ से घर पहुँचते हैं, या जहाँ भी हमें पता कोई दवाई वगैरह चढ़ाई जाती है तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं। खैर, बुरी बात नहीं है, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन उस बात के चलते हम समय की बर्बादी कर देते हैं। और जैसे सर ने कहा कि गोल्डन आवर्स होते हैं, उन्हें हमें नहीं जाने देना चाहिए। तो कौन सा सांप कितना जहरीला है, ये भी जानकारी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं क्योंकि कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं चला होता कि कौन सा सांप हमें काट कर चला गया, कब काट कर चला गया नहीं पता चलता है। तो ऐसे में अगर हमें जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कई बार जो होता है थोड़ा सा डिजीनेस होती है या उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं बिना वजह, तो वो भी एक सिम्टम्स होते हैं, तो हमें एकदम से हॉस्पिटल जो है वो पहले जाना बेहतर रहता है। और अब जो है कोशिश है जो लोगों की जान बचाने की, जो ये अभियान चलाए जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मौतें जो है इसमें देखी जा रही हैं, तो जिस भी तरह से जैसे भी अवेयर खुद को हम करें, लोगों को करें, जागरूक करें, ताकि लोग जो है थोड़ा सा इन बातों से हटकर जो है थोड़ा लॉजिकली सोचें और अपने आप की वैल्यू, अपनी ज़िंदगी की वैल्यू को समझ सकें। तो दोस्तों, आइए इसी खास जानकारी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं एक प्यारे से गीत की ओर, मनोरंजन की ओर। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी जुड़े हैं इस समय अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी एंजॉय कर रहे हैं जी दोस्तों। तो आज के इस बहुत ही खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं दोस्तों जो स्नेक बाइट्स बहुत ज्यादा जो है हमें असल में देखने को मिलते हैं। पहले इसलिए नहीं ज़्यादा सुनने को मिलते थे क्योंकि पहले सोशल मीडिया का समय नहीं था तो लोग जो है वीडियोस वगैरह नहीं डालते थे, लेकिन अब की हम बात करें तो अब जैसे ही अब रेस्क्यूअर भी बहुत ज़्यादा स्नेक्स को पकड़ रहे हैं, लोगों में जैसे जैसे अवेयरनेस जो है वो बढ़ रही है तो वैसे ही चीज़ों को अहमियत दी जाती है और उसकी इम्पोर्टेंस को समझा जाता है। और दोस्तों हम कहते हैं कि सांप जो है यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, घरों में भटक रहे हैं, तो एक बात हमें ये सोचनी चाहिए कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान हम पहुंचाएंगे तो चीज़ें तो गड़बड़ाएंगी ही। जब हम जंगल काट देंगे, जब हम नदियों को देखें तो नदियों में पानी नहीं है क्योंकि हमारी ये जो अपनी सेल्फिशनेस स्वार्थ जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते हम अपनी सुविधाओं को तो पूरा कर रहे हैं लेकिन और बहुत सारी चीज़ों को साथ ही नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें वो कहाँ रहेंगे जब नदियों में पानी नहीं होगा, जब उनके लिए जंगल नहीं होंगे, जब पहाड़ जो है वो खोद दिए जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ घर बनाएंगे? तो वो तो भागेंगे फिर ज़मीनों में जो जहाँ हम रह रहे हैं, फिर वो वहीं बसेरा करेंगे क्योंकि उन्हें तो ऐसी जगह चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, तो ये सोचने समझने वाली बातें हैं और जब तक हम खुद को अवेयर नहीं करेंगे तब तक हम इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। तो अक्सर हम क्या करते हैं, जब भी घरों में सांप दिखाई देते हैं हम फटाफट से उसे मारने लग जाते हैं और उसे मतलब कि वो कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें ये सोचना ज़रूरी है कि सांप को पकड़ना और उन्हें एक सेफ जगह पे छोड़ना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो जैसे अभी आपने कांगड़ा के CMO डॉक्टर उमेश भारती जी से जाना कि किस तरह से हम डॉक्टरी इलाज कर सकते हैं, किस तरह से सांप के काटने पे हम खुद को सेफ रख सकते हैं, उसी तरह से हम जो है सांप को पकड़ने में क्यों ज़रूरी है, सबसे पहली बात कि सांप को रेस्क्यू करना क्यों ज़रूरी है, क्यों आज के समय में इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये हमें एक रेस्क्यूअर ही बता सकते हैं और उनका कैसा एक्सपीरियंस है, किस तरह से वो फील्ड पे काम कर रहे हैं उनसे जानेंगे, और जो कि जयसिंहपुर से हैं माथुर सर। तो बिल्कुल दोस्तों उनकी बातचीत आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश जो है वो ज़रूर रहेगी आप सभी के साथ कांटेक्ट करने की, लेकिन अक्सर हमें छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना बेहद ज़रूरी जो है वो रहता है। तो जब तक वो जुड़ते हैं हमारे साथ तब तक हम एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, आप सभी को लेकर चलते हैं इस खूबसूरत से गीत की ओर।
1: कृपया कुछ समय

0: दोस्तों 91.9 ओमेगा हर्ट्ज पर इस समय आप सभी जुड़े हैं और मनोरंजन इसी तरह से जारी रहेगा। लेकिन जैसे कि आप सभी को बताया था कि माथुर सर जो हैं हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि रेस्क्यूअर हैं और सांपों को पकड़ते हैं, फील्ड पे काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पे। तो आइए जानते हैं उनसे वो किस तरह से अपनी इस काम को आगे की ओर लेकर जा रहे हैं, किस तरह से उनका एक्सपीरियंस रहा है। हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार सर।
1: हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार
0: सर, स्वागत है आपका हमारे रेडियो गुंजन धर्मशाला में।
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद
0: जी। तो सर, सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं।
1: हाँ, मैं जिला कांगड़ा, अपना तहसील जसीमपुर, आनपुर गांव से हूँ
0: जी।
1: और मैं एजुकेशन में हूँ डिपार्टमेंट
0: जी,
1: और पर्यावरण से रिलेटेड मैं कम से कम 18-20 साल से जो है वो ये काम कर रहा हूँ जीवों के प्रति। तो इसमें सबसे अहम जो जीव है वो सांप के, सांपों के प्रति जो है जागरूकता या पर्यावरण को लेकर जो काम कर रहा हूँ।
0: सी, तो आपको कितना समय हो गया सर?
1: मेरे को 18-20 साल हो गए जी।
0: 18-20 साल रेस्क्यू करते
1: जी, रेस्क्यू करते सांपों का।
0: तो आपका किस तरह से सर इसमें एक्सपीरियंस रहा, किस तरह से मतलब लोग कॉपरेट करते हैं या किस तरह से चीजें सामने आती हैं?
1: हाँ, इसमें ऐसा है कि अब तो काफी रेस्क्यूर जो हैं वो कहीं मतलब जिन्होंने जो काम कर रहे हैं, जो तैयार हो रहे हैं
0: जी।
1: तो पहले तो काफी कई किलोमीटर जाना पड़ता था, 100-100 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर भी गया हूँ
0: जी।
1: लेकिन सबसे ज्यादा ये है कि इस, ये ऐसी चीज है कि इसके कारण जो है वो हर इंसान को एक फोबिया बना हुआ है और अज्ञानता बस जो है वो जागरूकता के कारण जो जागरूक नहीं है इसके लिए, वो उनके लिए एक मतलब ये जीव जो है वो एक खतरनाक जीव है और इसको मारना ही इसका एक हल है
0: जी।
1: तो हमारे हिसाब से जो है इस जीव को मारना किसी चीज का मतलब उपाय नहीं है। इसके लिए जागरूकता जो है वो वही एक सबसे बड़ा, इस चीज को समझना
0: जी
1: ही एक बड़ा उपाय है।
0: तो सर, अब तक आपने अगर हम देखें तो कितने सांपों को रेस्क्यू किया है?
1: हाँ, मैंने लगभग 3000 से ऊपर जो है सांपों को रेस्क्यू कर बैठा हूँ
0: जी।
1: और मतलब 3000 मतलब 3000 लोगों के घरों में जो है जाके उनके घरों से सांपों को, जैसे रात को 8-8 बार, 9-9 बार जो वो रात को जाना पड़ता है और उनके घर से जो है जाके उन सांपों को वहां से आबादी से उठा के जो है फिर पर्यावरण अपना वन रक्षक जो है हमारे जो वाइल्ड लाइफ वाले या फॉरेस्ट गार्ड होते हैं उनकी मौजूदगी में जो है वो जाके जो हम इनको फिर इनके पर्यावरण में जाके जो इनको छोड़ते हैं।
0: तो सर, लोग आपके साथ कांटेक्ट कैसे करते हैं, मतलब आपने सोशल मीडिया के थ्रू या किस तरह?
1: जी जी जी, सोशल मीडिया के कारण, जो मीडिया है उसके कारण ही लोगों को मेरा नंबर जो है वो सबके पास है, और नहीं है तो लोग जो है कई बार गूगल में जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं या जो वाइल्ड लाइफ वाले हैं उनको फोन कर देते हैं, तो उनके पास मेरा नंबर है। तो हमारे इसमें जो हमारे डॉक्टर उमेश भारती जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
0: जी।
1: तो उनके द्वारा जो है, उनके मतलब मार्गदर्शन के द्वारा जो है हम हर जगह जो है ये काम कर रहे हैं और रात को जो है कहीं भी जाके हमारा दो मतलब 3 महीने तो इतने ये टफ होते हैं कि कई बार लोगों के घर में जो है मतलब कोई बुजुर्ग अकेले हैं या कोई लेडीज अकेली है और कोबरा जो अब उनके बिस्तर में बैठा हुआ है, कोई किचन में बैठा हुआ है, तो अकेले जो है मैक्सिमम कोई रात को जो अब फोन नहीं उठाता है, तो हम वहां जाके जो है मतलब ये अपनी सेवा दे रहे हैं
0: 24/7 आप मतलब हेल्प के लिए रहते हैं।
1: जी जी जी जी, जी।
0: तो सर, आपको इतना मतलब कि टाइम हो गया, 18-20 साल आपने बताया काम करते हुए, तो पहले तो खैर इतना था नहीं लोगों में अवेयरनेस, मेरे आईडी से रेस्क्यू रिलेटेड बहुत कम लोग जो है वो रेस्क्यू को जो है प्रेफरेंस देते थे, लेकिन अभी जो है थोड़ा बहुत दे रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे अवेयरनेस जो है वो बढ़ रही है। तो आपको क्या लगा कि अब में और पहले में फर्क दिख रहा है या क्या, किस तरह से?
1: नहीं, काफी फर्क पड़ रहा है, अभी तो इतना फर्क पड़ गया है लोगों में, इतनी जागरूकता आ गई है कि जब भी कोई फोन करता है तो वो प्रजाति बताता है
0: जी।
1: लोग जो है वो स्पीसी बताते हैं कि ये कोबरा है, ये क्रेट है, या मेरे घर में ये सांप निकला हुआ है, और ज्यादातर हम लोगों को ये अवेयर करते हैं कि आपने जो ज्यादा सांप जो है उनकी प्रजाति को नहीं पहचानना, आपने बस जो जहरीले सांप हैं उनको जानना है। जो हमारे हिमाचल में जैसे 3 सांप हैं, तो कॉमन क्रेट हो गया, रसल वाइपर हो गया और कोबरा, आपने इनको देखना है। अगर ये सांप आपको आगे दिखाई दे घर में दिखाई देता है तो आपने दूरी बना के रखनी है और ये एक बहुत ही जानलेवा सांप है।
0: सर, इनको हम अगर लोकल लैंग्वेज में कहें तो क्या कहेंगे?
1: ये अपना
0: ये जो तीन बताए आपने, हाँ जी,
1: हाँ जैसे आपका जो कोबरा है
0: जी,
1: इसको तो लोग जैसे कई अपनी पहाड़ी भाषा में जो कई बार जो वो कोई कोई खड़पा बोलता है, कोई काला नाग बोलता है, कोई नाग बोलता है, तो जो मतलब जो हमारी पहाड़ी भाषा है
0: जी जी बिल्कुल,
1: और साइंटिफिक नेम इसका नाजा नाजा है, और दूसरा जो हमारा कॉमन क्रेट है
0: जी,
1: तो उस कॉमन क्रेट को हमारे बुजुर्ग जो उसको संचूड़ कहते थे, संचूड़ सांप
0: जी,
1: तो जब रात को ही बिस्तर में जाके जो काट रहा है
0: जी,
1: जो रात को ही एक्टिव होता है, इसको मिडनाइट स्नेक भी बोलते हैं, साइलेंट किलर स्नेक भी बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम जो वो बुंगारूस है। और तीसरा हमारा रसल वाइपर है, जो आम मतलब कहीं खेतों में या झाड़ियों में आपको देखने में मिलेगा, कुंडली मार के बैठा होगा, ये हीमोटॉक्सिक वाला है, और दो है वो न्यूरोटॉक्सिक वाले हैं। तो जो हीमोटॉक्सिक वाला ये रसल वाइपर है, ये एक बहुत ही खतरनाक सांप है, यानी कि तो इसको हम सोतड़ भी बोलते हैं, घोघ भी बोलते हैं, लेकिन लोग जो है वो इसको बिल्कुल हल्के में लेते हैं
0: जी,
1: क्योंकि ये सुस्त होता है, लेकिन सुस्त नहीं होता है, ये बहुत ही फुर्तीला और बहुत ही खतरनाक सांप है।
0: जब हम इसके साथ वो शरारत करते हैं तो एकदम से एक्टिव हो जाता है
1: जी बिल्कुल, और ये जैसे इसकी हिजिंग जो होती है वो एक बिसल की तरह होती है
0: जी,
1: जैसे कुकर की बिसल आती है उसकी तरह इसकी आवाज होती है, मतलब जो हिजिंग करता है ये
0: जी। तो जैसे हमें जब सामने दिख जाए तो हमें अक्सर उसे मारने लगते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए उस समय, मतलब एकदम से शांत रहना चाहिए, उसे वहीं रहने देना चाहिए?
1: हाँ, जब भी आपको सांप दिखाई देता है, क्योंकि सांप ज्यादातर जो है वो घरों की तरफ चलते हैं, क्योंकि बरसात का सीजन होता है, बिलज वगैरह जो है वो पूरे पानी से भर जाते हैं, और ये सूखी की तरफ चलते हैं, और जो रात को जैसे लाइट जलाई होती है, कीट पतंगे जो कुछ भी मेंढक वगैरह जो भी है वो घरों की तरफ आते हैं, और ये कई बार उनका पीछा करते करते जो हमारी आबादी में या हमारे घरों में घुस जाते हैं। तो उसके इसके लिए आपको यही एहतियात बरतनी है कि जैसे ही आपके पास, पहले तो आपके पास कोई ना कोई हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, आपके फॉरेस्ट गार्ड का नंबर होना चाहिए, या फिर आप 1100 पे कॉल करो, मतलब कोई ना कोई आपके घर में तो पहले नंबर होना चाहिए, फोन नंबर, या किसी स्नेक रेस्क्यू का नंबर होना चाहिए। तो तुरंत अगर ऐसी बात होती है तो अपनी दूरी बना के रखें और सांप पर नजर रखें
0: जी,
1: और तुरंत फोन करें। ऐसा नहीं है कि कोई आपके बचाव के लिए नहीं आएगा, लेकिन मारना ही किसी चीज का हल नहीं है।
0: बिल्कुल जी, तो आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे सर इससे रिलेटेड, क्योंकि एक अभियान की तरह जो है इसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है, और एक सप्ताह का ये हम अभियान चला रहे हैं एक तरह से, वैसे तो इसको जितना अवेयर किया जाए उतना कम है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इस पर?
1: मेरा तो यही है, जो अपने डॉक्टर अमेश भारती जी हैं, जो हमारे यहाँ जो चिकित्सा संस्थान है
0: जी,
1: तो उनके द्वारा जो समय समय पर जो जागरूकता वर्कशॉप जो लगाई जा रही है, और उन्होंने 2030 तक जो है इसको जीरो स्नेक बाइट या 50% स्नेक बाइट करने की पूरी उन्होंने ठानी हुई है, तो हमें उनका साथ देना चाहिए और हर डिपार्टमेंट को साथ देना चाहिए, और हमारा तो एक ही संदेश है कि जियो और जीने दो।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है माथुर सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दोस्तों तक ये बहुत ही खास जानकारी पहुंचाने के लिए।
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद
0: जी, थैंक यू। दोस्तों बहुत ही खास ये बातचीत आप सभी ने इंजॉय की है, और इंजॉय क्योंकि ये जागरूकता भरी है, और इसे जब तक हम जानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, इस पे गौर नहीं करेंगे, तो माथुर सर ने भी बहुत अच्छे से बताया है कि हमें हेल्पलाइन नंबर जो है हमारे पास पहले होना चाहिए, तो या तो 1100 पे कर सकते हैं या 1077 पे भी हम कॉल कर सकते हैं, जिससे कि हमें हेल्प जो है वो मिल सकती है, वो हमें रेस्क्यूअर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर उमेश भारती जी से तो आपने बात पहले ही सुन ही ली, और अभी माथुर सर ने भी कहा कि उनका जो ये अभियान चलाने में बहुत बड़ा योगदान है, जो उनकी कोशिश है, कहीं ना कहीं वो पूर्ण तभी हो पाएगी जब हम सभी एकजुट होकर इस काम को और ज्यादा आगे लेकर जाएं, इस अवेयरनेस को और ज्यादा आगे लेकर जाएं, और इस पे काम करें, सिर्फ अवेयरनेस को अवेयरनेस तक ना रखें, इस पे काम करें, जो बातें हमें इस पे बताई जा रही हैं, जो हम इस पे अप्लाई करना चाहिए उसी तरीके से करें। हॉस्पिटल जो है वो सबसे पहले हमें केयर जो है वो देनी चाहिए पेशेंट को, जिसे भी स्नेक बाइट हो जाता है, और अगर किसी के घर में भी स्नेक दिखें तो सबसे पहले हमें रेस्क्यूअर को कॉल करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी जिंदगी जरूरी है, जैसे हम जीना चाहते हैं वैसे वो भी जीना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ मारना ही एक मात्र जो है वो उपाय नहीं है। तो आइए इसी जानकारी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और इंजॉय कर रहे थे हम बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से गीत को।

दोस्तों इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ और बहुत ही खास बातें आज आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश थी मेरी। और बिल्कुल दोस्तों ये बातचीत बहुत खास है हमारे लिए, तो ये आप सभी तक पहुंचाई है। उम्मीद है कि आप सभी इन बातों पे ज़रूर गौर करेंगे, ज़रूर इस पे जो है काम करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों बड़ी बड़ी ये छोटी छोटी बातें जो ऐसे हवा हवा में निकल जाती हैं या पहुँच ही नहीं पाती हैं कुछ लोगों तक, तो ये पहुंचना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम यही करते हैं। जैसे ही हमें सांप दिखाई देता है हम फटाफट से उसे मारने लग जाते हैं, क्योंकि मार देंगे तो बात ख़त्म हो जाएगी, और अगर हमने उसे वहां से भगा दिया तो हमें लगता है कि कहीं फिर से दोबारा वो वापस ना आ जाए। तो एक ही बात रेस्क्यूअर माथुर सर ने भी कही कि मारना ही सिर्फ एक उपाय नहीं है, अगर हम गलती से कुछ गलत कर दें तो हमें भी मार दिया जाए तो सोचिए किस तरह से चीज़ें होंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, इस पे अवेयरनेस, उन्हें पकड़ कर उनके एक माहौल में, उनके जो सेफ जगह है वहाँ उन्हें छोड़ना ज़्यादा बेहतर है। और मानसून है, मानसून में न जाने कितने ही सांप जो हैं हमारे आसपास जो हैं वो आते रहते हैं, तो हमें बिल्कुल भी, जब अगर सांप काट भी जाए तो जैसे डॉक्टर उमेश भारती जी ने भी बताया जो कि कांगड़ा के CMO हैं, उनसे भी बातचीत जो है हमने की और आप सभी के साथ साझा की कि जब भी सांप काट जाए तो एक तो हमें घबराना नहीं है और एकदम से पैनिक नहीं करना है, क्योंकि अक्सर कई बार अगर हम देख लेते हैं कि हमें सांप ने काटा तो हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं और समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें, यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं, एक दूसरे से हेल्प मांगने लग जाते हैं। अच्छी हेल्प मांगना बुरी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हमें हाइपर नहीं होना है, हमें एकदम से शांत जो है जहाँ है वहीं बैठ जाना है या खड़े रहना है जिस भी तरह से, और जहाँ पे काटा है सांप ने उस जगह को हमें बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं लेकर आनी है, क्योंकि जितना हम हिलाएंगे उतना जो है वो जहर सर्कुलेट होके हमारी पूरी बॉडी में चला जाएगा, जिससे कि खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरी बात कि जितना हम फिर गांव में आसपास घूमते हैं कि ये लगा लेते हैं या ये वो कर लेते हैं, झाड़ फूस जो भी होता है, जो भी हमारी सोच चलती है तो उसके चलते हम, क्योंकि हर किसी का अपना अपना तरीका है, खैर बुरी बात नहीं है, अगर असर हो जाता है वो तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इस बात के चलते समय हाथों से निकल जाता है, हम इस चक्कर में पड़े रहते हैं और जब समय हाथ से निकल जाता है तब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तो उस समय डॉक्टर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है उन्हें बचाने का, क्योंकि समय रहते जो है उन्हें उस चीज़ का इलाज मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और सबसे बड़ी बात, हमें ये जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि कौन सा सांप ज़्यादा जहरीला है और कौन सा सांप ज़्यादा जहरीला नहीं है। तो आपको माथुर सर ने भी बहुत डिटेल में बताया कि कौन कौन से सांप जो है वो हमारे लिए खतरनाक है, तो तीन जो है वो सबसे आम जो देखने को मिलते हैं, जिन्हें सबसे एक जो जिनका नाम बताया सर ने, जो जो हमारी लोकल लैंग्वेज में कुग, जो कि तो उसमें हम उसे सोचते हैं कि नहीं ये बहुत शांत है, ये बहुत कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब हम उसे डंडे से हिलाते हैं या उसके साथ शरारत करते हैं वो एकदम से एक्टिव हो जाता है और एकदम से हमें वाइट कर देता है। तो अक्सर ये होता है दोस्तों, स्नेक्स को ऐसा लगता, सांप को ऐसा लगता है कि हमें मारने आ रहे हैं, वो इसलिए अटैक करते हैं, उनका मेन ऐसा कोई पर्पस नहीं होता है मारने का या इस तरह से, वो बाई चांस जब उन्हें लगेगा कि इंसान हमें मारने लगा है तो वो अटैक, सेल्फ डिफेंस में एक तरह से अटैक करते हैं। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा अवेयर होना बेहद ज़रूरी है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आप सभी को एक और गीत की ओर।

तो सो इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ है। बहुत ही प्यारी इससे ये बातचीत आप सभी सुन रहे हैं, खुद को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं जी दोस्तों। और इसी के साथ एक और थोड़ी सी दुख भरी बात आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश है इस जानकारी को। दोस्तों गदर फेम मुश्ताक खान अब नहीं रहे। आज जो है मतलब कि एक कहते हैं ना दोस्तों, जो हमें फिल्मों में टीवी में बहुत अच्छे किरदार दिखाई देते हैं, जो एकदम से अजिंदगी छोड़कर चले जाएं, तो कहीं ना कहीं वो शॉक, वो सदमा सिर्फ उनके परिवार के लिए ही नहीं, उनके फैंस के लिए भी बहुत बड़ा सदमा रहता है। इस बीच उनके परिवार को लेकर जो है वो बहुत सारी बातें जो है वो शुरू हो चुकी हैं जी दोस्तों। जैसे ही बातें सामने आती हैं तो बातें तो शुरू होती ही हैं। और इनकी बात करें तो दोस्तों गदर वेलकम, आशिकी, मुझसे शादी करोगी और हम हैं राही प्यार के जैसी फिल्मों में अपनी खास अदाकारी से पहचान बनाने वाले एक्टर, जिनका निधन फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ उनका परिवार भी गहरे सदमे में है। 75 साल की उम्र में मुश्ताक खान ने आखिरी सांस ली। वो पिछले कुछ समय से कैंसर से जूझ रहे थे। करीब 5 साल पहले उन्हें इस बीमारी का पता चला था, लेकिन हाल ही में कैंसर दोबारा लौट आया था। इलाज के दौरान उन्हें मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पर्दे पर अपनी कॉमेडी और स्पोर्टिंग किरदारों से लोगों को हंसाने वाले मुश्ताक की निजी जिंदगी काफी सादगी भरी रही। वे अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ एक करीबी परिवार का हिस्सा थे। उनके निधन के बाद अब फैंस ये जानना चाहेंगे कि उनके परिवार में कौन कौन और उनके बच्चे क्या करते हैं। दोस्तों ये सारी छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिंदगी से जुड़ी, लेकिन कहते हैं ना जो बहुत अहम किरदार होते हैं, जो कुछ शख्स जो है हमारे लिए बहुत खास बन जाते हैं, और जब हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे मतलब कि किरदारों के इतने फैंस हो जाते हैं कि उन्हें कई बार इतनी पॉजिटिविटी उनके साथ जुड़ जाती है, कई बार प्रेरणा भी हम ऐसे मतलब कि जिंदगी में लेते ही हैं। तो ऐसे में ये बातें जब सामने आती हैं तो टूटना भी बनता है, बिखरना भी बनता है, लेकिन फिर से उठना भी हम सभी के लिए होता है। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे।

बिल्कुल दोस्तों, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, बस चलता ही जाता है। आज कोई इंसान अगर हमारी ज़िंदगी में जुड़ रहा है तो कल कोई इंसान हमारी ज़िंदगी से जुदा हो रहा है। बस यही दुनिया की रीत चली आ रही है और हम इसे निभाते चले जा रहे हैं। जी दोस्तों, तो खुद को संभालना, फिर से उठाना, फिर से आगे बढ़ना, बस यही हम सभी के लिए प्रेरणा रहती है, क्योंकि रुकना ज़िंदगी का नाम बिल्कुल भी नहीं है। तो आज के कार्यक्रम में हम बहुत ही खास बात कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही खास बातचीत आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश थी और उम्मीद है कि वो पूरी हुई होगी, क्योंकि कहते हैं जब बहुत खास लोगों के साथ या लोगों के माध्यम से आप सभी तक बातचीत पहुंचाई जाए, जो कि इस पे काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उनके द्वारा अगर बातें आप सभी तक पहुंचाई जाए तो शायद ज़्यादा बेहतर रहती हैं। तो दोस्तों, हम हिमाचल के रहने वाले हैं और हिमाचल की पहाड़ियाँ हमें जीवन देती हैं, लेकिन सावधानी अगर हम ना बरतें तो वही पहाड़ियाँ जान भी ले सकती हैं। 2000 से 2026 तक के आंकड़े एक बात साफ कहते हैं, जागरूकता और तुरंत अस्पताल पहुंचना ही सबसे प्रभावी इलाज है। तो आज ही वादा करें खुद से कि हम सावधानी बरतेंगे। जब भी सांप काटे तो पारंपरिक इलाज को छोड़कर सीधे अस्पताल जाएंगे और अपने आसपास के लोगों को भी इस बात के लिए अवेयर करेंगे, इस बात के बारे में जागरूक करेंगे और ज़िंदगी खुद की भी बचाएंगे, दूसरों की भी बचाएंगे। अब आपको यही लग रहा होगा कि वो बातें गलत हैं या ये है वो है। दोस्तों, हर किसी का मानना अलग अलग होता है, हर किसी की सोच जो है वो अलग अलग होती है, तो सोचिए मानिए, लेकिन बस सोचने और मानने के चलते किसी की ज़िंदगी को जाने मत दीजिए। और जैसे ही अगर किसी को सांप द्वारा काट लिया जाए तो एकदम से 108 को कॉल की जाए ताकि आपको एग्जैक्ट जगह पे पहुंचाया जाए। जी दोस्तों, तो आइए, इसी के साथ समय जो है धीरे धीरे जुदाई की ओर बढ़ता जा रहा है, तो फिलहाल एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और गीत।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी एंजॉय कर रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आज का ये बहुत ही प्यारा सा बहुत ही खास सफर आप सभी ने एंजॉय किया अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। उम्मीद है दोस्तों जरूर आप सभी को पसंद आया होगा और आप सभी ने एंजॉय भी किया होगा। तो अब समय है आप सभी से अलविदा लेने का। तो बिल्कुल दोस्तों कुछ ही समय की दूरी यानी कि फिर मुलाकात हो जाएगी आपसे, कोई बात नहीं। तो फिर मिलेंगे आप सभी के साथ एक नई बातचीत नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का प्यार इसी तरह से बना रहे और आप सभी इसी तरह से हंसते रहे मुस्कुराते रहे गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पन।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द की ने घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्प दंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्प दंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्प दंश जानलेवा हो सकता है, कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: देख पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
4: पता नहीं तुझे उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
6: पता है ना, मुझे टीबी है।
5: चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: मम्मी मम्मी मम्मी
1: क्या है?
0: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टिव, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं। लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?

0: बनने का मतलब ये होता, श्री राम रावण से यही कहते पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े अपनी मर्यादा में, अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझमें और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे।
1: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
2: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
3: दिला तो दूंगा, पर मेरे एक काम करना पड़ेगा।
2: हाँ बोलो।
3: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
2: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
3: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
4: गजब बेइज्जती है।

91.2 मेगाहर्ट्स पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्पदंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्पदंश में सही

0: पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
1: बिल्कुल सही।
0: सर्प दंश जानलेवा हो सकता है, कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
2: देख पवन आ गया।
3: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
2: तुझे उसे टीबी है।
3: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले।
4: पता है ना मुझे टीबी है।
3: चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
5: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: मम्मी मम्मी मम्मी
1: क्या है?
0: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू, पेट तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टिव, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं, लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना सही, यूर अ जीनियस।
5: यूर अ जीनियस?
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ, स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
7: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ, कईयों को लगता है ना। ये भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। ये होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्री राम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं अपनी मर्यादा में। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझ में और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे।
8: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स की गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
10: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
9: हाँ बोलो।
10: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
9: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
10: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
5: गजब बेइज्जती है।

0: 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं रूमा गुलेरिया जी। तो रूमा जी, ये हमारा कार्यक्रम होता है मेरे हौसलों की उड़ान, और इस कार्यक्रम को आप बहुत अच्छे से मैनेज करती चली आ रही हैं कब से, अब मैं देख रही हूँ आपको रुचिका के साथ। और आज का जो हमारा विशेष टॉपिक है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, वो है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट।
1: बिल्कुल, सबसे पहले तो ज्योति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी तरह से मुझे इंट्रोड्यूस किया है फिर से दोस्तों के सामने। और देखो, बड़ा अच्छा लगता है हमारे हौसलों को जब उड़ान मिलती है, और हमारा मेन मकसद यही है इस कार्यक्रम का कि हम बहुत अधिक से अधिक जानकारी अपने दोस्तों तक पहुंचा
0: पाए,
1: ताकि किसी भी प्रकार की अगर हमारे जीवन में कोई दिक्कत आती है, कानूनी पेचीदगी आती है, तो उसके साथ वो किस तरह से निपट सकते हैं।
0: वैसे सिर्फ कानूनी बातें ही नहीं करती हैं आप इस कार्यक्रम में, मैंने और भी बहुत सारे विषय सुने हैं, कभी माँ की भूमिका में भी रहती हैं और बहुत सारी चीजें। चलिए, हम इस विषय पर आज बात करने वाले हैं, तो उससे आगे बढ़ते हैं।
1: जी, आपने बात करी कि आज हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के बारे में। तो सबसे पहले तो ज्योति जी, मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है इस विषय में लोगों तक जानकारी पहुंचना, क्योंकि आजकल के समय की अगर हम बात करें तो हमारा जो यंग जनरेशन है, या बहुत सारी ऐसी कई समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती हैं, हम लोग फ्रस्ट्रेशन में आकर, जब हमने कभी देखा होगा घर में भी, अगर हम या हमारे बच्चे कभी गुस्सा आता है तो हम तोड़फोड़ करते हैं, चीजें इधर उधर पटकते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: ऐसा हर आम जिंदगी में भी होता है ये, लेकिन जब बात आती है पब्लिक प्रॉपर्टी की, तो वहां पर हमें थोड़ा सा सतर्क होने की आवश्यकता हो जाती है।
0: तो वहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट जो ये है, इसका पूरा नाम क्या है और ये लागू कब हुआ था, सबसे पहले हम यही बात करते हैं।
1: बिल्कुल, पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 में ये अधिनियम जो था वो उपयोग में आया था, लागू हुआ था, और ये हुआ था सारे ही भारतवर्ष में इसको लागू किया गया था उस दौरान, एक्सेप्ट जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि वहां के हालात आप जानती हैं कुछ और थे, लेकिन आज के जो हालात हैं वहां पे जम्मू कश्मीर में भी ये एक्ट वैसे ही प्रभावी तरीके से लागू है जैसे बाकी भारतवर्ष में है। और इसका पूरा नाम आपने पहले ही बता दिया था, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984, या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेजेस एक्ट।
0: जी,
1: और मैं यहाँ ये भी जिक्र करना चाहूंगी ज्योति जी की, पब्लिक प्रॉपर्टी में वो सारी संपत्तियां आ जाती हैं जिनका हर व्यक्ति इस्तेमाल करता है बिना रोक टोक के, जैसे सड़कें हैं, गाड़ियां हैं, ट्रेन्स हैं, और भी सरकार द्वारा विश्वविद्यालय बनाए हैं, स्कूल बने हैं, अस्पताल हैं, ये इस तरह की जो भी संपत्तियां हैं जिनको आम पब्लिक इस्तेमाल करती है बिना किसी बेरोक टोक के, वो सारी पब्लिक प्रॉपर्टी आती है। तो इन

0: आपने देखा होगा सार्वजनिक संपत्ति जो भी है कई बार विरोध प्रदर्शन के दौरान या दंगे हो जाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला होता है तो ज्यादा क्या होता है, हम लोग उसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं
1: क्योंकि हमारे हाथ में और कुछ नहीं होता ना, हम अपने घर की चीजें तोड़फोड़ नहीं करेंगे, जाकर के वहां जाएंगे। और एक बात रुमा ये भी है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो युवा होते हैं ना हमारे, ये अपने दिमाग से उस वक्त काम नहीं लेते, जो पीछे से फीडबैक दिया जाता है ना कि ऐसे करो, वहां पे चले जाओ, और वो चीज सामने नहीं आती है, वो पीछे ही रह जाती है, लेकिन सामने वो आ जाते हैं जो कि इस दंगों फसादों में
0: बिल्कुल। और एक चीज आपने जैसे बोला ना, युवा ही ऐसा ज्यादा जोश में होते हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण जो है बेरोजगारी भी है।
1: हाँ।
0: और जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो ऐसे लोगों को उकसाते हैं कि ये सब सरकार की वजह से हो रहा है और सरकार हमें ये नहीं दे रही है, ये सुविधा नहीं मिल रही है। जैसे आपने पीछे देखा होगा पंजाब में कई प्रकार के दंगे भड़काए गए, भड़के भी हैं, हम ज्यादा बात उस तरह की नहीं करेंगे क्योंकि मुझे लगता है हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो लोगों को अवेयर करना है कि अगर हम किसी प्रकार की ऐसी कोई अगर बात करते हैं तो उससे हमें क्या नुकसान होता है और हम किस इन चीजों से बच सकते हैं। और मुझे लगता है युवाओं को सही रास्ते पे लाने के लिए उनको अलग अलग एक्टिविटीज से जोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है, और जरूरी नहीं है कि सरकार ही इसके लिए एफर्ट करे। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं वो काम कर रही हैं, स्वयं सहायता समूह है काम कर रहे हैं, यूथ क्लब हैं जहाँ पे इन क्लब्स के साथ जुड़कर यूथ जो है अपने भविष्य को देखते हुए अच्छे निर्णय ले सकते हैं। उनको सोच समझ होनी चाहिए कि अगर हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो नुकसान
1: हमें
0: अपना
1: है।
0: और ज्योति जी मुझे लग रहा है कि बातें ज्यादा हो रही हैं और
1: मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं के बारे में बात हुई है तो हम युवा से संबंधित कोई गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल, और ऐसा ही एक थोड़ा सा गीत अगर हम अपने दोस्तों को सुनाएं तो मुझे लग रहा है कि ये जो गंभीरता हमारे विषय की है वो थोड़ी सी हल्कापन उसमें आ जाएगा।
1: हम भी हल्कापन ही चाहते हैं, ज्यादा गंभीर होना नहीं चाहते।
2: कहता हूँ कभी मैं हूर हूर कहता हूँ।

0: रुमा जी, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से हम आ गए हैं बातचीत करने के लिए दोस्तों के साथ। अब आप ये बताएं हमें, ये जो पब्लिक हमारी प्रॉपर्टी है, इसको जब कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो हम आम पब्लिक की भागीदारी क्या रहती है?
1: देखिए, पब्लिक प्रॉपर्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस एक तरह से हम सब उस संपत्ति के अधिकारी हैं, उसके मालिक हैं। तो एक मालिक होने के नाते जो भी संपत्ति होती है उसका हम जैसे घर में बचाव करने की कोशिश करते हैं। हमारे घर में अगर कोई बाहर से आ जाता है, कोई भी दंगा फसाद करता है, तो हमारी पहली कोशिश होती है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को सेफ रखें, खुद को सेफ रखें और हमें कोई नुकसान ना हो। तो सबसे पहले तो आम नागरिकों की, सभी की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि जहां कहीं भी इस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अगर हम भी उस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं या उन दंगों में हमें डर लग रहा है, हमें अंदेशा है कि यहाँ पे कोई दंगा भड़क सकता है, नुकसान हो सकता है, तो जो भी उस ग्रुप में, जो भी वहाँ पे हैं, जो भी समझदार व्यक्ति हैं, उनको समझाएं कि हमारा जो प्रदर्शन है किसी भी चीज के लिए है, जिस भी चीज के लिए हम लड़ रहे हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, वहाँ पे हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। और ज्यादातर आपने देखा होगा ज्योति जी, हम जब भी किसी दंगे की बात होती है या जब भी कोई नुकसान बड़ा हो जाता है तो आम पब्लिक जो है वो बहुत परेशान होती है इन चीजों से।
0: हाँ बिल्कुल।
1: और हम जब डिस्कशन करते हैं आपस में तो ये कहते हैं कि जिस संपत्ति को हमने नुकसान पहुंचाया है उसके लिए टैक्स हमने भरा है,
0: हम ही भरते
1: हैं, हमारी ही जेब का पैसा लगा है और हमारी ही हाथों से उसको नुकसान हो रहा है। तो जब भी हम किसी भी इस तरह की गतिविधि में शामिल हों या हमें लगे कि ऐसी गतिविधि हो सकती है, तो सबसे पहले हमें अपने आस पड़ोस को, खुद को इस बात के लिए अवेयर रखना है कि कुछ भी हो जाए हमने संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि थोड़ा सा नुकसान भी हमारे कंट्री को, हमारे स्टेट को, जहां पे हम रह रहे हैं उस जगह को कितना पीछे ले जाता है उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। और इसका खामियाजा हम सभी भोगते हैं।
0: खामियाजा तो हम भुगतते हैं, लेकिन रुमा होता पता क्या है कि जब हम किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहां पर ये सब हो रहा होता है, हम ना चाहते हुए भी उस भीड़ का अगर हम हिस्सा बन जाते हैं तो हम वहां पर आते टाइम उस वक्त किसी को नहीं समझा पाते हैं कि भाई आप ऐसा मत करो, क्योंकि हमें अपनी भी, अपना भी देखना होता है। तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम उसमें इन्वॉल्व ना हो, हम पीछे रहें।
1: बिल्कुल, यही हमारी भागीदारी इसमें सुनिश्चित हमें करनी चाहिए कि जहां तक हो सके हम अवेयर कर सकते हैं जनता को। औरों को अवेयर करने से पहले तो हमें खुद को अवेयर करना है, हमारे हाथों किसी को कोई नुकसान ना होना चाहिए। आप देखिए, ये बहुत ही गंभीर समस्या है कि, और मुझे समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों होता है। जब भी हम किसी चीज की डिमांड सरकार से करते हैं तो हम अपनी बात शांत तरीके से, अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो और कोई विकल्प ना ढूंढते हुए हम तोड़फोड़ पे आ जाते हैं, आगजनी पे आ जाते हैं। और इस तरह के कई आपने हादसे देखे होंगे। अभी पीछे हमारे यहाँ हिमाचल में बहुत बदलाव आए हैं, बहुत तरक्कियां भी हुई हैं, वंदे भारत ट्रेन आती है, तो आपने सुना होगा कि पीछे उस पर भी लोगों ने पत्थरबाजी करी, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पे ये है कि जब हम इस तरह की हरकतें करते हैं तो क्या इन चीजों से हमारी समस्या सॉल्व हो जाती है? तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि अगर हमारा विकास हो रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, आज हमारे स्टेट में ट्रेन चल रही है, बसें चल रही हैं, और भी काफी सारे बदलाव आए हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, एजुकेशन के हब जो है अब हिमाचल भी हो गया है, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे इंस्टीट्यूट जो है वो बने हैं, और अगर देखो और इनका सारी चीजों की जो यूटिलाइजेशन है वो हम करेंगे, हमारे बच्चे करेंगे, अगर हम ही इनको नुकसान पहुंचाएंगे, ये नुकसान बहुत, इसकी भरपाई जो होती है वो बहुत मुश्किल होती है।
0: इसकी भरपाई के लिए हमें और ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा
1: और
0: है।
1: ये जो महंगाई जो बढ़ती है ना, मुझे लगता है कि इसके पीछे भी इस तरह की बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो शामिल होती हैं।
0: तो मैं, एक और गीत का वक्त हो गया है कार्यक्रम में।

0: ज्योति जी, बहुत ही प्यारा गीत सुनाया आपने और मजा आ गया गीत सुन के। तो मुझे लगता है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए इस कार्यक्रम में।
1: यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को सामान्य रूप से नुकसान पहुंचाता है तो उसको क्या सजा मिल सकती है, अब हम सजाओं के बारे में बात करेंगे।
0: बिल्कुल, देखिए हम लोग सोचते हैं कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा तो हम बच जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने देखा होगा अक्सर दंगे होते हैं, कहीं प्रदर्शन होते हैं, कहीं आगजनी या किसी भी प्रकार की कोई नुकसान हो जाता है, तो वहां पे जो है पुलिस की एक ड्यूटी हो जाती है कि ऐसे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके खिलाफ केसेस बनाए जाते हैं, कई तरह के केसेस ऐसे रजिस्टर्ड भी होते हैं। इसमें जो कानून है, ये जो बनाया है पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेजेस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस एक्ट, इसके तहत सरकार ने जो है वो सजा के भी प्रावधान किए हैं। और यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला इस तरह के मामले में दर्ज हो जाता है, तो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, तो उसको 3 साल से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है, और सजा के साथ साथ इसमें जुर्माना
1: भी हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं।
0: बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं जब भी कोई इस तरह का मैटर आता है तो हम बिजली काट देते हैं, पानी की पाइपें तोड़ देते हैं, पानी की सप्लाई रोक देते हैं, नुकसान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी से बात नहीं मानी जाती है। तो हमारा क्या होता है कि हम अगर पानी बंद कर देंगे किसी का, बिजली की आपूर्ति बंद कर देंगे, तो जो लोग परेशान हो रहे हैं वो भी हमारे साथ आके शायद हमारे लिए बात करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जब हम इस तरह का नुकसान करते हैं, जैसे मानो पानी की पाइपें तोड़ दी, बिजली की तारें जला दी, कुछ भी कर दिया इस तरह का नुकसान, तो यहाँ पर भी 6 महीने तक की जो है वो कम से कम जेल हो सकती है। और अगर उस अपराध की गंभीरता अधिक है, नुकसान की जो जिसको बोल सकते हैं
1: ज्यादा कर दिया,
0: ज्यादा मात्रा में नुकसान हुआ है, तो ये सजा भी 5 साल तक बढ़ सकती है। बिल्कुल। और आपने देखा होगा कई बार कई जगहों पे ऐसे होता है कि हम विस्फोटक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो ऐसे में ये जो सजा है, जो कम से कम सजा है वो 1 साल है, और इसमें अधिक से अधिक जो सजा है वो 10 साल है, 10 साल तक की सजा हो सकती है, और वहां पे भी वो कठोर जेल होती है, सश्रम कारावास जिसको बोलते हैं। तो साथ में इसमें नुकसान जो है, सॉरी, इसमें जो जुर्माना है वो भी 50,000 से लेके 2 लाख तक का आपको जो है जुर्माना सरकार को देना पड़ता
1: है। यहाँ से ना एक अलग विषय पर बात करूंगी, अलग तरफ चलती हूँ जरा, कि चलो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन कई लोग ना जिद बाजी में आकर के कि हमारी बात मान ले कोई, चाहे वो सरकार की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हो या किसी व्यक्तिगत मामले के लिए, कोई ट्रेन के छत पे चढ़ जाता है, कोई बस के ऊपर चढ़ जाता है, तो ऐसे में भी क्या सजा होती है?
0: बिल्कुल होता है। आप अपनी जान को अगर खतरे में डाल रहे हैं या आपकी वजह से किसी और की जान खतरे में आ रही है, तब भी सजा का प्रावधान है। जैसे आपने बोला कि बस की छत के ऊपर चढ़ के, हमने देखा है कि अभी तो शायद कम हो गया है, पहले समय में बसेस बहुत कम होती थी, तो बस की सीटों के छत के ऊपर सफर करते थे लोग, वो भी क्राइम है, और वहां पर भी 1 महीने से लेकर 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है जी।
1: अच्छा, यानी कि जब आप उतरेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, ये याद रखिएगा।
0: बिल्कुल। और लेकिन अब तो लोगों में काफी अवेयरनेस आ गई है और काफी हमारे पास संसाधन भी हैं, तो छतों पे अब मेरे को लगता नहीं कि यहाँ कोई सफर करता है
1: अभी भी। वैसे आजकल को कभी कभी कोई एका दुक्का वीडियोस देखने को मिल जाते हैं कि छत पर तो नहीं लेकिन कोई साइकिल से चला हुआ है ना, तो वो बस की पिछवाड़े को पकड़ देता है कोई डंडे वंडे को, अपने रास्ते में सही जगह।
0: बिल्कुल। और देखो, अपनी जान को तो नुकसान में वो डाल ही रहा है, लेकिन अगर ऐसे करते हुए अगर वो कहीं उसका हाथ फिसल जाता है, छूट जाता है, बस के नीचे आ जाता है, तो आप देखिए कि सीधा का सीधा केस जो है वो बस चलाने वाले के ऊपर बनता है। तो यहाँ पर भी अगर पता चल जाता है कि गाड़ी चलाने वाले की या साइकिल वाले की गलती है, तो उसके ऊपर केस दर्ज हो।
1: कई बार छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, स्कूल से घर को जा रहे होते हैं, वो भी बस में पीछे की तरफ लटक जाते हैं और पता नहीं होता कंडक्टर को।
0: बिल्कुल। और ये बिल्कुल गलत है, इसके लिए तो मैं यही कहूंगी कि जो भी परिवहन चालक हैं उनको बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी बस के पीछे कोई लटका तो नहीं है या इस तरह का कोई गलत तरीके से बस को पीछा तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा कर रहा है तो उनको खुद ही एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ
1: गीत सुनने।
0: बिल्कुल ज्योति जी, अब हो गया है समय गीत सुनने का, तो सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: खूबसूरत से गीत के बाद रुमा जी, अब मैं आपसे और भी बहुत कुछ जानना चाहती हूँ इस विषय पर। ये मत समझिए आप श्रोताओं कि ये बहुत छोटा सा विषय है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मुझे भी ऐसा लगा था कि इसमें कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है अभी इसमें। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब दंगे होते हैं, लोग तो भाग जाते हैं, कोई मिलता नहीं, फिर उसके बाद ऑन द स्पॉट उस जगह पर, तो कैसे पता चलता है पुलिस को कि कौन कौन लोग वहां थे? कुछ कुछ तो वीडियोस भी बनाते होंगे खैर, और फिर उसके बाद आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? कोई लोग ऐसे भी होते होंगे बीच में से जो मुखबिर भी होते होंगे, कुछ बताते भी होंगे।
1: बिल्कुल।
0: और फिर सजा का प्रावधान कैसे रहता है?
1: सजा के उपबंधों के बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे कौन से अपराध में कितनी अपराध की गंभीरता है, उसी हिसाब से सजा जो है वो निर्धारित होती है। लेकिन आपने बात करी कि ये बात और बहुत सोचने वाली भी है कि जब दंगे हो रहे होते हैं तो वहाँ बल्क में भीड़ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, किसने नुकसान पहुंचाया पब्लिक प्रॉपर्टी को, किसने किया, किसकी जवाबदेही रहेगी, तो ये सच में सोचने वाली बात है। और आजकल का तो जो टाइम है वो सोशल मीडिया वाला है।
0: क्या केवल उसी को पकड़ लिया जाता है जो नेतागिरी कर रहा होता है उस वक्त?
1: बिल्कुल, जो नेता होता है जिसके कहने पर वो दंगा बुलाया, जो भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हुई है किसी भी प्रदर्शन के लिए, जिस भी ग्रुप ने, समूह ने उनको बुलाया है, उनकी जो जवाबदेही होती है वो सबसे पहले होती है। सबसे पहले अगर कहीं पे भी नुकसान होता है तो आह्वान करने वाले व्यक्ति को या समूह को जो है वो पुलिस जो भी उनकी कार्रवाई होती है उसमें शामिल करती है। वहीं से पता लगाने की कोशिश की जाती है कि किस किस व्यक्ति द्वारा कहाँ कहाँ कितना नुकसान हुआ। और आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में आपने देखा है कि यहाँ कोई मर भी रहा हो तो हम उसको डॉक्टर के पास पहुंचाने की बजाय पहले वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो फुटेज से भी पता चल जाता है कि कौन सा व्यक्ति है जिसने फलां प्रॉपर्टी को फलां नुकसान पहुंचाया है। और इस तरह से जो है वो सबकी जवाबदेही बनती है। और उस भीड़ में जैसे मानो एक गाँव से लोग गए हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो FIR होती है वो पूरे ग्रुप के ऊपर दर्ज हो जाती है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि पता होता है कौन कौन से लोग वहाँ पे गए हैं, तो उन सबकी जवाबदेही हो जाती है। वहाँ से पता चल जाता है कि किस व्यक्ति ने दंगे को अधिक भड़काया है, किसकी वजह से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा है। तो इस तरह से बहुत सारे जो चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो है वो इन लोगों के खिलाफ FIR या एक्शन हो सकता है। और एक चीज और ज्योति जी, FIR की बात जब आती है तो जब दंगे हो रहे होते हैं ना, तो और ग्रुपिज्म जहाँ पे होता है तो आम पब्लिक डरती है इन चीजों से कि हम रिपोर्ट नहीं करेंगे चाहे उनके सामने कुछ भी नुकसान हो गया हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस को सूचना दे देता है किसी भी नुकसान के बारे में, तो उसकी जो जानकारी है वो गुप्त रखी जाती है, उसके बारे में नहीं बताया जाता। फोन के माध्यम से भी आप पुलिस को सूचित कर सकते हैं, क्योंकि एक देखो जिम्मेदार नागरिक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, मेरे इलाके में कुछ हो रहा है और मुझे लग रहा है कि आज इस बिल्डिंग को ये दंगाई जो है वो जला देंगे या ये पुल तोड़ देंगे या फिर किसी स्कूल को नुकसान पहुंचाएंगे। तो देखो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम पुलिस को इन्फॉर्म करें ताकि कोई बड़ा नुकसान।
0: पर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की ना कई बार आम नागरिकों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, शायद इस वजह से कोई खुलकर के सामने आना नहीं चाहता।
1: लेकिन मैंने आपको बताया ना कि इस डर से बाहर हमें निकल जाना चाहिए। हम 100 नंबर पे पुलिस को सूचित कर सकते हैं या जो भी हमारा स्थानीय थाना है वहां पर हम गुप्त कॉल के माध्यम से अपने वहां पे हो रहे नुकसान के बारे में पुलिस को सूचित कर
0: लेकिन
1: सकते हैं।
0: लेकिन कई शातिर लोग होते हैं ना, उन्हें पता भी चल जाता है कि किसने ये इन्फॉर्मेशन दी है, तो होता क्या है कि वो कानून के तहत उनको अंदर ही रखने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, उनको बेल भी मिल जाती है।
1: बिल्कुल। लेकिन देखो आपने बेल के बारे में बात करी, तो इस तरह के जो अपराध होते हैं इनको गंभीर श्रेणी में रखा गया है, और जब भी कोई व्यक्ति इस तरह का अपराध करता है तो इसको आसानी से जो है वो बेल नहीं मिलती है जब तक कि वो साबित ना कर दे कि वो उस दंगे में शामिल नहीं था। और अगर वो उस दंगे में शामिल पाया जाता है, उसके विरुद्ध साक्ष्य मिलते हैं, तो फिर उसको बेल मिलना आसान नहीं होता है।
0: तो मुझे एक बात और जानना चाहूंगी मैं आपसे कि कई बार ना हमारी बॉलीवुड में भी बहुत सारी फिल्में बनती हैं, अलग अलग विषयों पर बनती हैं, और उनको देख करके कई बार तो मन में बड़ा जोश आ जाता है कि हाँ भाई हम भी अपने देश के लिए ये करेंगे वो करेंगे, और कई बार ऐसा डर सा जाता है इंसान उल्टा कुछ लोग कि नहीं नहीं अगर हम ऐसा करेंगे और अगर हम कोई सूचना देते हैं कुछ करते हैं तो देखो ना, वो जो नायक होता है उसको ऐसा दिखाया जाता है कि उसको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, तो तो उससे भी कई लोग, या मैं यूं कहूं कि प्रेरणा लेते हैं, कई लोग डर जाते हैं।
1: देखो ज्योति जी, फिल्मों की अगर हम बात करें तो वो पहले ही बताया होता है कि सब कुछ काल्पनिक है, और जो फिल्मों में होता है वो हमारी रियलिटी में बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर हमारी जो जनता है या आम आदमी है वो ये सोच के राय बना लेता है कि फिल्मों में ऐसा हुआ था और हम ऐसा करेंगे तो ये हो सकता है, तो ऐसा नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति पुलिस को सूचना देता है, उसकी आइडेंटिटी है, अगर वो चाहता है कि गुप्त रखी जाए तो वो पूरी तरह से गुप्त रहती है, और पुलिस को लगता है कि फलां व्यक्ति के बारे में अगर पता लग गया है, कि दंगाइयों को पता लग गया कि इसने सूचना दी है तो उसकी जान माल को नुकसान है, तो सरकार उसको प्रोटेक्शन भी देती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फिल्मों को देख के अगर हम राय बना लेंगे और हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से कई तरह के नुकसान हो जाएंगे और इनडायरेक्ट हम खुद उस नुकसान।
0: देखिए वैसे हमने तो डरना कभी सीखा नहीं है, पर हाँ कई लोग हैं जो लोग इस तरह से सोचते हैंडर जाते हैं
1: जी।
0: चलिए रोमा जी, ये तो रही बात थोड़ी सी हंसी मजाक की भी हो गई
1: जी जी,
0: और कुछ नॉलेज भी मिल गया है लोगों को
1: जी।
0: अब ये बताएं कि ये जो नुकसान हो गया, ठीक है, अब दोबारा से वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी, बस अगर जल गई है तो एक और बस लानी पड़ेगी, ट्रेन टूट गई है उसको बनाना पड़ेगा, उसके शीशे वगैरह चेंज करने पड़ेंगे, तो ये जो नुकसान है उसकी भरपाई कैसे होती है?
1: जो भी दंगाई होते हैं, जो भी दंगों को भड़काते हैं, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, वो सभी व्यक्ति जो हैं वो इस नुकसान की भरपाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और सबसे पहले अब बात ये आती है कि पता कैसे चलेगा इसने नुकसान पहुंचाया। तो मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि जो भी व्यक्ति समूह का मुखिया है उसका, या जो भी ग्रुप वहां पे या नेता है वो वहां पे उन दंगाइयों को लेके आया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो भी नुकसान पब्लिक को हुआ है, पब्लिक प्रॉपर्टी को हुआ है, उसकी भरपाई वो अपनी जेब से करेंगे, और
0: चाहे उसने नुकसान किया है या नहीं किया है।
1: बिल्कुल, क्योंकि देखो वो लेके तो वही आया है वहाँ पे पब्लिक को, और वहाँ पे जो भी उसने उसका भड़काऊ भाषण दिया या जो भी उसने बातें करी, जिसके मद्देनजर जो है वो पब्लिक भड़क गई और उन्होंने, आपने कहा बस जला दी। अब देखिए बस की तो कोई गलती नहीं थी उसमें ना, तो भड़काने वाले की तो जिम्मेदारी बन जाती है। तो वहाँ पे उसके साथ साथ वहाँ पे मैंने बताया आपको कि वीडियो रिकॉर्डिंग जो अगर कहीं वहां पे मिल जाती है, या उस एरिया में सीसीटीवी फुटेज है, तो जिस भी व्यक्ति की वहां पे पिक्चर सामने आ जाती है उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बन जाती है जिसने नुकसान पहुंचाया है, और उस नेता की, कि वो उस नुकसान की भरपाई करे। और एक चीज और मैं इसमें आपको बताऊंगी कि जैसे मानो मैंने आपका कोई नुकसान कर दिया है और आपने उसकी भरपाई अब मेरे को ही करनी है और मेरी जेब में पैसा नहीं है आपको देने के लिए, तो अगर मेरे नाम पे जितनी भी संपत्ति है वो सारी कुर्क हो जाती है, और सरकार जो है उस संपत्ति की कुर्की करके उस नुकसान की जो है भरपाई करती है।
0: रुमा, ये तो रही जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी बात, लेकिन ऐसे दंगों में ना कई बार प्राइवेट जो गाड़ियां खड़ी होती हैं, बाइक्स होती हैं और कारें होती हैं, उनको भी तो नुकसान पहुंचता है।
1: बिल्कुल, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी ग्रुप की या उसी समूह की होती है जो जहां पे दंगा भड़का रहा है, और उसके नुकसान के लिए जो अगर मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी वहां पे नुकसान हो गया है, तो उसकी भरपाई के लिए मैं सरकार के आगे एप्लीकेशन दे सकती हूँ कि ये नुकसान हुआ और उसकी भरपाई की जाए या करवाई जाए।
0: क्योंकि सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी की बात नहीं, साथ साथ में हम और भी बातें लेंगे ताकि लोगों को अच्छी तरह से जो है इसकी अवेयरनेस हो सके, जागरूकता बन सके।
1: बिल्कुल, देखो ज्योति जी, जब पब्लिक, जहां पे पब्लिक है वहाँ पे प्राइवेट पर्सनल व्यक्ति भी हैं, है ना, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज भी हैं, तो जब नुकसान पब्लिक प्रॉपर्टी को होता है तो वहाँ पे आम आदमी को भी तो नुकसान होता है, और उस आम आदमी के नुकसान की भरपाई भी उन्हीं को करनी पड़ती है जो वहाँ पे दंगा या प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए कितना गंभीर सा विषय हम लेके चले हैं, और थोड़ी थोड़ी देर बाद ज्योति जी के चेहरे के जो एक्सप्रेशन है वो उसी हिसाब से चेंज हो रहे हैं, और अच्छा भी लग रहा है। इतना सीरियस होके सुन रही है मैं ज्योति जी, और हमारी, मुझे उम्मीद है कि हमारे दोस्त भी इतना ही सीरियस होके सुन रहे होंगे,
0: ध्यान दे रहे होंगे पूरा।
1: बिल्कुल, और ये चीज ध्यान देने वाली भी है। देखो हम तो बात कर रहे हैं, बड़े बड़े दंगों की बात कर ली हमने, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमने आम देखा है गांव में लोग लड़ते हैं आपस में, तो मेरे घर के पास से सरकारी पानी की पाइप जा रही है, और वो आपके घर तक आ रही है, मेरी और आपकी बनती नहीं है। अब मैंने आपको पानी नहीं जाने देना है तो मैं बीच में पाइप काट दूंगी, तो ये भी एक प्रॉपर्टी उसी का नुकसान है। हम छोटे नुकसान की बात करके चले, अगर मैंने पाइप काट दिया है और कहीं पे भी वो सीसीटीवी में या आपने रिकॉर्ड कर लिया है कि यही उसको नुकसान करता है, तो आईपीएस विभाग में जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं आप, और उस पाइप का जो डैमेज है उसको भरने के लिए आईपीएस विभाग जो है वो मुझे फोर्स कर सकता है, या मेरी जिम्मेदारी हो जाती है वहां की, मैंने पाइप तोड़ी है, चाहे गुस्से में तोड़ी, आपको दुख देने के लिए तोड़ी, आपको परेशान करने के लिए तोड़ी, लेकिन थी तो वो सरकारी विभाग की पाइप, तो मुझे वो ठीक करवा के देनी ही थी।
0: इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है आज के समय में कि आप अपने घर के आसपास में कैमरा लगवा लें, या फिर दो चार जो लोग हैं घर हैं वो आपस में मिल करके एक ऐसी जगह पर फिट करवा लें ताकि वहां से बिल्कुल साफ साफ नजर आए कि कौन क्या कर रहा है।
1: बिल्कुल, पर ज्योति जी मैं तो अब यही कहूंगी कि सीसीटीवी कैमरा लगाने की बजाय अगर हम लोग हमारे दिलों में जो गांठे हमने बांध रखी हैं उनको खोल दें, तो मुझे लगता है कि जो आपसी सद्भाव और प्रेम हमारे बीच होगा वो अपने आप ही हमारी छोटी छोटी जो उलझने हैं, छोटी छोटी शिकायतें हैं, वो खत्म होती जाएंगी। और देखिए इंसान है ही शिकायतों का पुलिंदा है, तो हम छोटी छोटी चीजों को बांध के रख लेते हैं, ये चीजें हमें छोड़नी होंगी, जब तक हम इन चीजों को नहीं छोड़ेंगे तब तक नुकसान हम अपना भी करेंगे और औरों का भी करेंगे।
0: बिल्कुल, जैसे कि रूमा और मैंने छोड़ दिया, और देखो आज हम लोग बिल्कुल साथ साथ भी बैठे हैं।
1: जी देखिए, प्यार जहाँ पे है वहाँ पे सब कुछ संभव है, हर एक चीज जो है वो प्रेम भाव से ठीक हो जाती है, और बहुत सारी चीजें जो उलझी हुई थी वो सुलझ भी जाती हैं। तो मेरा दोस्तों से यही अनुग्रह है आप लोगों से कि छोटी छोटी चीजों को अपने मन पे मत रखिए, और ये देश हमारा अपना है, और हम देश की बात ना भी करें तो जहाँ हम रहते हैं वो गांव, वो घर, वो पड़ोस, वो सब हमारा अपना है, और अगर हम मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहेंगे तो यही सद्भाव हम आगे फैलाते जाएंगे और पूरे देश में प्रेम भाव जो है वो फैलेगा और किसी को नुकसान नहीं होगा। और एक इसी बात पे मेरे को ना एक ज्योति जी गीत याद आ गया है, वो गीत मैं चाहूंगी कि आप हमारे दोस्तों को सुनाएं। देश प्रेमी फिल्म का गीत है मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो।
0: रुमा जी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने देखा है आपको भी गुनगुनाते हुए गाते हुए कुछ छोटे छोटे रील्स में देखा है, और मैं चाहती हूँ कि इस गीत की एक लाइन आप ही शुरू करें।
1: अरे मैं इतना अच्छा नहीं गाती हूँ, तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ यही गीत सुनना है मुझे, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। गुनगुनाऊंगी किसी अगली बार। ठीक है जी।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान। और आज इस उड़ान में आपके साथ हूं मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया
1: और रूमा गुलेरिया।
0: हमेशा रूमा गुलेरिया तो होती ही है आपके साथ लेकिन आज मैं अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेकर के आ गई हूँ। मुझे लगा कि ये जो टॉपिक है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मुझे मेरा मन किया कि मैं इसके बारे में रूमा जी से क्वेश्चन करूं। और रूमा जी तो हर कानूनी दांवपेच में माहिर ही हैं, वो बता ही देती हैं कि क्या कैसे होना चाहिए और क्या क्या एक्ट है और साथ में क्या क्या सजा का प्रावधान है, और साथ में वो सलाह भी देती हैं बहुत अच्छी।
1: देखिए, अब बात बताएंगे किसी को किसी भी कानून के बारे में तो सलाह देना हमारा फर्ज भी बनता है। और मैं तो यही कहूंगी सबसे कि सारी संपत्ति हमारी अपनी है, इसको संभालें, इसका रख रखाव करें अच्छे से, उचित प्रबंधन करें, ताकि हम ही नहीं हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हमें ये कहें कि हमारे पुरखों ने हमें बहुत अच्छी विरासत दी है। जैसे हम कहते हैं हमारे पुरखों ने हमें बहुत अच्छी विरासत दी है, बहुत अच्छे संस्कार, बहुत अच्छा कल्चर जो हमारे सामने है। आज भी हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कहीं कहीं मनों में भेद हैं तो मैं तो यही कहूंगी मतभेद ना रखें किसी के साथ, और मन में भी भेद ना रखें। जो भी आपके मन में है वो खुल के कहें, खुल के बात करें, और अपनी इस संस्कृति को सुदृढ़ बनाने में जो भी आप सहयोग कर सकते हैं वो करें।
0: जी, आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए या बाहर कहीं पर निकलते हैं घर से बाहर और इस तरह की चीजें आपको दिखती हैं, टूटी फूटी सी इमारतें हो जहां पर आप जा रहे हैं या वहां पर कुछ लिखा विखा हो, याद रखिएगा अगर आप इमारतों पे कुछ लिखते हैं ना, वो उसमें भी सजा का प्रावधान है अगर आप लिखते हुए पाए गए वहां पर तो।
1: और देखो ज्योति जी, हम हिमाचल में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, हम लोग भी घूमने जाते हैं, और हम क्या करते हैं, कुछ खाने का ले लिया, कुछ भी कर लिया, हम इंजॉय करते हैं और वो कचरा वहीं पे फेंक देते हैं, तो ये भी हम एक तरह से अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक गलत जो नॉलेज, जो पिक्चर हमारी है वो लोगों के सामने जा रही है। जो भी टूरिस्ट यहाँ आता है वो यही जाके कहता है हिमाचल में नदियों में कचरा भरा पड़ा था या वहां पे कूलें जो है वो कचरे से अटी पड़ी थी, तो ये सब चीजें हम कहीं ना कहीं खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
0: जुमा, एक नुकसान और भी करते हैं लोग, खास करके अगर मैं युवा जोड़ों की बात करूं तो जो लोग घूमने आते हैं या हमारे भी लोकल अगर जाते हैं तो देखो हिमाचल है हमारा पेड़ों से, है ना, पेड़ों की वजह से ही हमारे यहाँ पर ठंडक है और बारिश होती रहती है, असम में बारिश आजकल भी हो रही है, तो पेड़ों के तने पे वो अपने नाम लिखते हैं, खोद खोद के उसे खराब करते हैं।
1: बिल्कुल, वो नहीं होना चाहिए,
0: वो भी हमारी अपनी ही प्रॉपर्टी है।
1: बिल्कुल, और देखिए बोलते हैं हरियाली है जहाँ जीवन है वहाँ, और हम बहुत खुशनसीब समझते हैं खुद को कि हम हिमाचल में हैं। आज पूरा देश तप रहा है गर्मी से और हम आज भी यहाँ पे ठंडी ठंडी बुछारों का आनंद ले रहे हैं।
0: बिल्कुल, हाँ।
1: और बहुत अच्छा सा प्लेजेंट सा मौसम है, लोग घूमने आ रहे हैं, तो घूमने आने वालों से भी आग्रह है कि जगह जगह गंदगी ना फैलाएं, अपने साथ छोटा सा एक लिफाफा रखें, जो भी आपका कचरा है उसको उसमें रखें। हम भी कहीं जाएं तो हम भी यही करेंगे, और मैं तो ऐसा करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम कहीं भी गंदगी डालते हैं तो हम अपने बारे में लोगों को, हम कितने फूहड़ हैं, कितना हमें क्या बोल सकते हैं, अनसिविलाइज्ड पीपल हैं हम, तो वो हमारा ही प्रदर्शन सामने जाता है। तो आप घूमिए, इंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए इस मौसम का, और साथ ही साथ सफाई का भी ध्यान रखें।
0: और सिविक सेंस की बात आजकल हर रोज ही हो रही है, जो भी मोबाइल उठाओ तो आपके सामने सिविक सेंस के बारे में बहुत सारी रील्स हैं, वो आपको भरी पड़ी हुई मिलती हैं। तो ये जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है इसको बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है और ये भी आपके सिविक सेंस में ही आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ तो आप ने सीखा होगा, समझा होगा, और आगे अपनी पीढ़ी को भी बताएंगे, आसपास के लोगों को भी समझाएंगे। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करते हैं। मुझे और ज्योति पठानिया
1: और रूमा गुलेरिया
0: को दीजिए अनुमति, जल्द मिलेंगे आपसे किसी और विषय के साथ
1: इसी कार्यक्रम में मेरे हौसलों की उड़ान।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गाँवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गाँवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों को आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का 4th संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन किया। इस समय गृह मंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: शामिल हो रहा हूं। ये 4th संस्करण आते आते पहले संस्करण में यूपी में जो परिवर्तन हुआ है उसका दुनिया ने परिचय किया। दूसरे में यूपी में आना है ऐसा इरादा जताया। तीसरे में यूपी में आए और 4th में यूपी के विकास में सहयोगी बनकर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा के साथ पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत के विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है और उत्पादन, निवेश तथा निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि मेक इन इंडिया का अगला लक्ष्य भारत को वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति बनाना है, जिससे 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर दोनों निशानेबाजों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में मिक्स 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर भारतीय एथलीट मनु टीएस पुवम्मा, एमआर विशाल टीके और मिथ्या रामराज को बधाई दी है। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में भारत का सामना ईरान और चीनी ताइपे के बीच होने वाले मैच की विजेता टीम से होगा। भारतीय स्क्वाश खिलाड़ियों ने 3 पदक पक्के कर लिए हैं। जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिल कुमार की जोड़ी मिक्स्ड युगल के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्पदंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्पदंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्पदंश जानलेवा हो सकता है, कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
4: पता नहीं तुझे उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
6: पता है ना, मुझे टीबी है।
5: चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दे।

0: मम्मी मम्मी मम्मी
1: क्या है?
0: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टर, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं। लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना से यूर अ जीनियस।
5: यूर अ जीनियस?
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ। स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
7: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना, ये भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्री राम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं, अपनी मर्यादा में लड़े। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझमें और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे।
8: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
7: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
9: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
7: हाँ बोलो।
9: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
7: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
9: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
5: गजब बेइज्जती है।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी बने होए हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

91.2 मेगाहर्ट्ज ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्पदंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्पदंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्पदंश जानलेवा हो सकता है, कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: देख पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
4: पता नहीं, उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
6: पता है ना, मुझे टीबी है।
5: चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: मम्मी मम्मी मम्मी
1: क्या है?
0: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टर, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं। लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना सही, यूर अ जीनियस।
5: यूर अ जीनियस?
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ। स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
7: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना, ये भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्री राम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं अपनी मर्यादा में। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझमें और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे।
8: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं। ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
10: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
9: हाँ बोलो।
10: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
9: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
10: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
11: गजब बेइज्जती है।

कानवी दशमलव 2 MHz पर ए दोहा सारियां दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर होई हो कार्यक्रम ले करी माटी दी महक। दर्शो तो तुह सारे भी माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर कने जुड़ी होने ने कने तुह सारे जो इंतजार जेड़ा ऐसे रहंदा है कि कालू दिया 2 बजदे न कने तुह सारे इस कार्यक्रम दे सफर कने जुड़ते न। इसी कन्नै मौसम उपर अगर अहां अपनी नज़र दौड़ांदे न या मौसम दी ओर अहां अपना जेह्ड़ा ध्यान ऐ से लगांदे न तां कुत्थी ना कुत्थी मौसम कदी जेह्ड़ा ऐ से बरखा लगी पौंदी कदी जेह्ड़ा ऐ से धुप्प लगी पौंदी। तो ज़रूर तुहां भी अपने अपने मौसम दा अपने शहर अपने गांव दा जेह्ड़ा मौसम है इस दी जानकारी जेह्ड़ा ऐ से ज़रूर अहां तक पहुँचाई सकदे कि तुहांदे शहर दा मौसम कदे है कने किस तरीके ने तुहां अपना जेड़ा ख्याल है से रखा देन। तो जरूर अहां भी तुहां दा जेड़ा ख्याल है से रखा देन कने तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर च जुड़ सकते। जुड़ने वास्ते जेड़ा नंबर है से तुहां तक पहुँचाईंदे न नंबर है 7018117091 नंबर तुहां तक पहुँचाईता है कने बाकी जेड़ा काम है से तुहांदा है। इसी कन्नै अहां अपने कार्यक्रम दा जेड़ा आगाज़ है पहले आगाज़ करी लैंदे न फिर बाकी दियां जेड़ा गल्लां न से तुहां तक लेकर आउंदे न।

बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम एंजॉय करा देना अपनी रेडियो दोष चशी कने। इसी कने कार्यक्रम दा जेड़ा आगाज

अजकना जिहड़ा दिन है सियाहां वास्ते बेहतर खास है। राष्ट्रीय पुत्री दिवस जिहड़ा है सियाह जहां बना देन ते इहदे उपर अहां जरूर गलबात करनी है। कने तुहां सारे भी मेरी गलबात करने जुड़ सकदे, कने अपना अपना रेडियो सेट जिहड़ा है से ऑन करी लिया, कने इस सफर कन्नै जुड़िया। इस सफर तुहां तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक। समय की गल करिए 2:09 कार्यक्रम च हुई तो समय के अनुसार जल्दी जल्दी कार्यक्रम च जुड़िया। मौसम की ओर पहले भी अहाँ ध्यान जिहड़ा से अपना लगाया था तो कुथी ना कुथी जिहड़ा तापमान है तापमान उपर जिहड़ा से थोड़ी देर नज़र अहाँ दौड़ाते हैं। अधिकतम तापमान जिहड़ा से 22 डिग्री सेल्सियस कने इसी कने 29 डिग्री सेल्सियस जिहड़ा से रहना है। कने न्यूनतम तापमान की गल करिए 15 डिग्री ते 18 डिग्री सेल्सियस रहने तक जिहड़ा अनुमान है से मौसम विभाग ने जताया है। तो जरूर बारिश की संभावना भी जरूर दसी हो है। दोपहर का जिहड़ा समय है से चल रहा है तो अपने कामकार भी मौसम के अनुसार ही करा दे होने। कने मौसम जिहड़ा से बदल जिहड़ा ने से छाए रहने न, कने बारिश भी जिहड़ा से जरूर होई हो है। बारिश होने की जिहड़ा संभावना है से जरूर 53% है। कने वैसे भी तो हाँ अपने आस पास दिखा देने तो बरखा वाला जिहड़ा मौसम है या बरखा जिहड़ा से कुथी कुथी जिहड़ा से होई हो है। तो इसी कने तो हाँ सारे भी कार्यक्रम के सफर च जुड़िया कने हाँ भी इस सफर जो थोड़ा जिहा और अगे बढ़ाते हैं। कने तो हाँ तक अगली जिहड़ा फरमाइश है अगला जिहड़ा गीत है से पहुँचाते हैं। इंतज़ार जिहड़ा है से तुहां दा खत्म करते हैं तो जरूर ये गीत ये फरमाइश तुहां तक पहुँचा देन तुहां सारे भी इस कार्यक्रम के सफर च जुड़ी सकते।

0: श्रोताओं तो सारे सुनिया गीत फरमाइश फिर ते हाँ वापिस आई हूँ अपनी गलबात उपर कने तो हाँ सारे भी गलबात करने जरूर जुड़ी होने न नहीं जुड़े न तो जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़िया जुड़ने वास्ते जड़ा हाँ दा नंबर है से तो हाँ तक फ्री ते पहुँचाई दे न नंबर है 7018117091 नंबर फ्री ते तुह तक पहुँचाई ते कने तुह सारे ही नंबर जड़ा है से नोट करी लिया होना है कने जरूर अपना मोबाइल फोन जड़ा है से चुकी लिया होना है कने कॉल करना जड़ा है से शुरू होई होने अगर नहीं होए होने तो जल्दी जल्दी समय के अनुसार जड़ा है से इस कार्यक्रम के सफर च जुड़िया तो जरूर अपनी गलबात जड़ा है से तुह तक पहुँचा देना क्योंकि गलबात जड़ा है से आज की खास है। खास गल बात यह है कि आज हाँ जिड़ा खास दिन बना देन से बना देन राष्ट्रीय पुत्री दिवस तशो तो अजकने दिने दा बनाने दा क्या मकसद है या क्या जागरूकता जड़ा है से फैलानी है क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ हाँ जिड़ा खास दिवस बना देन कने जागरूक भी जड़ा है से जरूर आते हैं तो जागरूक होने दी थोड़ी देरी हर जगह जरूरत है। इसी कन्ने जिड़ा पुत्री है पुत्री दा मान सम्मान करना कितना ज़्यादा जरूरी है सभी तो जो पता है अगर हाँ गल करिए ता पुत्री जिड़ा है से घरे दी लक्ष्मी होंदी है देश दा जिड़ा मान है सेवे पर हाँ आए दिन कोई ना कोई जिड़ा न्यूज़ है सभी सुनते न या सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ दिखते न क्योंकि जिंदगी दा सफ़र है ना हर जिंदगी दे हर पन्ने पर कोई ना कोई जिड़ा नुकसान है या कोई ना कोई जिड़ा गल्ला बातें न सियाह जो दिखने जो मिलदियां न इसी कन्ने पहले जिड़ा श्रोता न तिने कन्ने कर दे न गल बात। हेलो
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है न
1: हां जी माड़ी तो हां
0: जी यहां भी ठीक ठाक है जी तो हां अपना परिचय जरूर दे दिया जी
1: माड़ी मैं धर्मशाला बोला थे
0: जी विजय जी धर्मशाला ते बोला दे
1: हां जी
0: जी तो विजय जी पहले तो तुहां मौसम दी जेड़ा जानकारी है से जरूर दे दिया कि कदे है धर्मशाला दा मौसम
1: मैडम जी बरखा लगी है टाइम दा
0: जी अच्छा बरखा लगी हो
1: जी हाँ जी
0: जी अली भी लगी हो कि थोड़ा मौसम साफ है
1: नहीं नहीं लगी हो लगी
0: जी अच्छा लगी हो धर्मशाला च जेड़ा से बरखा लगी हो ना जी
1: हाँ जी
0: जी तो विजय जी आज हाँ जेड़ा कार्यक्रम च बात करा देना या खास दिवस हाँ बोली सकते आज हाँ बना देना जी
1: हाँ जी
0: जी राष्ट्रीय पुत्री दिवस
1: हाँ जी
0: जेड़ा पुत्री है तिना दा मान सम्मान बेटियां दा मान सम्मान करना कितना ज्यादा जरूरी है ना जी
1: बड़ा जरूरी है मैडम जी
0: जी पर आए दिन हाँ कोई ना कोई न्यूज सुन दे ना जी
1: हाँ जी मैडम
0: जी जी क्योंकि कई बार समाज है समाज जिड़ा से बड़ा कुछ दिखने जो मिलता है ना जी
1: हाँ जी मैडम जी
0: जी जी तो तुम्हें क्या लगता एक बेटी जेड़ा है से तिहा दा मान सम्मान करना कितना की जरूरी है
1: बड़ा ज्यादा मैडम जी
0: जी क्योंकि बेटी है बेटी आज कने टाइम दी अहां गल करिए ता हर कुथी अपना जेड़ा ना रोशन करा दी अपना भी करा दी अपने माता पिता दा भी जरूर जेड़ा से ना जेड़ा से रोशन करा दी ना जी
1: जी जी मैडम जी
0: जी पर सही है ना कि यहाँ दी सोच पर निर्भर कर दे कि यहाँ किस तरीके ने अपनी जेड़ा सोच है से रख दे ना जी
1: हाँ जी मैडम जी
0: जी तो विजय जी आज तो हम कुंदिया गीत जेड़ा है से सुनना पसंद करके
1: सुनाइए तो हम आज गणपति आता गणपति सुना कोई दिन जल्दी
0: जी अच्छा गणपति दा भजन सुनना है तो हाँ
1: जी आज आज करते हैं ना गणपति का
0: जी आज विसर्जन है आज लास्ट दिन है ना जी
1: हाँ जी मैडम जी
0: जी जरूर जी तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचा दें जी जुड़ने वास्ते
1: ठीक है मैडम
0: बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा तो श्रोताओ तुहां सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने इसी कन्ने अगले जेड़ा श्रोता न तिना कन्ने भी कर देना गल बात हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैडम।
0: जी। नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना
1: हाँ जी, हाँ
0: जी? ठीक ठाक है जी तुहां
1: जी, ठीक।
0: जी? तुहां कुथु ते बोला दे, कने तुहंदा ना क्या है जी?
1: मैं कर्मचंद बोला, पालनपुर।
0: जी करमचंद जी पालमपुर दे रहने वाले ना जी?
1: जी
0: जी करमचंद जी, मेरी आवाज़ तुहां तक क्लियर पुज्जा दी कि कोई नेटवर्क इशू है?
1: मैडम, ठीक ही है। मैं
0: जी अच्छा ठीक ही है जी। तो तुहां क्या काम काज लगे या कने? पालमपुर दा मौसम कदे है इस टाइम?
1: मौसम थोड़ी देर पहले बरखा हुई, कुछ लगते ही होना।
0: जी अच्छा, हुण पहले बरखा लगी ही पर हुण मौसम जेड़े से धूप च बदलाव हुई है ना जी?
1: जी, ज्यादा गर्मी यही होती।
0: जी गर्मी मुझे तो लगा था ठंड हुई हो अगर
1: ना,
0: धर्मशाला
1: इतु गर्मी
0: जी
1: काल
0: धर्मशाला
1: से ना
0: के
1: ठंड है।
0: जी।
1: आज तक गर्मी है इस टाइम, बड़ी गर्मी।
0: जी, कने धर्मशाला दी अगर हाँ गाल करिए तो थोड़ी देरी बरखा हुई पर मौसम थोड़ा देर ठंडा पे ही है ना जी?
1: अच्छा
0: जी, कने धर्मशाला दा मौसम तो तुहें जो पता ही है।
1: जी, काल थी यानी कि काल बड़ी ठंड थी यानी कि बरखा के बाद।
0: जी। ता करमचंद जी, आज तुहां गुंदिया गीत जिड़े से सुनना पसंद करके
1: काल हुआ मजदूरा सुनाई
0: जी? कालुआ मजदूरा सुनना है तुहां? जी जरूर
1: देगी
0: तुहां।
1: मैडम। मैं बोलना नहीं चाहता कुछ आज के विषय से।
0: जी जी जरूर जी।
1: ये जेड़ा पुत्री दिवस मना रहे ना, आज कल के ये नहीं है कि कुड़िया बड़ियां अवेयर ना चल,
0: जी
1: उसी फील्ड में क्लियर गए था कुड़िया के मुंडे एडवांस है।
0: जी जी जरूर जी। बड़ी अच्छी गल तुहां बोली है जी कि जेड़ा पुत्री दा मान सम्मान करना कितना ज़्यादा जरूरी है ना जी? कने अज के
1: जी
0: दौर की गल करिए तां लड़के ते ज़्यादा लड़की जेड़े से ऊंचाइयां पर छू दी ना जी?
1: पेरेंट्स
0: जी जी जी
1: भी इनके बड़े अवेयर हैं।
0: जी जी
1: पोंटा निकला फोर्टी परसेंट एशियन गेम में चलिए था, इसलिए मुझे साढ़े मैच वाले इनके गोल्ड मेडल ले अंदर क्रिकेट की तो
0: जी अच्छा।
1: पहले से खेलने ना पड़ते।
0: जी, सही है ना कि सोच
1: हाँ
0: हर किसी की
1: हाँ
0: अपनी
1: जी,
0: अपनी सोच है ना जी?
1: हाँ
0: जी
1: सोच बदलाव दी है जरूर, बाकी जेड़े ना बड़े काम लोग रहे हैं ना। हाँ
0: जी जी उन सारे जागरूक होते ना जी?
1: जी, वो अंतर
0: जी
1: कई बोलते जी सारी कुड़ियों के मुड़े ना,
0: जी जी
1: उतना कुछ ना भी नहीं के प्रूव करके दसे ना नहीं के।
0: जी जी अगर ड्राइविंग की गल करिए तो ड्राइविंग च भी कुड़ियां अपनी जेड़ा अहम भूमिका अदा करा दिया ना जी? हर
1: हाँ जी मैडम, बस का कुछ बाद में
0: जी जी जी जी जी जी
1: जादेश्वर।
0: जी हर जगह
1: हाँ जी,
0: जी। तो जरूर
1: ये तो
0: तुहें
1: चंद्रयान तक जा रही है नहीं के,
0: जी।
1: चंद्रयान चू जाने वाली सारी कल्पना चावला जी है, और भी यही कुछ टेक बैग को लेने की काफी।
0: जी।
1: हाँ जी
0: जी जरूर तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचान दी जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा।
1: धन्यवाद मैडम।
0: जी तो श्रोताओं, वहाँ भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने तुह जो ले कर चलते ही न फरमाइश दी ओर।

श्रोताओं तो सारे सुनिया ये प्यारा दिया भजन, प्यारी दी फरमाइश। ये फरमाइश हाँ पहुँचाई है विजय जी तक कने से रहने वाले न धर्मशाला ते। इसी कने हाँ फिर ते वापिस आई आते न अपनी गलबात उपर। तो श्रोताओं अजकनी जेड़ा गलबात है से बड़ी ही प्यारी है, प्यारी ही बोली सकते जालू जेड़ा नन्ने नन्ने कदम इस दुनिया च पौंदे न तो कुथी ना कुथी से जिंदगी दा जेड़ा जिंदगी दा सफ़र जेड़ा है से सुहाना बनी आंदा है। इसी कन्नै जेड़ा बेटियां न से अपनी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा कर दिया न। बेटियां जेड़ा न से पराया धन जेड़ा है से बिल्कुल नहीं है न, क्योंकि आहंदी जेड़ा सोच है ना से उस तरीके ने है जिन्हें बेटियां अपनी जिंदगी च अग्गे बढ़दियां न। या ठीक है रूल हैं, रूल भी अपने हिसाब दे चलते न, उस तरीके ने जेड़ा है से कई बार परिवार च कई बार हाँ ये सोच भी लेकर चलते न कि जेड़ा बेटियां न से तो पराया धन है। ठीक है पराया धन जेड़ा है से अहां दी सोच है, क्योंकि बेटियां भी बड़ा जेड़ा अपने माता पिता दा मान सम्मान कर दियां न, तिना दे सपने जेड़ा न तिना जो साकार कर दियां न, करे तिना दी जेड़ा सपनिया पर खरा उतरी करी जरूर अपनी जिंदगी जो सफल जेड़ा है से बना दियां न। तो जरूर माता पिता भी अपनी जेड़ा बच्चे न तिना कन्ने प्यार करते न, या तिना जो अच्छे संस्कार जेड़ा न से दिंदे न, पर सहां पर निर्भर करता है कि यहाँ किस तरीके ने बेटियां दा जेड़ा मान सम्मान है से करते न। हर दिन अहाँ जेड़ा है से अपनी सोच जो बदला देन, जागरूक जेड़ा है से जरूर अहाँ होते न, जागरूक होना भी जरूरी है। इसी कन्ने अहाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न, कन्ने अगली जेड़ा फरमाइश है से अहाँ पहुँचानी है करमचंद जी तक से रहने वाले न पालमपुर ते।

ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे सुनिया एक ही ते फरमाइश फिर ते हाँ वापिस आई हूँ ना अपनी गलबात ऊपर करें तो हाँ सारे भी इसके ते बाद गलबात करने जरूर जुड़ी होने ने करें अपने जेड़ा काम कारण तिना जो भी करा दी होने ने मौसम के अनुसार मौसम के अनुसार चलना भी यहाँ वास्ते जरूरी है क्योंकि धर्मशाला दे मौसम दी यहाँ गल करिए तां बरखा वाला जिहड़ा मौसम है या बरखा जिहड़ा है से लगी हो है कने पालमपुर ते जिहड़ा श्रोता जुड़े थे तां तिना ही बोलिया था कि पहले जिहड़ा है से बरखा लगी हुई थी पर हुण जिहड़ा है से धूप जिहड़ा है से लगी पई हो है। तो मौसम दी जिहड़ा जानकारी है से तुहां तक जरूर अहां पहुँचाई है कने पुत्री राष्ट्रीय पुत्री दिवस जिहड़ा है से अज अहां बना देन बेटी जिहड़ा है से अनमोल उपहार है जरूर तुम सारे भी अजकड़े दिने जो जड़े से स्पेशल तरीके ने बना दे उन्हें ने कने बेटियां दा जड़ा मान सम्मान करना कितना ज़्यादा जरूरी है। बेटी जड़े से अनमोल उपहार है जलू बेटी जड़े से घरे च जन्म लेंदी है तो कुथी न कुथी से तिस घर जो खुशियां ने भरी दी है तिहादी नन्नी देई जिहड़ा मुस्कान है से जितने भी घरे दे सदस्य ना या घरे च जिहड़ा रौनक है से जरूर लगाईंदी है। बेटी ही जिहड़ा है से घरे दी शान है घरे दा मान है बेटी जालू घरे च आउंदी है तां उसदी शान जिहड़ा है से अलग ही नज़र जिहड़ा है से आउंदी है। बेटी बोझ नहीं है कई बार होंदा ना कि हाँ ये सोचते ना कि बेटी जिहड़ा है से बोझ है बेटी जिहड़ा है से बोझ नहीं है बेटी जिहड़ा है से अभिमान है एक पिता दा अभिमान है माता पिता दा जिहड़ा अभिमान है। अगर हाँ बेटी जिहड़ा है से बेटी इस दुनिया च है तो बेटी ने ही समाज है बेटी बहू जिहड़ा बेटी है सही कुसी दी बहू भी बनती है मतलब अपना अलग अलग जिहड़ा रोल है से कुथी ना कुथी निभांदी है। अगर घरे च है तो एक पुत्री दा जिहड़ा रोल है से निभांदी है बहन दा एक रोल निभांदी है उसके बाद तिहदा ब्याह हो जांदा है तां से बहू दा रोल निभांदी है हर रोल जिहड़ा है से एक बेटी जिहड़ा है से निभांदी है। बेटी ने ही जिहड़ा समाज है से चलदा है पर अहां दी सोच पर निर्भर करदा है कि अहां किस तरीके ने अपनी जिहड़ा सोच है से रखदे न कने बेटी ही ऊंचाइयां दे जिहड़ा बड़े बड़े हौसले न तिना जो बुलंद करदी है। तो जरूर इसी कन्ने अहां अपने कार्यक्रम दे सफर जो अग्गे बढ़ांदे न कने अगली जिहड़ा फरमाइश है से यहाँ तक पहुंची होवे थोड़ा जिहा मोबाइल फोन दी तरफ चलदे न मैसेज अह तक पहुंचया है व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना दा नाव है विजय कुमार जी कने मनोज कुमार जी कने परवीन कुमार जी। तो जरूर तिना तक अहां ये गीत फरमाइश पहुंचा देन कने से रहने वाले न सली ते।

0: कानवी दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तशो तो गलबात अहां करा देन राष्ट्रीय पुत्री दिवस दे बारे च। बेटियां दा जिहड़ा मान सम्मान करना कितना ज़्यादा जरूरी है, तो एक जिहड़ा जानकारी है इसे जरूर तुहां तक पहुँचाते हैं। हिमाचल प्रदेश की चंबा जिले की जिहड़ा एक बेटी है जिहड़ा गेम्स जरूर तो हाँ दिखा दे उन्हें ना, क्योंकि गेम्स जिहड़ा ना से चलिया ना तो सीमा कुमारी ने जिहड़ा से एशियाई जिहड़ा गेम्स हैं तिस जिहड़ा इतिहास अपना जिहड़ा से रचित है, यानी कि जीत जिहड़ा से जरूर हासिल की है। कने महिलाओं च जिहड़ा से 10,000 मीटर दौड़ लगाई करी जिहड़ा से पदक जिहड़ा से हासिल किया है। तशो तो पुत्री जिहड़ा दिवस है राष्ट्रीय पुत्री दिवस जिहड़ा से अज अहां बना देन, कने कुथी ना कुथी दिखा बेटियां दी गल अहां करा देन, कने बेटियां भी अपना जिहड़ा उड़ान है से जरूर बड़ा यानी कि अग्गे बढ़ा दियां न, कने मान सम्मान जिहड़ा से हासिल करा दियां न। इसी कने अगले जिहड़ा श्रोता न तिना कने कर देन गल बात। हैलो,
1: नमस्कार महाराज जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: बिल्कुल, मालिक दी मौज है महाराज। जनाब जेडी तुहां ए गप्पा सुनाईया ना
0: जी, जी
1: ए तां बिल्कुल सोणियां, कने कोई और नहीं सुनाणी है मनी महाराज जी।
0: जी जी,
1: क्योंकि लड़की दे बारे तां बड़ी सोणियां गल्लां जनाबे
0: जी। धन्यवाद जी।
1: कोई मलन तां
0: जी जी,
1: जी लड़कियां ना ता पूरा संसार चलिया है
0: जी, एक बेटी है सही समाज जो चलांदी है ना जी।
1: जी महाराज,
0: हर रोल सही समाज च निभा दी है ना जी।
1: जी
0: जी, पर फिर भी यहां अपने आसपास दिख दे ना, माँ दा रोल सही निभा दी है, एक बेटी दा रोल सही निभा दी है, एक बहू दा रोल से संभाला दी है ना जी।
1: जी महाराज
0: जी, तो सोच पर निर्भर कर दे कि यहाँ किस तरीके ने अपनी जेड़ा सोच है से रख दे ना जी।
1: जी,
0: कुथी कुथी सोच च बदलाव भी जरूर आया है, पर कुथी कुथी अली भी यहाँ सही सोच जेड़ा है से रख दे ना जी।
1: हाँ जी
0: जी, तो तुहें क्या लगता है, तुहें क्या मतलब बेटियां वास्ते अपने विचार रखना चाहेंगे?
1: बेटियां वास्ते ये कि बेटी एक तो अपनी नजर विच होना चाहिए
0: जी,
1: बच्चे क्या होंगे छोटे छोटे बड़े बच्चे बन गए, छोटे तो सोबत चले तो बड़े हो गई सोबत मिलती है, कने छोटे हो गई बड़े सोबत मिलती, कने ये फिर जानी जानी
0: है
1: अहां बड़े भी होना है, अगे अहां घर बार भी चलाना है, कने अगर ये नहीं हो तो संसार मुक गया। हां
0: जी, बड़ी प्यारी गल जिहड़ा से तो हाँ बोली ना जी। कने हर दिन दी अपनी अपनी खासियत होंदी, अगर हाँ पहले गल करिए तो ज़्यादातर जिहड़ा बेटियां न, बेटियां जो हाँ कई बार बुरा समझते थे ना जी,
1: बुरा तो जनाब समझना नहीं चाहिए
0: जी, पहले दी सोच उस तरीके नहीं थी ना जी।
1: हाँ जी
0: जी, पर उन्हें दी गल करिए तो कुछ ना कुछ से सोच थोड़ी देर बदलुई हो ना जी।
1: हाँ जी
0: जी, माता पिता भी अगर बेटियां ना तो तिना जो जरूर आगे बढ़ने दी प्रेरणा जिहड़ा से दे दे ना जी।
1: हाँ जी,
0: कने बच्चे पर भी निर्भर करदा कि से किस तरीके ने अपने जिहड़ा संस्कार हैं तिना जो आगे रख दे ना जी।
1: जी जी,
0: क्योंकि पेरेंट्स ता चलो अपनी जगह तिना जो आगे बढ़ने दा जिहड़ा मौका है से जरूर दिंदे न, पर बच्चियां पर भी निर्भर करदा है कि से किस तरीके ने अपने पेरेंट्स का जेड़ा मान सम्मान रख देना, कने अपने संस्कार पर खरा उतर देना जी।
1: हाँ जी
0: जी जी जी, ता आज तो हाँ कुंदिया गीत जेड़े से सुनने जी।
1: हाँ जी, दादी माता दा गाना भजन सुनाई दिया जी।
0: जी, दादी माता दा भजन सुनने जी।
1: जी
0: जी, तो हाँ अपना नाम नहीं दसिया।
1: मेरा नाम जी हरदेव है, मैं डाढ़ दा रहने वाला जी।
0: जी हरदेव जी, डाढ़ दे रहने वाले, डाढ़ दा मौसम कदे है जी, बरखा लगी?
1: मौसम जनाब बिल्कुल ठीक ठाक है
0: जी,
1: कदी धूप लगा जी कदी बदल होआ दा, दुख दुख छां किठी चली है जनाब, दुख गले सुख किठे चली आ जी।
0: जी जी,
1: हां जी,
0: सुख जिंदगी दे दो नियम मन जी।
1: हां जी
0: जी, जी सुख भी है ता दुख भी है ना जी।
1: बिल्कुल जी
0: जी जी
1: अरे गल है जनाब
0: जी,
1: जेडे उस मालिक दी चरणी च लगे होंदे नी
0: जी,
1: बोलते हैं जो मर्जी होना सा कर्म तो लिखे सा होना है, दुख भी होना कने सुख भी होना
0: जी जी,
1: सब कुछ चीजा प्रभाव नहीं मार दे
0: जी,
1: हां जी
0: अच्छे कर्म करके ता अच्छा ही फल मिलना है ना जी, कने अगर
1: जी
0: बुरे कर्म करके ता तिदा फल फिर बाकी जितने भी श्रोता सुना देन तिना जो पता है कि किस तरीके ने मिलना है ना जी।
1: हां जी
0: जी जी जी तो जरूर तोहंदी जेड़ा फरमाइश है से तोह तक पहुंचान दे जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तोहंदा।
1: धन्यवाद महाराज जी।
0: तो श्रोताओं तुम जो लेकर चल देना इस भजन की ओर फरमाइश की ओर।

अशोतों भजन हाँ पहुँचाया हरदीप जी तक कनसे रहने वाले न डांटते फिर ते हाँ वापिस आई उन्हें अपनी गलबात उपर कने तू हाँ सारे भी गलबात जड़े से इंजॉय करा दी उन्हें न कने श्रोता जड़े से जरूर जो व्हाट्सएप जड़ा मैसेज है व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू जड़े से अपनी फरमाइश जरूर भेजा देना तो हाँ भी कोशिश करा देना कि तिना दी जड़ा फरमाइश है से दिन तक पहुँचान। वैसे तो कार्यक्रम च समय जड़े से थोड़ा देर है तो समय के अनुसार अहाँ फिर ते अगे बढ़ना है कने अगली जड़ा फरमाइश है से अहाँ तक पहुँची हुआ है व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना का ना है शमशेर सिंह जी कने से रहने वाले न दरगाटा ते तो जरूर तिना तक अहाँ ये फरमाइश पहुँचा देना करे तो हाँ सारे भी इंजॉय करनी है गीते दे बोलन तेरा मेरा ब्याह कनेश जो गया है अमित अमितू ने।

श्रोताओं तो सारे कार्यक्रम सुना रहे थे अपने रेडियो दो शशि कहने तो कार्यक्रम का जोड़ा सफर है सेतु संपन्न होंगे तो सारे ही अपने रेडियो दो शशि जो दिया

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया, बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्प दंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्प दंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्प दंश जानलेवा हो सकता है, कही सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
4: पता नहीं तुझे उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
6: पता है ना, मुझे टीबी है।
5: चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: मम्मी मम्मी मम्मी
1: क्या है?
0: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टर, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं। लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना सही, यूर अ जीनियस।
5: यूर अ जीनियस।
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ। स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
7: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना ये, भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्री राम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं अपनी मर्यादा में। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझ में और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे।
8: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया।

0: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
1: अभी बताती हूँ बेबी। टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
0: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
2: गजब बेइज्जती है।

91.2 MHz पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्प दंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्प दंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्प दंश जानलेवा हो सकता है, कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: देख पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
4: पता नहीं, उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
6: पता है ना, मुझे टीबी है।
5: चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: मम्मी मम्मी मम्मी
1: क्या है?
0: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टर, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं। लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना सही, यूर अ जीनियस।
5: यूर अ जीनियस।
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ। स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
7: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना, ये भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। ये होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्रीराम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ।

0: वो लड़े हैं, अपनी मर्यादा में लड़े। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझ में और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे।
1: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
2: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
3: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
2: हाँ बोलो।
3: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
2: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
3: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
4: गजब बेइज्जती है।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रॉर आऊँ तो सुसोग्य तुंदा अपना आरजे वेड़ी है जो कि सचिन कपूर हाजिर बुझुगा तुंदे सभी रे रेडियो सेट मा। क्या हाल चाल श्रोता तुंदे, उम्मीद करनो खरे भूणे तो सब खुशल मंगल भूणे, दुख बीमारी तो दूर भूणे हिन और हाँ मन रही शांति भूणे। हाँ मानसिक तौर थो खुश भी भूणे और मानसिक तौर थो किया सो संतुष्ट भी भूणे ने अपनी जिंदगी थो। इरा जो व्यक्ति संतुष्ट बुंदा हा शोतों अपने जीवन में सो व्यक्ति किया सो सदैव खुश ही रहिंदा है ना। सो सदैव कुछ भी किया सो करी सकदा हा, तसियो खुश रहना की सो जरूरी हा। तो चलिए जी तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं 7081809 पर नंबर आख मुके फिर यूँ शेयर करनो तू हो कि साझा करनो। हाँ 7081809 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत हो नहीं सकते हैं श्रोतों। तो अज भी जोरदार बरखा की सुबह होया है ना, पूरी जानकारी तुस तक पहुँचन दे श्रोतों। तो श्रोतों अग मौके फिर बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रह सभी श्रोतागण रह। तो आंदा सुनता तो क्या अज धर्मशाला में फिर की सो जोरदार बरखा बोया इवन किया है। सोचू करते थे श्रोतों की शायद अब बरसात के सो मुके गया, बरसाला के सो मुके गो और मानसून के सो वापस चले गो। हालांकि हूँ तुसू दसना चाहता कि हाले तक मानसून वापस ना गो हा, हाले तक कोई ऐसी पुष्टि ना बोए कि मानसून के सो वापस चले गो हा श्रोतों। और आज तो है हेरो कि धर्मशाला में जोरदार बरखा की आसो भोई है श्रोतों, काफ़ी जोरदार बरखा और आई थिंक दुई थो ढाई घंटे की आसो दो ही घंटे तो है मन कर चला कि लगातार बरखा की आसो ठीक ठाक बोए धर्मशाला मंज। और ऐसू वही लगो करता तो कि शायद अब धुप पकन सो इच्छू कर दी और धुप खेलू कर दे तो बरसाला मुके गो मानसून वापस चली गो। तो ऐसा नहीं हले मानसून वापस ना गो श्रोतों। और इस समय धर्मशाला का मौसम आ तुसू दसना चाहता हा श्रोतों, लगभग बरखा पैने थो बाद के सो बिल्कुल मौसम में बदलाव के श्रोतों सो भुआ हा और लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रे आसपास इस समय धर्मशाला रा मौसम के श्रोतों सो बन रहा हा। और अगर हम गल करूँ श्रोतों तो बरखा ठीक ठाक हो आज और न मेरी गल करिए इस वक्त श्रोतों लगभग किया सो लगभग 50% रे आसपास किया सो नमी बन रही है। और इसी सब की श्रोतों जानकारी अगली भी तू हो गया हूँ शेयर करना चाहूँ कि दोता था हूँ कि सो अक मौके फिर मौसम किया सो इना रह सकता है दत्ते भी और प्रोए भी नकरोए भी, यानी कि 28 सितंबर तक के श्रोतों सो मौसम इन्हें रह सकता है। प्रदेश में बीते कुछ सप्ताह थो बरखा थो राहत की सो मुड़े थे और मौसम रा मिजाज किया सो अक मौके फिर बदले गो श्रोतों। राज्य में 26 यानी कि दोतों थो 26 सितंबर थो मौसम अक मौके फिर किया सो और ज़्यादा ख़राब हो सकता। अज तो 1.5-2 घंटे बरखा पोए लेकिन दोतों थो पूछ सकता कि सोए बरसाला की सो वापस चली गया ऐसा मनना है श्रोतों। और प्रदेश में 24 पिछले दिन रे हम गल करू करता और 25 आज के दिन रे गल करू करता क्या दसू करते थे कि ये भी है तो सू तक जानकारी पहुंचाई थी कि 24 और 25 जो कुछ एक इलाके में बरखा बोने जी कि आज इंदे धर्मशाला में भी काफ़ी बरखा बोया लेकिन श्रोतों 26 सितंबर थो कुछ ज़िला में बरखा बोने हाँ बिजली गड़कने हैं श्रोतों आंधी तूफान चलना है इन्हें संभावना के ऐसो जताओ कर दिन मौसम विभाग है कि ऐसो जिला स्तर रह पूर्ण अनुमान रह अनुसार अनुसार 26 सितंबर जो सिरमौर में बरखा दस्य है जबकि शिमला सोलन और अन्य जगह किया श्रोतों सो इन दसो कि भाई बिजली चमकने हाँ बरखा ठीक ठाक किया सो बोने अतीत थो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थो तेज़ हवाएं के नसो भी चलने हाँ। 27 सितंबर जो मौसम और सक्रिय हो सकता है श्रोतों और 28 जो किया सो मौसम पूरी तरीके हो गया साफ रहने रखिया सो आशंका हाँ श्रोतों।
तराई जिला मके आसो आंधी तूफान री आशंका जताऊ करते हैं। मौसम विभाग रे अनुसार शिमला सोलन और सिरमौर में शोतों हो सकता आंधी तूफान बिजली की सो गड़का आंधी तूफान की सो चलन और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की शोतों सो तेज हवाएं चलन। तो यह मौसम की पूरी जानकारी जो है तुसु तक पहुँचाए हाँ वेड़ी गुंजन धर्मशाला रे माध्यम थो और फेसबुक रे माध्यम थो बने रे जुड़ी रे आरजे सचिन कपूर सोगे आगाज कर दिन कार्यक्रम रा इस प्यारे दे गीता सोगे। और ये गीता रा सफर श्रोतो ये चली रहना तो सब श्रोतो कॉल जरूर कर सकते हैं 7018887091 पर नंबर एक मुख्य है फिर आऊँ शेयर करनो साझा करनो तू होगे 7018887091 पर तो है सब श्रोतो कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं अपने क्षेत्र रे जानकारी किया सो साझा कर सकते हैं। लेकिन यह गल्ला रा बड़ा खास ध्यान रहे श्रोताओं की जानकारी किया सो साझा करने लायक जरूर भोआ जानकारी किया सो मनुष्य की दसने लायक जरूर भोआ। आइए तो चलते हैं और हूँ दिन तू सभी जो प्यारे प्यारे दे गीत आगाज इस गीत सोगे।

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गेंद सो बिल्कुल लाइव चल रही था तो सब श्रोता जरूर हंसोगे जुड़े सकते हैं 708-8-7-0-9 पर नंबर अक मौके फिर आऊँ शेयर करनो साझा करनो तो होगी 708-8-7-0-9 पर तो है सब श्रोता कॉल कर ही सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत हो नहीं सकते हैं। बहरहाल श्रोताओं कार्यक्रम जहाँ को चल दें और अगले श्रोता के सो असोगे कनेक्टेड हैं पुस्तन कौन बल्लू दें और कड़ी थो बल्लू करते हैं। नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी। नमस्ते
0: जी। कौन बल्लू दें और कड़ी थो बल्लू दें जी।
1: बागन थो बल्लू दें अम्मा।
0: अच्छा अच्छा जी ठीक ठाक ने राजी बाजी
1: मैं तो तेरा बात करूं बीमार थे और तेरी छोरी ने ना तब दारे पुंजी आया का बता बुझो पुंजी पे।
0: अच्छा अच्छा हाँ जी हाँ जी तो है बीमार थी। अच्छा हाँ क्या बुझूरत हो जी तू सो क्या बुझूरत हो।
1: मेरा ना प्रेशर बुआ।
0: अच्छा कटेरा
1: पथरी थी नाली उठा सी
0: ओहो तो पीड़ के नहीं पियो।

0: तू सुपर थ्री रे
1: तीन कर की भीड़ था
0: लगातार लग रही थी कि कुछ कुछ टाइम लग दे थे जी
1: त्राई दड़े लगातार ही पेड़ हो रही है
0: त्राई दड़े लगातार पे हो रही है।
1: फिर फोटी हो चुका था तभी छोले सिगर है ना ही ना कोई दे दाउन थल्ले मोबाइल ना मगाने ना इंडे स्टेश नहीं ना लगता था।
0: अच्छा ये फोन अंदर लगी गंदा जी हाँ
1: फोन ना हो कहीं लगता फोन ना हो ट्राई कर दे रहे भी ना करी ना लगा।
0: ओहो चलिए बड़ा शुक्रिया मैं तुंदा इतना प्यार और अपना आशीर्वाद देने वास्ते पर जी हाँ दुए फोन बंदे ना स्क्रीन नाले टच फोन जति ओ बलदे ना तति मन जे अक ऐप बंदे है मतलब ना तति मां डाउनलोड करना था ऑल ओवर वर्ल्ड कड़िए भी चली गए छतो है बेशक तो चलदा है कार्यक्रम इंदा
1: मेरा दुआ सिंपल है ना
0: हाँ जी हाँ जी तुंदा सिंपल है तो तुंदा 25-25 किलोमीटर ही पकड़ दा कुछ इलाके ऐसे इनकी तड़ी जी ना पकड़ी सकता है ना
1: गुंजन रेडियो इंदा ना बड़ा ट्राई मारू मैं ना।
0: चलिए जी अच्छा तो त्राई दड़े तू सो लगातार पथरी रिपीट पे हो रही तो तीन बात तू ले करी छूरे तो फिर ऑपरेट हुआ तुम दा ना बे ठीक ने तो है।
1: हाँ जी ठीक है मैं ना बताऊँ
0: अच्छा ऑपरेशन कड़ी कराओ तो है जी
1: आह 14
0: अच्छा 40s में अच्छा अच्छा ता नाली में फसरी बुनी पथरी है ना तू
1: हाँ जी पहले सो हुआ ना नाली आ रहा था दोबारा फिर कितना कर दूँ फिर छपनी में जाए।
0: अच्छा ओहो तो इतनी पहले भी पेंदी थी तू वो पीड़ की जी अबे ने पे तो फिर सीधा ले गए तू सो
1: चल ली पे रात ना 12 बजे
0: हाँ जी
1: तो करो ठंड रहा फोन डोली मार जाना हो फिर ले था पत्थरी रस्सी के नहीं पर ट्राई कर गए तो ये तो उल्टी लगी सब भी ना
0: अच्छा अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल चलिए जी बड़ा अच्छा लगता है जी जहाँ इन सियाने असुओं के कनेक्ट बुंदे इन और इतना मान सम्मान दिन दे तो है ता ये मान सम्मान ता करोड़ रुपये खर्चे करे न मुलदा जी हम बड़ा शुक्रिया अदा करनो दुंदा जी कि तो है इतना प्यार दिन दे कौन दिन की थोड़ा नाम है तुसु
1: कोई शिव जी रा भजन आई
0: शिव जी रा भजन
1: कन्नड़ी वाद्या सुनाई
0: अच्छा चलिए ठीक है जी तुसु खरे बुझगाना ठीक बुझगाना है प्रार्थना कर ले है ना जी
1: ठीक ना बेटा
0: ठीक ना वे बस धीरे धीरे रिकवर बुझगाना
1: हां जी
0: ठीक है जी धन्यवाद
1: धन्यवाद
0: जी तो श्रोतों हेरू तो है थी इंदे श्रोतागण बागनी थो और बुजुर्ग इन काफ़ी अम्मा जी और चलो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है दुख सुख तो चले रहते ना ना कोई भगवान ऐसा कोई इतना दुख ना पाए दे कि सो दुख ऐह फेस ना करी सकने या तस दुख मंज जो पह खर्च गुना सोना लाई सकने इतना दुख के सो भगवान कसियो ना पा है ना ये दुआ कर दे नहीं प्रार्थना कर हूँ तो हमेशा करता बिंदा कि इतना दुख मत बंदे उतना उतना रख कि जितना जितना हर इंसान किया सो टॉलरेट कर सकता हर इंसान किया सो फेस कर सकता है। बहरहाल इन अगले श्रोता सो के कनेक्टेड हैं उस दिन कौन बोलूँ दिन नमस्ते जी हेलो
2: हेलो नमस्ते सचिन सर
0: नमस्ते जी नमस्ते
2: सचिन सर क्या हाल चाल जी
0: बहुत बढ़िया जी तो दस दंदे क्या हाल चाल ना
2: बस ठीक है सचिन सर बढ़िया बढ़िया जी आज दिन दिन क्या करिए सर
0: चलो यह दुनिया में कोई तो आंसू याद
2: सुन दिया आज दिन दिन गाना खोल लेंगे कोई सचिन भाई तो
0: बिल्कुल बिल्कुल मिले चलो कुछ भी माध्यम बाग यह दुनिया मंच कोई तो आज वो याद करता
2: नहीं नहीं सचिन सर जरा मन दिला याद करते मतलब याद इंदे कुछ याद करना पड़ता
0: ताई तो बोलूं था कि हूं बड़ा सौभाग्यशाली कि मेरे श्रोता के ए परिवार ही बंदा हक जी ए परिवार
2: जी, जी,
0: ए रेडियो रा परिवार है और इतना मान सम्मान इतना प्यार करता हूं तुम तो सब भी श्रोता रा के सो तहे दिल तो धन्यवाद करनो जी इस चीज वास्ते हेलो
2: जी जी सचिन सर हाँ जी
0: जी जी
2: हाँ जी हाँ जी
0: तो जनाब कौन बोलूं देन और कड़ी थम बोलूं देन
2: सचिन सर मेरा नाम सुरेश है, रोज ही फोन करता वैसे था।
0: अच्छा
2: गीत भी याद आंदे आ। हां जी
0: ताज क्या फरमाइश लेकर आए अपने दिलामच
2: रीता पुराण दा ना
0: रीता दीदी रे कुंडे
2: पुराण जी पुराण जी दा नाबुरी ओ जंगड़ू मजोर में जोड़ी है।
0: क्या बात है क्या बात है। चलिए ठीक है जी रीता दीदी रे गीत तो सुवाए जरूर होने ले।
2: ठीक है सचिन सर बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ठीक है जी धन्यवाद। तो लगातार इन श्रोतागण श्रोतों से जुड़ते रहते हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर और तो फेसबुक के माध्यम तो जाचू करते हुए कि आज भी आजकनी रेट में बिके सो इतने श्रोता रेडियो सो के कनेक्टेड हैं। ये बड़े मतलब आजकने यूथ जो और यूथ आए हैं ये ना बोले सकते कि सिर्फ मतलब सियाने जुड़ू करते नहीं यूथ भी इवन की जो तीसरी क्लास आमा पढ़ दिन चौथी क्लास आमा पढ़ दिन कई बच्चे के अनुसार हो गए कनेक्ट बुंदे हैं है ना कि यूथ के हो गए कनेक्ट बुंदा था। आज की डेट में भी रेडियो जो किया सो इतनी अहमियत दिंदे हैं इस 5G रे जमाने मंज भी ये वाकई में ये कार्यक्रम बाकमाल और इसी आओ भी आगे दिन होस्ट न करूँ श्रोताओं तो मंजो भी किया सो ही कुछ अधूरा दिया किया सो लगता कि आऊँ पता ना कैसी योग्य नाम उड़वा तो सब परिवार है मेरा परिवार है और इस परिवार जो ही जोड़े कर रखा और अपना प्यार अपना मान अपना आशीर्वाद किया सो इस नाचीज पर सदैव यही रखा जी बस ये कामना दिला रही। बहरहाल तो सब हूँ कर दिन वेड़ी गुंजन धर्मशाला और लेकर चल दे श्रोतों तू सब भी हमारी फरमाइश कर दिन पूरी।

0: तो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम में समय दी अपनी गप्पा गेंद से चल रही। चलिए कार्यक्रम जो होगा बढ़ दिन और अगले श्रोता जो कि ऐसा कनेक्ट कर दे। नमस्ते जी।
1: नमस्ते
0: जी। नमस्ते। बहुत बढ़िया जी, तो इधर से तो ठीक ठाक ना।
1: बढ़िया भाई जी।
0: अच्छा जी, कौन बोल रहे हैं और कड़ी था बोल रहे
1: हैं? टिंकल बोला।
0: अच्छा खना रे, टिंकल जी क्या फरमाइश?
1: हां जी, काल को मजूरा।
0: अच्छा
1: हां जी,
0: और मौसम ठीक ठाक है? धूप लगी हो?
1: हां जी, बढ़िया मौसम है।
0: अच्छा ठीक है जी, जरूर होने लगी। श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर यह कार्यक्रम जो आगो बढ़ और अगली जानकारी की या सो तू होगी शेयर कर दें इन श्रोतों। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव इस बार के तकनीकी और परंपरा वे बिल्कुल संगम रा गवाह के आसो बढ़ने आला है। अद्भुत संगम रा गवाह के ऐसा बढ़ने वाला शतों दशहरा कमेटी आके ऐतिहासिक पहल री पहल की है शतों की। इस बार दशहरे में के ऐसा पहली बार 500 ड्रोन और भव्य लेजर शोर आयोजन किया ऐसा भूना है। कुल्लू दशहरा में भगवान रघुनाथ जी दी के ऐसा रथ यात्रा हिडिम्बा माता और बिजली महादेव कुल्लू रे देव संस्कृति रा प्रदर्शन भूना हा शतों। इस शोरी खासियत ए रहने हा, इस प्रोग्रामारी खासियत किया सो ए भूने हा शतों कि ऐसे सिर्फ शहर रे मनु ही ना बल्कि ग्रां रे मनु भी किया सो हेरी सकदन इस शो जो, इस प्रोग्राम में जो, इस प्रोग्राम जो ड्रोन शो जो इतनी ऊंचाई पर आयोजित करना है श्रोताओं कि पूरे कुल्लू घाटी और आसपास रहे पहाड़ी थों भी किया सो साफ नज़र चली है ड्रोन शो। ड्रोन शो दशहरे रे दूजे चौथे और छठे दिन संजा रे समय किया सो आयोजित भूना है श्रोताओं। ये सिर्फ एक शो ना बल्कि एक नई शुरुआत है श्रोतों। भव्य ग्लोबल नृत्य व ड्रोन एवं लेजर शो भूना है आकर्षण रा केंद्र श्रोतों। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा आयोजन 21-27 अक्टूबर तक भूना है श्रोतों। इस वर्ष प्रयास भूना श्रोतों की बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति दलथों इतिमा सहभागिता भूने हाशतों। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद अवैस

सौजन्य तुम विभिन्न देश रे दल राजस्थान राजस्थान रे उत्तराखंड रे है ना पंजाब रे संस्कृति दल सहित उत्तर भारतीय राज्य तथा हिमाचल रे विभिन्न जिला रे बेहतरीन संस्कृति दल जो भी किया सो आमंत्रित करना हा और भूना हा। बहरहाल कार्यक्रम जो आगे बढ़ने छो तो और तो सब बन रहे इस समय आरजे सचिन कपूर सोगे अगली फरमाइश के सो पूरे कर दहिन।

0: শত এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা 2022 গুর আর কার্যক্রম ইন্দি আপনি গপা গেন সো চল রহে হিন শত আর হেরে জানে উপরালে রা আশীর্বাদ বন্দা না ভগবান রা আশীর্বাদ বন্দা না শত তো সব কম কি আসো সফল বুঝে গন্দে না আর इंसान भी किया सो अपने आप में सफल महसूस करता है शोतों है ना। और मुझे ये लगता कि सफल इंसान सो है शोतों जो अपने माँ बाप जो खुश रख सका अपने माँ बाप जो किया सो हरदम हंसदा खेलता और मुस्कुरंदा रख सका। सो इंसान जिंदगी में सब थों ज़्यादा दौलतमंद आ सब थों ज़्यादा अमीर आ सब थों ज़्यादा रही सादा हा। और जस इंसान रह माँ बुढ़े किया सो रो कर दे भून पिटियो कर दे भून शोतों जस इंसान रह माँ बुढ़े खुश ना भून दुखी भून और दुखी मना हो गे किया सो घर मंच रेव कर दे भून यार बार घूमू कर दे भून दुखी मना हो गे बेशक तसील खरबो रिया सो गरीब हमें भी नज़र में। और मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे मनु भी नज़र में भी सो गरीब बूना हा जो अपने पेरेंट जो जो अपनी माता जो किया सच्चा प्यार कर दे भून अपने फादर साहब जो किया सो सच्चा प्यार कर दे भून। तशतों एक गल आ कि अमीर सोया जिसेरे माँ बुढ़े खुश हैं जिसेरे माँ बुढ़े के न सो तंदुरुस्त हैं और सेरे माँ बुढ़े सेरे परिवार तस परिवार मंच किया सो खुशहाली हो गिरे वो कर दें सो इंसान सब तो अमीर हा। बहरहाल इन अगले श्रोता सो के कनेक्टेड हैं बड़ी देर है उस दिन कुण बलूंदे और खड़ी थम बलूंदे। नमस्ते जी।
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते कुण बलूंदे और खड़ी थम बलूंदे जी। अशोक जी करे रही हूँ बल्लू दिन।
1: हाँ जी जी
0: ठीक ना अशोक जी तो है।
1: हाँ जी जी तो सुनाओ अभी
0: भाई है भी ठीक इन तुम तो सभी रा प्यार आशीर्वाद है ठीक ठाक ना है भी।
1: हाँ जी जी सर।
0: अच्छा अशोक जी कौन दिन गीत होना ना
1: सर अगर गाना नहीं तो बिना दस दिन पहले मंडल से भी प्यार है
0: मंडल मंडल है
1: सभी का प्यार है
0: नुआड़ा एंचले प्रवीण हंस ठीक है जी जरूर होना ले तो सोर करेरी वाले सब ठीक ठाक राजीव बाजी
1: सब बढ़िया सर पर खाली सर मेरे अपना बाकी सब ठीक।
0: अच्छा लगातार बरका बचुंदे करेरी में जी।
1: हां अच्छा अच्छा लगातार ही है 2.5 घंटे ना।
0: हां जी हां जी
1: जी जी
0: चलिए ठीक है जी जरूर होना ले तो सोएगी इतना जी ठीक है जी। नमस्ते धन्यवाद। चलिए शो तो कार्यक्रम मंच अगली अभी जानकारी तो सो गया है शेयर कर दें न जाने कब हुआ कि बंद कमरे में किया सो मोए तय बेटी ये किया मोए तो कुड़ी ये किया सिरा त्यारा शब बरामद हुआ है शो तो इस सोलन शहर रे वार्ड नंबर 16 भी किया ये गल है शो तो महिला और सेवी 6 महीने री बेटी री मौत रा मामला सामने आ 6 महीने री कुले थे ओहो दोनों रे शब अक किराए रे कमरे में किराए रे कमरे थो कि शतों सो बरामद हुए हैं। मृतक री पहचान 29 वर्षीय प्रेषिका रे रूप में किया सो भूया शतों पुलिस से किया सो जांच में बच्ची भी मौत पानी थो भरी बाल्टी में डूबने थो भूया मतलब जो 6 महीने रे बच्चे थे सारे जो मौत है सो तिया बोया कि पानी री भरी बाल्टी में डूबने थो कि सो बोया जहने गल सामने आए जबकि महिला द्वारा फंदा लाई लोहा ये कुछ आशंका के सो जताव कर देन। हालांकि मौत रे वास्तविक कारण और पूरे घटनाक्रम री पुष्टि किया सो पोस्टमार्टम री रिपोर्ट में किया सो पता लगने हैं शोतों लेकिन जानकारी रे अनुसार किया सो पिछले रविवार जो अपनी 6 महीने री कुड़ी सो गे सोलन छोरे थे ये प्रियांशी अपने माता पिता अपने पिता हविंदर वे घरे छोरे थे और इड़ी किराए रे कमरे में वेंदे थे शोतों ता माफ करा प्रेषिका ऐसा कदम कयो चुको कतियो चुको ये ता कहना थोड़ा करे मुश्किल भी चिगाना हा शोतों लेकिन हा ये हा कि वाकई में हवा मतलब लिटरली आऊँ टोटली ब्लैक, मतलब यहाँ जतियो बंदे की ब्लाइंड ब्लाइंड मतलब अंधा बुचिगंदा हूँ कसम से, खाली दिमाग बुचिगंदा मेरा, कुछ मुझे वर्ड ना मिलते जहने भी आत्महत्या की गल के सोचलींदा। अब ये आत्महत्या जड़ तक आऊँ समझे सकूँ करदा श्रोता हूँ, जड़ तक रे खबर मुझो समझाऊ कर दे हा, जो तथ्य मुझो समझाऊ कर दे। सो ये कि छिया महीने री कुड़ी जहने मतलब इतनी तो दसो कर दिन कि छिया महीने भी कुड़ी कि असो पानी भी भरूरी बाल्टी में के असो डूब गए, और डूबने वे मामले के असो सामने इच्छू करदा। फिर तथों बाद मोएफन दा लाई लो, सो शायद अपनी बच्ची भी मतलब आऊँ ताई हमेशा माँ री तारीफ करदा, जो मुझो अक्सर पूछते ना मेरा घर का स्टेज प्रोग्राम बहुत अड़ी भी मुझे पूछते हैं, बहुत सारे श्रोता मुझे मैसेज भी करते हैं, इंडिविजुअल भी करी करखा मोलन, खाली भी करखा मोलन, माफ़ करा एरो और भी करखा मोलन मतलब अदर जगह, तब भी मुझे पूछते कि तो है मोरी हमेशा इतनी तारीफ को रहा करते फादर री को ना करते। हालांकि हम अपू आके फादर आता फादर रहा भी बड़ा संघर्ष रहता है, और लेकिन जो माँ करी सकते हैं ना भाई साहब, सो फादर मैं भी ना करी सकता, जाए जितना मर्जी अपनी लुआदी होगी प्यार करता वह, लेकिन जो संघर्ष अकेले माँ कर सकती हाँ, सो संघर्ष कभी भी फादर ना कर सकता हाँ। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी आ, ये तो यह गल्ला पर हूँ बड़ा अटल हाँ कि फादर कभी भी कजो कि जो तथ्य यह खबर में निकले कर इच्छू करता कि अक्की मोए अपनी बच्ची छिये महीने रे बच्ची बाल्टी वे डूबने बाल्टियाँ सो डूब गया, और तत्थों बात है अपने प्राण निछावर करी दिता है, तक फादर साहब बंदा तो शायद ना करता निछावर है ना, पर मोआ रे ताऊँ हमेशा तारीफ करदा, और ता हमेशा बनता हूँ मोह वास्ते, ताऊँ हमेशा मोह वास्ते स्टैंड लेंदा हुआ अपनी मोह वास्ते ना, सभी री मोरी की असो बहुत मान सम्मान करता, बहुत इज्जत करता, और तुसु अगो क्या एग्जाम्पल आऊँ रखूँ, आऊँ ऐसे ऐसे कम भी करता हा कि जो शायद शायद ही कोई कुछ, क्योंकि आऊँ वाकई मैं बड़ा इमोशनल दे आदमी आ, बड़ा सॉफ्ट हार्ट मतलब हार्ट है मेरा, बड़ा कोमल दिल है मेरा, आऊँ कदी किसी रा बुरा ना ए रे सकता और ना ही कर सकता हा, कुछ ऐसी परवरिश की सो मेरे बिछोरे के आऊँ कभी किसी रा बुरा ना कर सकता हा, हालांकि जितना अपनी जितने मेरे औकात है जितना वो कर सकता किसकी रे वास्ते उतना वो जरूर करता हमेशा करता हो, दस्ता नहीं सिर्फ इतना बलदा कि करता हूँ, जहने जहने भी मुझे जड़ी जड़ी भी समय लगा या टाइम लगा या मेरी हाकरी सामने कुछ ऐसा बंदा बुआ तो ज़रूर मदद करता हा, जो कि चलो भगवान ने इतना लाइक बनाई तो आसू क्या है किसके लिए मदद करी सकना, इंदी मोरी परवरिश है ना, इंदे परिवार रे परवरिश है कि आसू इस लाइक बनाई तो रहती है, ताऊ मोरी तारीफ करता जी कि ताऊ हमेशा बोलता कि जितना दिया मेरी माँ ने मुझको, जितना दिया मेरी माँ ने मुझको उतनी तो मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरी माँ का, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। ता खबर बड़ी इमोशनल थी श्रोतों, बड़ा इमोशनल इम्पैक्ट पाओ कर दे खबर की अक्की मोए किया सो अपनी छिया महीने भी कुड़ी वास्ते जान ने छावर किया सो करी थी, कमरे में रिंदी थी अकेली थी, और अब महिला जो तुसु पता घर है कि सो बड़े कम बुनते हैं ना, तो रोरा लगी बुने और पुछू थोएं बुछू बुना, सो आऊँ ये बोलना चाहूँ कि जो ता परिवार है मरिंदी जियारी दादी दादा चाचा चाची घरे हिन मतलब परिवार पूरा, सो बड़े खुश नसीब इन कि तुंदे बच्चे जो हेरने वास्ते इतने जिने इन है ना, नहीं तो इस प्रकार हाथ से बुनते भी किया सो समय ना लगता है शो तो। बहरहाल कार्यक्रम जो हगो बढ़ देन और अगली फरमाइश किया सो पूरे कर देन, बने रहे तो सब आरजे सचिन कपूर सो गी गूंज अपने पन रे।

शोध एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुरु और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा चल रही ट्विंकल जी खनारे थो त्यारी फरमाइश अधूरे रह गए पूरे कर लेंदेन शोधों

तशोतों अबे कार्यक्रम तो इजाजत लेने रहा समय की सो बुझेगा और गंदे गंदे बस तू सोए बनना चाहनु हाँ कि जो हाँ अक्सर बनो माँ बाप री सेवा जरूर करा शोतों और कैसे री मदद जरूर करा जिसे री मदद तो है करी सकते हैं सेरी मदद जरूर करा प्रकृति का ख्याल जरूर रखा शोतों और पेड़ पौधे जरूर ला। इन्या शब्द था हूँ सचिन कपूर तू सुथों ले लेने हो इजाजत माँ बाप री सेवा जरूर करा शोतों। और एक माँ अपने बच्चे जो कितना प्यार कर दे है आज इस कार्यक्रम रे जरिया है जाने बिलु हुआ और इस खबर रे जरिया है पहचाने बिलु हुआ शो तुम सो माँ थो मुट्ठा किया सो कोई भी योद्धा ना थो ना हा और ना कदी भूणा हा माँ सब थो मुट्ठा योद्धा हा शो तुम। इन शब्द थो नाची सचिन कपूर लेनो इजाजत नमस्ते धर्मशाला।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। प्रस्तुत है आज का प्रमुख समाचार बुलेटिन। मैं हूं सचिन कपूर। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। मुख्य समाचार, कुल्लू दशहरा उत्सव में इस बार 500 ड्रोन से सजेगा आसमान, भव्य लेजर शो भी होगा। प्रवेश के लिए आई कार्ड जरूरी होगा। अक्टूबर से हिमाचल में 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों की घर बैठे होगी स्वास्थ्य जांच। गंभीर मरीजों को अस्पताल भेजने की व्यवस्था। श्री चामुंडा नंदी के केश्वर धाम के गर्भगृह को नया स्वरूप देने की तैयारी। 3 किलो सोने और 6 क्विंटल चांदी से सजावट की योजना। पूर्व सैनिक, दिव्यांग और BPL अभ्यर्थियों को मेरिट में अनारक्षित पद पर नियुक्ति का प्रावधान। चयन प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग की रियायतों को लेकर नियम स्पष्ट। चंबा की धाविका सीमा कुमारी ने एशियन गेम्स में रचा इतिहास। 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर भारत का 16 साल का इंतजार खत्म किया। अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा इस बार तकनीक और परंपरा के अनोखे संगम का गवाह बनने जा रहा है। समाचार के अनुसार दशहरा उत्सव के दौरान पहली बार 500 ड्रोन के माध्यम से आसमान में भव्य दृश्य प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके साथ ही लोगों को लेजर शो भी देखने को मिलेगा। पहाड़ों की पृष्ठभूमि में होने वाला यह आयोजन दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। आयोजन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। बिना आई कार्ड के प्रवेश नहीं मिलेगा, यानी उत्सव में आने वाले लोगों को निर्धारित पहचान पत्र साथ रखना होगा। इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी विशेष रूप देने की तैयारी है। समाचार में बताया गया है कि एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें हिमाचल की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को अलग अंदाज में प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ साथ दूसरे राज्यों के सांस्कृतिक दलों की भागीदारी भी प्रस्तावित है। राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड और पंजाब के सांस्कृतिक दलों के शामिल होने की जानकारी दी गई है। दशहरा उत्सव में भारतीय संस्कृति की विविधता को दिखाने के साथ साथ हिमाचली लोक संस्कृति और परंपराओं को भी प्रमुखता दी जाएगी। 500 हिमाचल प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों की घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच करने की योजना पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को इस योजना को लागू करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य बुजुर्गों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना और बीमारी की शुरुआती अवस्था में ही उसकी पहचान करना है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर बुजुर्गों की सामान्य स्वास्थ्य जांच करेंगी। इसमें ब्लड प्रेशर, शुगर और सामान्य स्वास्थ्य स्थिति की जांच के साथ साथ बीमारी से जुड़े लक्षणों पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच के दौरान यदि किसी बुजुर्ग में गंभीर बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें आगे के उपचार के लिए अस्पताल भेजने की व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में भी इस अभियान को प्रभावी बनाने की तैयारी की जा रही है। इस तरह की घर घर स्वास्थ्य जांच से बुजुर्गों में समय रहते बीमारी की पहचान करने में मदद मिल सकती है और उन्हें समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा। घर से स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने में परेशानी झेलने वाले बुजुर्गों के लिए यह व्यवस्था विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है। धर्मशाला के शक्तिपीठ श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम के गर्भगृह को भव्य स्वरूप देने की तैयारी चल रही है। गर्भगृह की दीवारों और अन्य हिस्सों को सजाने के लिए सोने और चांदी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें करीब 3 किलो सोने और 6 क्विंटल चांदी की सामग्री से सजावट की योजना बताई गई है। इस कार्य में लुधियाना के एक श्रद्धालु की ओर से सहयोग किया जाएगा। वहीं गर्भगृह के लिए वियतनाम से विशेष मार्बल मंगवाए जाने की भी जानकारी दी गई है। मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। दीवारों और दरवाजों का निर्माण तथा अन्य सजावटी कार्य भी किए जा रहे हैं। गर्भगृह में एक समय में करीब 100 श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था किए जाने की योजना है। मंदिर प्रशासन की ओर से निर्माण और सौंदर्यीकरण के कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। श्री चामुंडा धाम हिमाचल के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है और यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। ऐसे में मंदिर परिसर में सुविधाओं और व्यवस्थाओं का विस्तार श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में पूर्व सैनिकों, दिव्यांगजनों और BPL सहित क्षैतिज आरक्षण वाले वर्गों के अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर अनारक्षित पदों पर समायोजित किए जाने को लेकर नियम स्पष्ट किए गए हैं। राज्य सरकार के नए निर्देशों के अनुसार यदि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य या अनारक्षित अभ्यर्थियों के समान मानकों पर बिना किसी रियायत का लाभ लिए मेरिट में चयनित होता है तो उसे अनारक्षित पद पर समायोजित किया जा सकता है।
वहीं यदि किसी अभ्यर्थी ने आयु सीमा, अनुभव, शैक्षणिक योग्यता या अन्य निर्धारित मानकों में छूट का लाभ लिया है तो उसे आरक्षित पद के तहत माना जाएगा। सरकार के निर्देशों में दिव्यांग अभ्यर्थियों के संबंध में भी प्रावधान स्पष्ट किए गए हैं। समान मानकों पर मेरिट से चयनित होने की स्थिति में उन्हें अनारक्षित पद के विरुद्ध समायोजित करने की व्यवस्था बताई गई है। इससे भर्ती प्रक्रिया में मेरिट और आरक्षण से संबंधित स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। चंबा जिले के रेटा गांव की धाविका सीमा कुमारी ने एशियन गेम्स में महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। जापान के आईची नगोया में आयोजित प्रतियोगिता में सीमा ने 32:50.05 का समय निकालकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस पदक के साथ महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में भारत का 16 साल का पदक इंतजार समाप्त हुआ है। इससे पहले भारत को इस स्पर्धा में 2010 में पदक मिले थे। दौड़ के दौरान सीमा शुरुआत में आगे रही लेकिन बीच में पीछे हो गई। इसके बाद अंतिम चरण में उन्होंने शानदार वापसी करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। सीमा का सफर हिमाचल प्रदेश के चंबा के दुर्गम क्षेत्र से शुरू हुआ। समाचार रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2015 में उनका चयन धर्मशाला स्थित साई केंद्र में प्रशिक्षण के लिए हुआ था, जहां उनके खेल को आगे बढ़ाने में प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सीमा की इस उपलब्धि पर चंबा और धर्मशाला सहित पूरे हिमाचल में खुशी का माहौल है। और खास बात यह है कि सीमा आने वाले दिनों में 5,000 मीटर दौड़ में भी हिस्सा लेने वाली है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के धारकंडी की दरिणी पंचायत में वीरवार को विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने 4.54 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 33-11 केवी के विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए केवल सिंह पठानिया ने कहा कि इस सब स्टेशन से धारकंडी क्षेत्र की 8 पंचायतों के करीब 8600 उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इसे क्षेत्र में वर्षों से चली आ रही कम वोल्टेज की समस्या का समाधान होगा तथा लोगों को बेहतर और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने इस परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। पठानिया ने बताया कि कुठारना में कम वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए 10 लाख रुपए की लागत से नया 63 केवीए ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है। वहीं रुलेड और हार बोह में करीब 25 लाख रुपए की लागत से 25 केवीए ट्रांसफार्मरों को 63 केवीए में अपग्रेड किया गया है। उन्होंने कहा कि लाहड़ी और घटारड़ा में विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कार्य प्रगति पर है, जिन्हें शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। दरिणी सब स्टेशन से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी। इसके अतिरिक्त आपात स्थिति में विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए शाहपुर से वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था भी की गई है। इसी के साथ आज का समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। आप सुन रहे थे प्रमुख समाचार।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्प दंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्प दंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्प दंश जानलेवा हो सकता है, कही सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: देख पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
4: पता नहीं तुझे उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
6: पता है ना, मुझे टीबी है।
5: चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: मम्मी मम्मी मम्मी
1: क्या है?
0: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टर, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं। लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना सही, यूर अ जीनियस।
5: यूर अ जीनियस।
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ। स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
7: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना, ये भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्री राम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं अपनी मर्यादा में। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझमें और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे।
8: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं। ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
10: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
9: हाँ बोलो।
10: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
9: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
10: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
5: गजब बेइज्जती है।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोताओ, इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। आज का गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी अपनी दोस्त सुमन। तो कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से प्यार भरी नमस्ते, आदाब, सलाम और सत श्री अकाल। जी हाँ श्रोताओ, हमारे समाज में, हमारे हिमाचल में हर तरह के लोग रहते हैं और सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं, सभी हमारे दोस्त हैं, सभी हमारे फ्रेंड हैं और मिलजुल कर कार्यक्रम का इंजॉय भी करते हैं। और भाई सभी के लिए थोड़ा सा अपना परिचय भी देना बनता है और साथ ही साथ एक प्यारी सी गुड इवनिंग और प्यारी सी नमस्ते तो अपने दोस्तों के साथ बनती ही है। जब भी हम अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आदाब, नमस्ते, सलाम, इसी तरह से हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, अपना परिचय देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, तो फिलहाल हमें भी कार्यक्रम में आगे बढ़ना है और आप सभी को सुनवाना है कार्यक्रम का पहला गीत। गीत से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और गीत के बाद फिर से मिलेंगे और आपके साथ करेंगे ढेर सारी जानकारियाँ साझा। तो आप यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

जी हाँ बिल्कुल श्रोताओ, जीने की तमन्ना तो हर इंसान को रहती है। हर इंसान चाहता है कि ज़िंदगी के सफ़र को हम पूरा करें और इंजॉय करें। जी हाँ श्रोताओ, गीत तो आपने सुन लिया, गीत तो प्यारा सा था और प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हमने कर दी और हमारे श्रोताओं के गुड इवनिंग के मैसेज हम तक पहुंचने भी लगे। जी हाँ श्रोताओ, ये आपका प्यार ही है कि आप संध्याकालीन नमस्कार हम तक पहुंचाते हैं। जी हाँ श्रोताओ, इसी तरह से हमारा प्यार बना रहे तो आइए इस प्यार को, इस दोस्ती को और मजबूत करते हैं। और कार्यक्रम में आज की जानकारियाँ आपके लिए लेकर आए हैं, उन्हें भी आप तक पहुँचाते हैं। श्रोताओ, अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है, जो कि 21 सितंबर से 27 सितंबर तक मनाया जाता है। और इसके आयोजक की बात करें तो विश्व बधिर संघ द्वारा आयोजित किया गया है और बधिर लोगों के मानवाधिकारों की घोषणा का ये दिन होता है। इसी सप्ताह के दौरान 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय संकेतिक भाषा दिवस भी हमने मनाया है। तो हर दिन कोई ना कोई जानकारियां लेकर आता है और ढेर सारी जानकारियां जो हैं जुड़ी रहती हैं हमारे कार्यक्रम में, और हम बहुत सारी जानकारियों के साथ आपके सामने उपस्थित भी होते हैं कि हम अपनी जानकारियों को अपने श्रोताओं तक, अपने दोस्तों तक पहुँचा सकें। और हमारी कोशिश पूरी यही रहती है कि तरह तरह की जानकारियों को हम लेकर आएँ। और वैसे भी बात करें तो हर दिन जानकारियों को वाला होता है, कुछ ना कुछ जानकारियाँ तो हर दिन में, हर सप्ताह में रहती ही है। बधिर लोगों की श्रोताओं बात कर रहे हैं तो बधिर लोगों के मानवाधिकार को सुनिश्चित करने में ही संकेतित भाषा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ही हमने पिछले दिनों में ये सांकेतिक भाषा दिवस भी मनाया है। इसके लिए इस वर्ष का विषय भी ये

श्रोताओ, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो कुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ श्रोताओ, लोगों को, हमारे दोस्तों को इंतज़ार रहता है कि कब शाम के 6 बजे और कब हम कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन सके। बहुत सारे श्रोता जो है इस समय अपनी गाड़ी में कार्यक्रम को सुन रहे होंगे और बहुत सारे श्रोता जो है इस समय घर पहुंच चुके होंगे, कुछ रास्ते में होंगे, कुछ सुकून की राहत ले रहे होंगे, सुकून से चाय की चुस्कियां पी रहे होंगे। और सारा दिन भर हम काम करके जब घर पहुंचते हैं तो बहुत ही आराम मिलता है, बहुत चैन मिलता है, थोड़ा सा हम सुस्ता लेते हैं और अपनों के बीच में बैठते हैं तो दिन भर की थकान उतर जाती है। जी हाँ बिल्कुल श्रोताओ, इसी तरह से होता है ना, आपके साथ जब अपनों का साथ मिले, अपनों का प्यार मिले तो हर थकावट भी दूर हो जाती है और अपने परिवार के साथ हम हंसते मुस्कुराते हैं और कब समय बीतता है पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल श्रोताओ, हमें भी इसी तरह से लगता है जब आपके साथ बैठे हैं, जब आपके पास बैठे हैं अपनी आवाज़ के माध्यम से, तो हमें भी पता नहीं चलता है कि समय कब कट जाता है। तो यूं ही ज़िंदगी का सफ़र कटता रहे, ऐसा हम सभी ऊपर वाले से दुआ करते हैं। इन्हीं बातों के साथ साथ फिर से हम अपने विषय की ओर आते हैं और हमारी बातचीत हो रही थी बधिर सप्ताह के बारे में। इस दिन का उद्देश्य बधिर और कम सुनने वाले लोगों के अधिकार, उनकी उपलब्धियों और समाज में समान भागीदारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। बधिर लोगों को समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करना है।

इसके साथ साथ जो है शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में बधिर लोगों की भागीदारी को भी आज के दिन बढ़ाना होता है। यानी इस सप्ताह हम इस विषय पर बातचीत करते हैं और इन मुद्दों को भी उठाते हैं। समाज में बधिर व्यक्तियों के प्रति गलत धारणाएं और भेदभावों को कम किया जाता है, साथ ही साथ परिवार और समाज को ये समझाना है कि सुनने में कठिनाई किसी व्यक्ति की क्षमता को कम नहीं करती है। तो श्रोताओ, अपनी जानकारियों के साथ फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप सभी तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा संगीत। तो सुनते रहिए।

जी हाँ बिल्कुल, साथी जब मिल जाता है तो किसी की परवाह नहीं रहती है, फिर चाहे माँ कुछ बोले या बाबा कुछ बोले कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं, साथी तो मिल गया है। लेकिन लेकिन श्रोताओ, साथी अगर चाहते हैं तो बड़ों की मंजूरी भी ज़रूरी होती है, बड़ों का आशीर्वाद भी ज़रूरी होता है। अच्छा, साथी अगर आपने चुन लिया है तो अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएं, उनकी सलाह भी ज़रूर लें। जब हम अपने पेरेंट्स की सलाह लेते हैं तो जीवन में कभी भी मात नहीं खाते हैं, तो उनका आशीर्वाद भी ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि उनके भी बहुत सारे सपने हमारे साथ जुड़े होते हैं, उन्होंने बहुत सारे सपने देखे होते हैं अपने बच्चों के लिए। अगर हम उनको बता दें तो वो बढ़िया तरीके से अच्छे से जो है हमारी शादी भी करवाते हैं और अपने जो रीति रिवाज होते हैं उन्हें भी पूरा करते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे बिना पेरेंट्स को बताए शादी कर लेते हैं, तो पेरेंट्स की जो ख्वाब होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। तो जब भी आपको कोई अच्छा पार्टनर पसंद आता है तो पेरेंट्स की मंजूरी ज़रूर लें, उन्हें बताएं, ताकि आपकी खुशियां दोगुनी और बढ़ जाएं। सभी रीति रिवाज के साथ हर कार्य को करें तो ज़िंदगी में बहुत खुशी मिलती है और अपनों का साथ भी पूरा हो जाता है, और साथ मिलना बहुत ज़रूरी होता है। अपनों के बिना कहीं भी ज़िंदगी के सफ़र में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और अपनों का सफ़र मिल जाए तो सफ़र कब पूरा हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो आइए थोड़ा सा इस सफर को और रंगीन करते हैं और कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचाते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, कभी कभी मन किसी को ढूंढने को करता है और हर किसी के जीवन में इसी तरह से होता है। जब दिल को कोई पसंद आ जाता है, दिल को कोई अच्छा लग जाता है, दिल को कोई भा जाता है, तो नज़रें बस उसी को ढूंढती है। जितनी भी भीड़ हो, कहीं ना कहीं जिसे हम पसंद करते हैं वो हमें मिल जाता है या दिख जाता है, या हमारी आँखें तरस जाती हैं उसे देखने के लिए। और जब वो दिख जाए तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। खुशी चेहरे पर होती है, मन भी पूरी तरह से खुश होता है और आनंद महसूस करता है। बिल्कुल हर किसी के जीवन में ये पल आता है और हर कोई इस खुशी को महसूस भी करता है। जी हाँ, जीवन में आने वाले हर पलों को हमें महसूस करना चाहिए, हर खुशी को हमें इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन जो है बार बार नहीं मिलता है। तो इस जीवन को इंजॉय करते हैं, ये फिर से कार्यक्रम में आप तक पहुंचाते हैं। कार्यक्रम का ये गीत तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

जी हाँ श्रोताओ, जादू कभी कभी जीवन में सबके चलता है, और ये जादू कौन सा होता है आप सभी समझ रहे होंगे। जी हाँ, जीवन में जादू का होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत हसीन, बड़ा प्यारा सा समय उस समय लगता है, और इस जादू के बिना ज़िंदगी भी अधूरी लगती है। ज़िंदगी में इस तरह से भी सभी के होना चाहिए, क्योंकि प्यार ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। प्यार जीवन में खुशियाँ लाता है और ज़िंदगी को पूरा कर देता है। ज़िंदगी भी एक दूसरे के सहारे कटती है, अगर साथी ना हो तो ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं आता है, और साथी हो तो ज़िंदगी बहुत हसीन, बहुत प्यारी, बड़ी मीठी सी, बड़ी सुहानी सी लगती है। और ज़िंदगी में यूँ लगता है कि जादू सा हमें हो गया है। बिल्कुल श्रोताओ, इसी जादू के साथ कार्यक्रम में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं बातों का सिलसिला यूँ शुरू हो जाता है और हमारे बात इधर से उधर हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता है। खैर, जादू तो यूँ ही चलता रहेगा ज़िंदगी में, लेकिन थोड़े कामकाज भी ज़रूरी हैं। कामकाज को निपटा लेते हैं, फिर जादू के में थोड़ा सा फिर से खो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं जानकारियों की, और जानकारियों में हम बात करें भारत में स्वच्छता के बारे में। तो भारत में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान जो है हर साल 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक मनाया जाता है, और इसके अलावा व्यक्तिगत राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस हर साल 30 जनवरी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को मनाया जाता है। अब भारत स्वच्छता दिवस के और अभियान की बात करें श्रोताओं, तो स्वच्छता ही सेवा अभियान एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। ये हर साल 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलता है, जो कि स्वच्छ भारत दिवस पर समाप्त होता है। राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस की बात करें तो ये विशेष दिन प्रतिवर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है, जैसे हमने अभी पहले बात की है, और विश्व सफाई दिवस विश्व स्तर पर हर साल सितंबर के तीसरे सप्ताह यानी 20 सितंबर के आसपास मनाया जाता है। तो सुनते सुनाते ढेर सारी जानकारियों के ज्ञान तो हमें हो जाता है, और भी जानकारियां हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन जब बातों का सिलसिला ज्यादा होता है तो मन करता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंजॉय कर लिया जाए, थोड़ी सी मस्ती कर ली जाए, क्योंकि मस्ती अगर ना हो तो जीवन थोड़ा सा नीरस लगता है। तो ये जीवन को थोड़ा सा रंगीन करते हैं और इंजॉय करते हैं। कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत सुनते रहिए।

हाँ बिल्कुल श्रोता, जिन पर प्यार होता है उन पर गुस्सा भी बहुत आता है, और अपनों पर ही गुस्सा आता है और अपनों पर ही हम हक भी रखते हैं गुस्सा करने का, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपनों का हमेशा भला हो, अपने हमेशा सही राह पर चले। तो सही राह पर चलाने के लिए कभी उन्हें डांटना भी पड़ता है, कभी गुस्सा और नाराज़गियाँ भी व्यक्त करनी पड़ती हैं। इसी गुस्से नाराज़गी के साथ फिर से हम कार्यक्रम में वापस आते हैं और बात कर रहे थे स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा पर। हर साल 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इसे देश भर में मनाया जाने वाला एक बड़ा सफाई और जन जागृति अभियान है। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसे किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य देश में साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करना और श्रमदान के जरिए सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखना है। तो श्रोता, इसी स्वच्छता के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और फिर से एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, और साथ ही साथ हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा की हम बात कर रहे थे। तो ये पखवाड़ा 15 दिन तक चलता है और इसमें श्रमदान, स्वच्छता रैलियां, मानव श्रृंखला का निर्माण, पौधारोपण जैसा एक पेड़, माँ के नाम और नुक्कड़ नाटक शामिल रहते हैं। और प्लास्टिक मुक्ति की बात करें तो एकल उपयोग प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक और उसके विकल्पों को अपनाने पर जोर दिया जाता है। साथ ही स्वच्छता कर्मियों, सफाई मित्रों से स्वास्थ्य परीक्षण और उनके कल्याण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाते हैं। और त्योहारों के मौसम में पर्यावरण के अनुकूल और शून्य अपशिष्ट उत्सव मनाने की अवधारणा को बढ़ावा दिया जाता है। तो ढेर सारी जानकारियां लिए हुए आज का कार्यक्रम है। तो श्रोताओं, जानकारियां तो हम साथ साथ में आपके साथ साझा कर रहे हैं और बीच बीच में इंजॉय करना भी बनता है। तो बिल्कुल देरी न करते हुए कार्यक्रम का अगला गीत आपकी नज़र करते हैं। कभी कभी याद आ जाती है उनकी, लेकिन वो नहीं आते हैं। इसी तरह का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए एंजॉय करते हैं इस गीत को।

जी हाँ बिल्कुल, श्रोता जिन का हमें इंतज़ार रहता है वो कभी ना आए तो बड़ा दुख सा लगता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम यहाँ यादों के सहारे जी लेते हैं। बहुत प्यारी सी और मीठी सी यादें होती हैं जिनके सहारे पूरा ज़िंदगी का सफ़र कट जाता है। जी हाँ, ज़िंदगी का सफ़र तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन हम बढ़ते हैं अपने विषय के सफ़र की ओर। और स्वच्छता की बात हो रही थी तो स्वच्छता का महत्व प्राचीन काल से ही मानव जाति के लिए रहा है, इसलिए कहा जाता है कि स्वच्छता ईश्वर के समान है। स्वच्छता हमें स्वस्थ रखती है, हर प्रकार से रोगों से बचाती है और शरीर की दुर्गंध, मुंह की दुर्गंध, गंदे नाखून, दांतों पर दाग, पैरों पर बदबू आना या दाढ़ी का ना सवारे रहना, अस्वच्छ स्वास्थ्य और दूसरों पर नकारात्मक प्रभाव जैसे लक्षण पैदा करते हैं। हाथ, दांत और बाल धोना, स्नान करना, कपड़े साफ पहनना व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के आसान तरीके हैं। स्वच्छता पर बहुत सारी बातें होती हैं कि हमें अपने आसपास की स्वच्छता बनाए रखनी है, हमें अपने व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना है, और स्वच्छता जहाँ है वहाँ हर चीज़ बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी लगती है। और इसी स्वच्छता को और थोड़ा सा गहरा करते हैं आज कार्यक्रम में आप तक पहुँचाते हैं अगला कार्यक्रम का गीत। तो इंजॉय करें कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत को।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता, इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में श्रोताओं, आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त सुमन। तो कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और हमारी बातचीत जो है आज साफ़ सफाई पर हो रही थी श्रोताओं। तो साफ़ सफाई जो है हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है और इस अहम हिस्से के साथ हम कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि साफ़ सफाई हर किसी के लिए ज़रूरी होती है और साफ सफाई जीवन में हो तो हम जो है स्वस्थ रहते हैं और ये हमारे जीवन की प्राथमिकता है। स्वच्छता ज़रूरी है क्योंकि साफ़ सफाई से हम जीवन में आने वाली कई परेशानियों से मुक्ति पा लेते हैं। स्वच्छता का अर्थ है सफाई में रहने की आदत। सफाई से रहने से जहाँ शरीर स्वस्थ रहता है वहाँ हमारा तन और मन दोनों की खुशी के लिए आवश्यक है स्वच्छता। सभी लोगों को अपना दिनचर्या में अवश्य ही शामिल करनी चाहिए स्वच्छता। और गांधी जी ने कहा है कि स्वच्छता ही सेवा है। हमारे देश के लिए हमारे जीवन में स्वच्छता की बहुत ज़रूरत है। गंदगी हमारे आसपास के वातावरण और जीवन को प्रभावित करती है। हमें व्यक्तिगत और आसपास की साफ़ सफाई अवश्य रखनी चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल में रोगियों की बढ़ती जनसंख्या और अस्पताल में साफ सफाई को ध्यान देने की आवश्यकता से ही इस बात के पर हमारा ध्यान जाता है कि जीवन में स्वच्छता कितनी ज़रूरी है। जीवन में स्वच्छता से तात्पर्य स्वस्थ होने की अवस्था से है। स्वच्छता एक अच्छी आदत है, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है। ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे लिए शरीर की स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। हर दिन हमें साफ़ सफाई की ओर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हमें सुबह प्रतिदिन जैसे हम सोकर उठते हैं अपने दांतों को साफ करना चाहिए, चेहरा हाथ पैर धोने चाहिए, स्नान इत्यादि करना चाहिए और दैनिक क्रियाओं को भी पूर्ण रूप से करना चाहिए। इसी के साथ श्रोताओं कार्यक्रम में समय हो रहा है साईं के साथ, और जब साईं के साथ बजते हैं तो कार्यक्रम में समय हो जाता है समाचारों का। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए हम बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर, आपको लिए चलते हैं समाचारों की ओर। उसके लिए करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा इंतज़ार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन्हें संस्कारों में सेवा के अन्य जीवन बताए जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ उनकी यात्रा को संबोधित कर रहे हैं।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना
2: चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर
1: हर देश एक नई ऊर्जा में सेवा भाव से राष्ट्र कल्याण राष्ट्र सेवा का जन सेवा से राष्ट्र सेवा इस मंत्र को जीना इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के अंदर जुड़ेंगे ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत ने नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास किया है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 81वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार अनुसंधान गतिविधियों और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। उन्होंने कहा कि परिषद की सफलता की कहानियां अब पहले से कहीं अधिक दिखाई दे रही है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यावहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ दोनों नेताओं की बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में समुद्र के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों पर आयोजित उच्च स्तरीय शून्य बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री जॉर्ज ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाए जाने का स्वागत किया। उन्होंने तटीय क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने मैंग्रोव संरक्षण तथा आपदा योधी बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारत के प्रयासों को रेखांकित किया। जापान एशियाई खेलों में आज कमलजीत और कृति सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट में बर्मिका एलन गोवन ने कांस्य पदक जीता। वहीं 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉट पुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। मानुष शाम और दिया चिताले ने मिक्स डबल्स टेबल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हरा कर फाइनल में जगह बना ली है। भारत 2 स्वर्ण 9 रजत और 12 कांस्य समेत 23 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: समाचारों के बाद श्रोताओं कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला और आज का कार्यक्रम लिए हाजिर हुई है आपकी अपनी दोस्त सुमन। तो श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं क्योंकि जानकारियों का सफर यूं ही आपके साथ जारी रहेगा। उन जानकारियों में हम जो है थोड़ी सी बात स्थानीय जानकारियों की भी आपके साथ कर लेते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में स्थापित विश्वविद्यालय से हिमाचल की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री आज सोलन में हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग तथा निजी विश्वविद्यालय के संस्थागत योगदान विषय की प्राथमिक तथा सहयोगात्मक कार्य प्रणाली विषय पर आयोजित शैक्षणिक सम्मेलन सत्र पर छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी जानकारियां और भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, उन्हें भी साझा करेंगे। थोड़ा सा कार्यक्रम में रुकते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। तो आप बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

चलो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से हम हाजिर हो चुके हैं। स्वच्छता को लेकर, स्वच्छता जीवन में बेहद ज़रूरी है और प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक मानव जीवन में लगातार जहर घोल रहा है। मानव सुबह से लेकर शाम तक प्लास्टिक का उपयोग करता है, जिसे मानव वरदान की तरह समझता है। दरअसल ये पर्यावरण, पशु और हम सभी के लिए बहुत ही घातक है। प्रकृति में असंतुलन बनाए रखने के लिए, आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत ही आवश्यक है। प्लास्टिक बंद का आह्वान कर रहे कड़े कानून बनाए गए हैं, ये भी स्वच्छता के प्रति एक अच्छा सराहनीय कदम है। वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए अधिक से अधिक पौधे जो हैं हमें लगाने चाहिए। तो श्रोता, पौधे तो हमने लगाए।

चलो इस प्यारे से गीत के बाद फिर से हम थोड़ी सी बातचीत कार्यक्रम में कर लेते हैं, कुछ जानकारियां आपके साथ साझा कर देते हैं। श्रोताओ, आज के दिन को हम मना रहे हैं भौतिक भूगोल दिवस के रूप में। पृथ्वी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो हमारे प्रकृति, दुनिया और उसे आकार देने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन भी करती है। जी हाँ, जो है भौतिक भूगोल के

की बात करें तो भौतिक भूगोल क्या है? वह अंतर्गत पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण और पर्यावरण का अध्ययन करता है। स्थलमंडल की बात करें तो पर्वत, पठार, मैदान और मिट्टी स्थलमंडल है। अब जलमंडल की ओर थोड़ा सा रुक करें कि जलमंडल क्या है? तो महासागर, नदियाँ और झीलें, ये हमारे जलमंडल है। वायुमंडल मौसम, जलवायु और वायु दबाव है। जीवमंडल पेड़ पौधे, जीव जंतु और पारिस्थितिकी तंत्र, ये सभी जो है हमारे भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। भौतिक भूगोल के महत्व की बात करें तो प्रकृति और मनुष्य के बीच के संबंधों को समझना ही भूगोल दिवस का महत्व है। प्रकृति संसाधनों और पर्यावरण का संरक्षण करना है, साथ ही साथ पृथ्वी को हरा भरा और स्वच्छ रखने के लिए जागरूकता फैलाना भी भूगोल दिवस के महत्व के ही अंतर्गत आता है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हम और भी जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोतो, ये प्यारा सा गीत आपने एंजॉय किया, उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम में फिर से हम आपको थोड़ा सा लिए चलते हैं जानकारियों की ओर। जानकारियों में बात कर रहे थे हम विश्व भौतिक भूगोल दिवस के बारे में। भौतिक भूगोल दिवस को सरल भाषा में अगर हम कहें तो भूगोल की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप और प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें पर्वत, नदियाँ, महासागर, जलवायु, नदी, वनस्पति, चट्टाने और प्राकृतिक आपदाएँ शामिल हैं। जी हाँ, भौतिक भूगोल बहुत ही तरह से हमारे सामने आता है और बहुत ही तरीके से हम इसे जान पाते हैं। भौतिक भूगोल क्यों महत्वपूर्ण है इसकी बात करें श्रोताओं, तो भौतिक भूगोल हमें ये समझाने में मदद करता है कि प्रकृति, पृथ्वी की संरचना कैसे बनती है, उसमें समय के साथ क्या बदलाव हो सकते हैं। थोड़ा सा हम बात करें पर्वतों और पठारों की संरचना से हम इसे बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। नदियों, समुद्र और जल चक्र का अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ भौतिक भूगोल के महत्व में हम मिट्टी, वनस्पति और प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। भूकंप, बाढ़, भूस्खलन और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं को समझने में हमें सहायता मिलती है। इसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय बदलाव का भी अध्ययन किया जाता है। तो ढेर सारे जानकारियाँ लिए आज का कार्यक्रम जो है हम लेकर आए हैं। इन जानकारियों के साथ कार्यक्रम में आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो।

श्रोताओं, इसी गूंज के साथ कार्यक्रम में एक बार फिर से हम वापिस आ चुके हैं लेकर भौतिक भूगोल की जानकारी। भौतिक भूगोल बच्चों और युवाओं को अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण को समझाने और प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रकृति को समझना ही उसके संरक्षण की पहली सीढ़ी है। भौतिक भूगोल हमें प्रकृति की संरचना, उसकी शक्तियों और उसके महत्व को समझने का अवसर भी देता है। प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो वे पदार्थ जो ऊर्जा स्रोतों से हमें सीधा प्रकृति, जलवायु, वायु और सूर्य से मिलते हैं, वे मानव जीवन के विकास के लिए आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और नवीनीकरण के आधार पर मुख्य रूप से दो भागों में हम इन्हें बांटते हैं, और वे संसाधन हैं जो कभी खत्म नहीं होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा है। जल जीवन, कृषि और बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक है। वायु, श्वास और पवन ऊर्जा के लिए उपयोग की जाती है। वन और मृदा ऑक्सीजन, भोजन और लकड़ी पैदा करती हैं। इसके साथ साथ नवीनीकरण संसाधनों की बात करें तो जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, खनिज और धातुओं की बात करें तो लोहा, तांबा, सोना और यूरेनियम इत्यादि। प्रकृति के आधार पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जैविक संसाधनों की बात करें जो संजीव घटकों के से प्राप्त होते हैं, जैसे वनस्पति, वन्यजीव, कोयला और पेट्रोलियम। और अजैविक की बात करें तो जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी और खनिज। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हम और भी गीत संगीत अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं, तो आइए फिर से आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो इस प्यारे से गीत के बाद फिर से वापिस आ चुके हैं हम कुछ स्थानीय जानकारियां आपके लिए लिए हुए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार किसी के सामने नहीं झुकेगी। और मुख्यमंत्री ने आज सिरमौर जिला के सहाना में वामन द्वादशी मेले में समापन अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए हाल में ही एक समझौते से एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा है कि शाऊ परियोजना पर कई वर्षों से सहमति नहीं बन पा रही है। पिछली भाजपा सरकार ने विद्युत परियोजना की लागत वहन करने पर सहमति जताई है, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने यह पक्ष रखा है कि जिन राज्यों को पानी की आवश्यकता है उन्हीं राज्यों की परियोजना को लागत वहन करनी होगी। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों के साथ कार्यक्रम में आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ, तो सुनते रहिए।

थोड़ा सफर का मजा लीजिए।

0: सिस्टम पोर्टल जारी करने वाला हिमाचल बना देश का पहला राज्य। पंचायती राज संस्थाओं की कार्यवाही होगी ऑनलाइन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वेतन सीमा को लेकर लिया बड़ा फैसला। 15 से बढ़ाकर 25,000 रुपये की गई वेतन सीमा। और वरिष्ठ भाजपा प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने राज्य सरकार पर प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबाने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विश्वविद्यालयों से प्रदेश की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। उन्होंने आज सोलन में निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के एक कार्यक्रम में शैक्षणिक सत्र को संबोधित किया और विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों को रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू करने चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर मिल सके। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है और सीमित संसाधनों के बावजूद हिमाचल अगले वर्ष तक आत्मनिर्भर राज्य बन जाएगा।
1: जब हमारी सरकार बनी थी तो हमने एक निश्चय किया था कि हमारी सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएगी। यही परिणाम है कि आज हमने किसानों की लड़ाई लड़ी है और जीत जीती है। 2027 तक हमारा प्रयास है कि प्रदेश आत्मनिर्भर बने और इस लड़ाई को आत्मनिर्भर की लड़ाई को लड़ने के लिए अभी हमें बीबीएमबी का जो एरियर है जिससे कि 500 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है उसका जजमेंट रिजर्व है उसका इंतजार कर रहे हैं। वाटर सेस का इंतजार कर रहे हैं और शानन प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं। ये जो पानी है यही प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएगा। भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके और सभी प्रकार की आयन से तकरीबन 4 से 5 हजार करोड़ रुपया हमने बचाया।
0: बाद में मुख्यमंत्री ने सिरमौर जिले के सराहा में राज्य स्तरीय वामन द्वादशी मेले के समापन समारोह में शिरकत की और पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में लगभग 238 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सीमा पर बनने वाले किशाऊ बांध के विस्थापितों के हितों की रक्षा की जाएगी और उनकी मांगे पूरी होने के बाद ही विस्थापन किया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस बांध से हिमाचल की तुलना में उत्तराखंड राज्य के अधिक लोग विस्थापित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को योजना की शुरुआत की थी और देश के करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया गया है। इसके माध्यम से महिलाओं को चूल्हे के धुएं से निजात मिली है।
2: हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो माँ को धुएं में आंखें मलते, भीषण गर्मी में भी आग में तपते, ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है।
0: हिम ई पंचायत प्रोसीडिंग सिस्टम पोर्टल जारी करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज शिमला के निकट डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल लोक प्रशासनिक संस्थान में इस पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की बैठकों की कार्यवाही को ऑनलाइन किया जाएगा। अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि इससे बैठकों की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में उपलब्ध करवाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का 90% क्षेत्र ग्रामीण इलाके में आता है और गांवों के विकास की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग की है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 28 से 30 सितंबर तक 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। यूनियन के हिमाचल संयोजक नरेंद्र शर्मा ने आज शिमला में बताया कि इस दौरान सभी बैंक अधिकारी व कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि बैंक कर्मी मुख्य रूप से 5-डे वीक लागू करने और पीएलआई योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। नरेंद्र शर्मा ने कहा कि हड़ताल के दौरान प्रदेश भर में प्रदर्शन किए जाएंगे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
3: दीदी, आजकल HPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
4: माया, ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
3: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
4: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
5: अपनी बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा, ANM या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वेतन सीमा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय भविष्य निधि के अपर आयुक्त और पंजाब व हिमाचल के प्रभारी राजीव बिष्ट ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि संगठन ने वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी है, जो 17 सितंबर से लागू हो गई है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में 96,000 से अधिक कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। राजीव बिष्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 8,664 अंशदायी प्रतिष्ठानों के कुल 3,36,759 सदस्य हैं। इनमें से लगभग 96,000 सदस्य वर्तमान में 15,000 रुपये मासिक वेतन सीमा पर अंशदान कर रहे हैं, जिन्हें नई सीमा बढ़ने से सीधा लाभ मिलेगा। बिष्ट ने बताया कि वेतन सीमा बढ़ने से अब अधिक संख्या में कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे।
6: इसलिए जरूरी बनता है कि सब जो पीएफ के लिए मेंबर के बनने के लिए रहे हैं वो तुरंत पीएफ के मेंबर बने और 17 तारीख से जब उनकी सितंबर की सैलरी रिलीज हो वो उस समय उनका पीएफ की मेंबरशिप के साथ साथ पीएफ मेंबर कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। सरकार द्वारा एक एम्प्लॉई एनरोलमेंट कैंपेन भी चल रही है, जिसके तहत स्पेशल छूट दी गई है कि ऐसे जो भी एम्प्लॉई हैं जो कि किसी भी कारणवश उनको उनके नियोक्ता द्वारा पीएफ का लाभ नहीं दिया गया था, एक तरह से वारंटी डिस्क्लोज के चलते मिनिमम पेनल्टी के साथ केवल इंटरेस्ट देके वो उनको भी उस डेट से मेंबर बना सकते हैं। मात्र 100 रुपए का डैमेज लग के वो उनको मेंबरशिप एक्सटेंड कर सकते हैं।
0: वरिष्ठ भाजपा प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने राज्य सरकार पर प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबाने और फिजूल खर्ची करने का आरोप लगाया है। हमीरपुर से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि अपने 4.25 वर्ष के कार्यकाल में राज्य सरकार 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। राजेंद्र राणा ने कहा कि राज्य के हजारों लोगों ने पेयजल योजनाओं के लिए अपनी जमीनें दी हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक किसी को भी मुआवजा नहीं दिया है। भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि भाजपा विधायकों पर झूठे केस बनाकर FIR दर्ज की जा रही है। राजेंद्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से ऐसा प्रतीत होता है कि हिमाचल को कोई सरकार नहीं बल्कि एक छात्र संगठन चला रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी और अपने चहेतों की शानो शौकत पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन उसे जनता को एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। राजेंद्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय पर खर्च से उन्हें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन कर्ज में डूबे प्रदेश में 15 लाख की टेबल और 10,000 रुपए प्रति पर्दे की फिजूल खर्ची पर सवाल उठना जायज है। दूसरी ओर हमीरपुर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी निशांत शर्मा ने कहा है कि राजेंद्र राणा मुख्यमंत्री पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार मजबूती से काम कर रही है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता सुर्खियों में बने रहने के लिए आधारहीन बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फिजूल खर्ची पर लगाम लगाई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बद्दी की एक प्रख्यात निजी कंपनी के सहयोग से सोलन जिले के सामुदायिक चिकित्सा केंद्र सायरी में आज एक निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। इसमें 30 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टरों ने 600 से अधिक लोगों की चिकित्सा जांच की। खंड चिकित्सा अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि शिविर के दौरान मुख्य रूप से महिलाओं में कैंसर जांच के लिए मैमोग्राफी परीक्षण किया गया और आंखों व हड्डियों की जांच भी की गई। इस दौरान संस्था की ओर से लोगों को 400 से अधिक निशुल्क चश्मे और अन्य चिकित्सा उपकरण भी बांटे गए। काहला पंचायत के प्रधान राजेश ठाकुर और सायरी के प्रधान वीरेंद्र जसवाल ने शिविर के सफल आयोजन के लिए संस्था का आभार जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सीमित संसाधनों के बावजूद हिमाचल को अगले वर्ष तक बनाया जाएगा आत्मनिर्भर राज्य। मुख्यमंत्री ने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र को दी 238 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात। हिम ई पंचायत प्रोसीडिंग सिस्टम पोर्टल जारी करने वाला हिमाचल बना देश का पहला राज्य। पंचायती राज संस्थाओं की कार्यवाही होगी ऑनलाइन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वेतन सीमा को लेकर लिया बड़ा फैसला, 15 से बढ़ाकर 25,000 रुपए की गई वेतन सीमा। और वरिष्ठ भाजपा प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने राज्य सरकार पर प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबाने का लगाया आरोप। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
7: श्रोताओं, कार्यक्रम में समाचारों के बाद एक बार आप सभी का स्वागत है और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आ पहुंचे हैं। अब चलते चलते आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम प्यारा सा गीत। सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया। बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है। इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्पदंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्पदंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्पदंश जानलेवा हो सकता है, कही सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: देख पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
4: तुझे उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
6: पता है ना, मुझे टीबी है।
5: चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: क्या है?
1: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टर, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं, लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना सही, यू आर अ जीनियस।
5: यू आर अ जीनियस।
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ, स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
7: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है? अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना, ये भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की, ये होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्री राम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं अपनी मर्यादा में। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझ में और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा पर, जवाब देंगे।
8: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं? ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
7: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
9: दिला तो दूंगा, पर मेरे एक काम करना पड़ेगा।
7: हाँ बोलो।
9: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
7: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
9: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
10: गजब बेइज्जती है।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। प्रस्तुत है आज का प्रमुख समाचार बुलेटिन। मैं हूं सचिन कपूर। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। मुख्य समाचार। कुल्लू दशहरा उत्सव में इस बार 500 ड्रोन से सजेगा आसमान, भव्य लेजर शो भी होगा। प्रवेश के लिए आई कार्ड जरूरी होगा। अक्टूबर से हिमाचल में 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों की घर बैठे होगी स्वास्थ्य जांच। गंभीर मरीजों को अस्पताल भेजने की व्यवस्था। श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम के गर्भगृह को नया स्वरूप देने की तैयारी। 3 किलो सोने और 6 क्विंटल चांदी से सजावट की योजना। पूर्व सैनिक, दिव्यांग और BPL अभ्यर्थियों को मेरिट में अनारक्षित पद पर नियुक्ति का प्रावधान। चयन प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग की रियायतों को लेकर नियम स्पष्ट। चंबा की धाविका सीमा कुमारी ने एशियन गेम्स में रचा इतिहास। 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर भारत का 16 साल का इंतजार खत्म किया। अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा इस बार तकनीक और परंपरा के अनोखे संगम का गवाह बनने जा रहा है। समाचार के अनुसार दशहरा उत्सव के दौरान पहली बार 500 ड्रोन के माध्यम से आसमान में भव्य दृश्य प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके साथ ही लोगों को लेजर शो भी देखने को मिलेगा। पहाड़ों की पृष्ठभूमि में होने वाला यह आयोजन दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। आयोजन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। बिना आई कार्ड के प्रवेश नहीं मिलेगा, यानी उत्सव में आने वाले लोगों को निर्धारित पहचान पत्र साथ रखना होगा। इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी विशेष रूप देने की तैयारी है। समाचार में बताया गया है कि एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें हिमाचल की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को अलग अंदाज में प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ साथ दूसरे राज्यों के सांस्कृतिक दलों की भागीदारी भी प्रस्तावित है। राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड और पंजाब के सांस्कृतिक दलों के शामिल होने की जानकारी दी गई है। दशहरा उत्सव में भारतीय संस्कृति की विविधता को दिखाने के साथ साथ हिमाचली लोक संस्कृति और परंपराओं को भी प्रमुखता दी जाएगी। 500 हिमाचल प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों की घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच करने की योजना पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को इस योजना को लागू करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य बुजुर्गों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना और बीमारी की शुरुआती अवस्था में ही उसकी पहचान करना है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर बुजुर्गों की सामान्य स्वास्थ्य जांच करेंगी। इसमें ब्लड प्रेशर, शुगर और सामान्य स्वास्थ्य स्थिति की जांच के साथ साथ बीमारी से जुड़े लक्षणों पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच के दौरान यदि किसी बुजुर्ग में गंभीर बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें आगे के उपचार के लिए अस्पताल भेजने की व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में भी इस अभियान को प्रभावी बनाने की तैयारी की जा रही है। इस तरह की घर घर स्वास्थ्य जांच से बुजुर्गों में समय रहते बीमारी की पहचान करने में मदद मिल सकती है और उन्हें समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा। घर से स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने में परेशानी झेलने वाले बुजुर्गों के लिए यह व्यवस्था विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है। धर्मशाला के शक्तिपीठ श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम के गर्भगृह को भव्य स्वरूप देने की तैयारी चल रही है। गर्भगृह की दीवारों और अन्य हिस्सों को सजाने के लिए सोने और चांदी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें करीब 3 किलो सोने और 6 क्विंटल चांदी की सामग्री से सजावट की योजना बताई गई है। इस कार्य में लुधियाना के एक श्रद्धालु की ओर से सहयोग किया जाएगा। वहीं गर्भगृह के लिए वियतनाम से विशेष मार्बल मंगवाए जाने की भी जानकारी दी गई है। मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। दीवारों और दरवाजों का निर्माण तथा अन्य सजावटी कार्य भी किए जा रहे हैं। गर्भगृह में एक समय में करीब 100 श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था किए जाने की योजना है। मंदिर प्रशासन की ओर से निर्माण और सौंदर्यीकरण के कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। श्री चामुंडा धाम हिमाचल के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है और यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। ऐसे में मंदिर परिसर में सुविधाओं और व्यवस्थाओं का विस्तार श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में पूर्व सैनिकों, दिव्यांगजनों और BPL सहित क्षैतिज आरक्षण वाले वर्गों के अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर अनारक्षित पदों पर समायोजित किए जाने को लेकर नियम स्पष्ट किए गए हैं। राज्य सरकार के नए निर्देशों के अनुसार यदि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य या अनारक्षित अभ्यर्थियों के समान मानकों पर बिना किसी रियायत का लाभ लिए मेरिट में चयनित होता है तो उसे अनारक्षित पद पर समायोजित किया जा सकता है।
वहीं यदि किसी अभ्यर्थी ने आयु सीमा, अनुभव, शैक्षणिक योग्यता या अन्य निर्धारित मानकों में छूट का लाभ लिया है तो उसे आरक्षित पद के तहत माना जाएगा। सरकार के निर्देशों में दिव्यांग अभ्यर्थियों के संबंध में भी प्रावधान स्पष्ट किए गए हैं। समान मानकों पर मेरिट से चयनित होने की स्थिति में उन्हें अनारक्षित पद के विरुद्ध समायोजित करने की व्यवस्था बताई गई है। इससे भर्ती प्रक्रिया में मेरिट और आरक्षण से संबंधित स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। चंबा जिले के रेटा गांव की धाविका सीमा कुमारी ने एशियन गेम्स में महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। जापान के आईची नगोया में आयोजित प्रतियोगिता में सीमा ने 32:50.05 का समय निकालकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस पदक के साथ महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में भारत का 16 साल का पदक इंतजार समाप्त हुआ है। इससे पहले भारत को इस स्पर्धा में 2010 में पदक मिले थे। दौड़ के दौरान सीमा शुरुआत में आगे रहीं, लेकिन बीच में पीछे हो गईं। इसके बाद अंतिम चरण में उन्होंने शानदार वापसी करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। सीमा का सफर हिमाचल प्रदेश के चंबा के दुर्गम क्षेत्र से शुरू हुआ। समाचार रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2015 में उनका चयन धर्मशाला स्थित साई केंद्र में प्रशिक्षण के लिए हुआ था, जहां उनके खेल को आगे बढ़ाने में प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सीमा की इस उपलब्धि पर चंबा और धर्मशाला सहित पूरे हिमाचल में खुशी का माहौल है। और खास बात यह है कि सीमा आने वाले दिनों में 5,000 मीटर दौड़ में भी हिस्सा लेने वाली है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के धारकंडी की दरिणी पंचायत में वीरवार को विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने 4.54 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 33-11 केवी के विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए केवल सिंह पठानिया ने कहा कि इस सब स्टेशन से धारकंडी क्षेत्र की 8 पंचायतों के करीब 8600 उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इसे क्षेत्र में वर्षों से चली आ रही कम वोल्टेज की समस्या का समाधान होगा तथा लोगों को बेहतर और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने इस परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। पठानिया ने बताया कि कुठारना में कम वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए 10 लाख रुपए की लागत से नया 63 केवीए ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है। वहीं रुलेड और हारबोह में करीब 25 लाख रुपए की लागत से 25 केवीए ट्रांसफार्मरों को 63 केवीए में अपग्रेड किया गया है। उन्होंने कहा कि लाहड़ी और घटारड़ा में विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कार्य प्रगति पर है, जिन्हें शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। दरिणी सब स्टेशन से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी। इसके अतिरिक्त आपात स्थिति में विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए शाहपुर से वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था भी की गई है। इसी के साथ आज का समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। आप सुन रहे थे प्रमुख समाचार।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया, बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्प दंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्प दंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्प दंश जानलेवा हो सकता है, कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।

0: क्या है?
1: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टर, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं, लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना सही, और जीनियस?
5: यूर अ जीनियस।
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
6: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ, स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
7: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है? अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना ये, भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की, तो होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्रीराम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं, अपनी मर्यादा में लड़े। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है, अपनी मर्यादा। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझ में और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा पर, जवाब देंगे।
8: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है।

0: हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहाँ सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
1: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
2: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
1: हाँ बोलो।
2: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
1: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
2: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
3: गजब बेइज्जती है।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: पिछले हफ्ते काजल को सांप ने काट लिया, बेचारी के हाथ पर फफोले पड़ गए, उसकी त्वचा तक खराब हो गई।
1: अरे मुखिया जी, ऐसे में तो उसे तुरंत बाबा के पास ले जाना चाहिए था,
0: या फिर घाव के पास कस कर कपड़ा बांध देना चाहिए था,
2: या उनको दर्द के लिए घरेलू दवाई देनी चाहिए थी।
0: यही तो गलत है, इन सब कही सुनी बातों से कोई फायदा नहीं। सही इलाज ये था कि सर्प दंश के तुरंत बाद बिना देर किए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने काजल को एंटीवेनम इंजेक्शन दिया, इसलिए वो आज सुरक्षित है और उसकी परिस्थिति बेहतर हो रही है। आज से याद रखिए, सर्प दंश में सही समय पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ही सही इलाज है।
3: बिल्कुल सही।
0: सर्प दंश जानलेवा हो सकता है, कही सुनी बातों पर विश्वास करके समय बर्बाद ना करें। सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार।
4: देख पवन आ गया।
5: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
4: पता नहीं, उसे टीबी है।
5: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले।
6: पता है ना, मुझे टीबी है।
5: चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
7: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।

0: मम्मी मम्मी मम्मी
1: क्या है?
0: मेरी जॉब लग गई।
2: सच्ची? थैंक यू। पेड़ तो छू।
3: अरे आंटी जी, गाजर का हलवा, मुंह मीठा कीजिए।
4: अरे डिटेक्टर, मुंह मीठा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
3: जरा दिखाइए। जॉब ऑफर में पैसे देने के बजाय मांग रहे हैं, लिंक भी अननोन है और इंटरव्यू भी नहीं। मुंह मीठा कीजिए।
4: डिटेक्टिव, अब किस बात पे मुंह मीठा?
3: अरे भाई, स्कैम पकड़ा गया है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ना सही, यू आर अ जीनियस।
0: यू आर अ जीनियस।
3: तुम नहीं बेटा, अंकल कहेंगे।
5: स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ, स्कैम पहचानो, मौका गवाओ।
6: एक और मिथ है हमारे बीच, अच्छा बनना क्या होता है। अच्छा मतलब ये नहीं कि आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, मैं तो अच्छा हूँ। कईयों को लगता है ना, ये भाई हमारी आदत ही नहीं है जवाब देने की। होगा बुरा, इसको अच्छा नहीं कहते। ऐसे तो अगर अच्छा बनने का मतलब ये होता, श्री राम रावण से यही कहते, पत्नी को ले गए, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं तो अच्छा हूँ। वो लड़े हैं, अपनी मर्यादा में लड़े। अच्छे का मतलब वही है जो सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाता है अपनी मर्यादा में। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझमें और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे।
7: आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और लक्ष्मी भाभी की सफाई तो प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
8: बेबी, ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ना मुझे सेम दूसरे रंग में एक और सूट चाहिए, दिला दोगे?
9: दिला तो दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा।
8: हाँ बोलो।
9: बाहर गार्डन में जाओ और गिन के बताओ कितने पेड़ लगे होंगे।
8: अभी बताती हूँ। बेबी, टोटल 3 पेड़ लगे हुए हैं, एक आम का, एक अमरूद का और एक पपीते का।
9: पैसे का पेड़ नहीं दिखा?
0: गजब बेइज्जती है।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।